मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 19वीं तिथि, तदनुसार 7 जून सन 2026। इस समय प्रातः के 5:57 और 5 सेकंड में है। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में कल विकसित भारत के लिए युवा माय भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को यह मंच प्रदान किया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर

0: ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर आधारित हैं।
1: Collaborate closely to maintain security along and uniquely open border.
2: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया। श्री शाह ने पिछले 5 वर्षों के जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जाँच कराने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक, अग्रिम पहुंच या बिक्री की अफवाहों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा कि ये विद्यार्थियों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एनटीए ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में ना आने की सलाह दी है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। न्यू चंडीगढ़ में कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने भी 100 रन की पारी खेली। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। और एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई कर चुके सागर जगलान और किशोर काजल धोचक ने अपने अपने वर्गों में स्वर्ण पदक जीतकर मंगोलिया में आयोजित उलान बतोर ओपन कुश्ती टूर्नामेंट में भारत को 6 और पदक दिलाए। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान में 2 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सर्वप्रथम सुनिए मातृ वंदना समूह स्वरों में।

ईश्वर में मन लगाने के लिए सच्ची श्रद्धा और एकाग्रता सबसे अहम होती है। ये प्रार्थना हमें ध्यान केंद्रित करने और प्रभु के निकट महसूस करने में मदद करती है।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। आप हमें न्यूज ऑन EIR मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। इस समय सुबह के 6:20 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रकाश किरण।

रागस्य दोषस्य संखैणम् एगन्तसुखं समुवेयि।

0: संपूर्ण ज्ञान के प्रकाशन से, अज्ञान और मोह के परिहार से तथा राग द्वेष के पूर्ण क्षय से जीव एकांत सुख अर्थात मोक्ष प्राप्त करता है।
1: तस्से समग्गो गुरु विद्ध सेवा विवज्जना बाल जन सदूरा सज्जाय ए गंत निवेशनाय सुतत्थ संचिंतनया धीय। तस्से समग्गो गुरु विद्ध सेवा विवज्जना बाल जन सदूरा सज्जाय ए गंत निवेशनाय सुतत्थ संचिंतनया धीय।

0: या
1: गुरु तथा वृद्ध जनों की सेवा करना, अज्ञानी लोगों के संपर्क से दूर रहना, स्वाध्याय करना, एकांतवास करना, सूत्र और अर्थ का सम्यक चिंतन करना तथा धैर्य रखना, ये दुखों से मुक्ति के उपाय।
2: रामचरित मानस का गायन, गायक स्वर है लक्ष्मी शंकर और सुरेश वाडेकर का, संगीत निर्देशक हैं सतीश भाटिया।

श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ करते हुए संत गुरु तथा देव समाज की वंदना के साथ गोस्वामी तुलसीदास ने उसी विनीत भाव से खल वंदना भी की है। उन्होंने दुष्टजन को विनम्र प्रणाम किया है जो बिना प्रयोजन ही हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं, जिनको दूसरे के उजड़ने से हर्ष तथा बसने से विषाद होता है। दुष्टों की ये रीति है कि वे शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर ईर्ष्या की आग में जल उठते हैं, किंतु संतों और दुष्ट जन में एक लक्षण समान होता है। जहां संत जन का विछो प्राण हर लेने वाला होता है, वहां असज्जन का मिलना दारुण दुख देने वाला होता है। गोस्वामी तुलसीदास ने खल वंदना तो की है, किंतु अत्यंत प्यार से पाले जाने पर भी क्या कव्वे मांस खाना छोड़ देते हैं?

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का गायन। गायक स्वर था लक्ष्मी शंकर और सुरेश वाडकर का। संगीत निर्देशक थे सतीश भाटिया। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कृषि समय की बेड़ा खड़ा चौगोट।
1: कुकुड़ी चोक संक्रामक रोग असन रोग के बलेसत जौन गोटक कुकुड़ी ले दूसर नंगत कुकुड़ी के दाना पानी और लहरा ले फैले से। बीमार कुकुड़ी मरलो ने बाहर खुला ने पकाले उनके जानवर नाले चढ़ी मन छावो नीलो ने बले ये संक्रामक रोग एक जगह ले दूसर जगह ने फैले से। असनी बीति जुगे करुण हो तो बीमारी चो फैलतो कारण लक्षण रोकथाम और उपचार के मैं सांगेन से। सबले फैलाए रानीखेत बीमारी एके हमी जुमरी बीमारी बल बोलून से। ये बीमारी संगे रतो सफाई कुकड़ी मन ने फैले से। ये रोग होलो ने कुकड़ी मुंह उठावन फूंडे से फटकी के लटकाए से झर खोखली चीखा ऐसे और दस्त होन जाए से। पाए ने रेंगुक नहीं सके और कमजोर होन मरुन जाए से। ये बीमारी होलो ने ये चो इलाज करतो किडिक मुश्किल होए से। होनी काजे एके ठेबा तो खाजे साल ने एक हार ये चो टीका लगाओ पड़े से। और दूसर बीमारी आए चेचक एके फाउल पाक्स और माता बीमारी बल बोले सत। ये बीमारी संगे रतो कुकड़ी मन के लार ने एके उनके टोकलो ने और लहरा ले बले फैले से। ये चो लक्षण आए कुकड़ी चो छेंडी आँख नाक और टोन ने पिड़की पिड़की होए से। और कुकड़ी चो आँख बंद होन गेलो ने कुकड़ी दाना पानी खाओ नहीं सके। असन ने कमजोर होन कुकड़ी मुरुक सके। हुनी काजे ये बीमारी होलो ने कुकड़ी के एंटीबायोटिक और विटामिन पानी ने घोरून देते रहते रहे। और जोन फिड़की मन होला से उताले छाली के गुचाउन 2% कापर सल्फेट छो घोल के लगाते रहे। ये बीमारी ले बचा तो काजे फाउल पाक्स वैक्सीन 4 हफ्ता ले ऊपर छो कुकड़ी मन के हर साल लगाते रहे। कुकड़ी मन ने फैलते बीती और गोटक बीमारी होय से जेचो नाव आए पुलोरम डिसीज। ये साल्मोनेला पुलोरम नाव छो गोटक जीवाणु ले होय से। ये बीमारी नानी कुकड़ी के ऊंचो माय ले गार ले बोले लगू सके। संगे संगे बीमार लगलो पानी दाना चारा और मल ले बोले ये बीमारी फैले से। ये बीमारी होलो ने कुकड़ी के भूख प्यास नहीं लगे और पेट फूले से। और 15 हर दिया कुकड़ी चो मल पाटकुती बाट लटकलो हम दखा दे से। ये बीमारी जुगे करुन नानी कुकड़ी मन के खूबे नुकसान हमराए से। और ये रोग ले बचा तो काजे डॉक्टर मंच सांगलो हिसाब ने सल्फा और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन ग्रुप चो दवाई दिलो ने कभी फायदा करे से। और गोटक बीमारी होय से जेचो नाव आए कोराइजा। ये झपके झपके गोटक कुकड़ी ले दूसर कुकड़ी के लगा तो

0: बीती बीमारी आए और ये जुगे करुण सांस नली ने होए से। ये बीमारी हेमोफिलिस गली नरम नावचो गोटो जीवाणु ले होए से और ये फैले से बीमार कुकड़ी चे संगे रलो कुकड़ी के और गोट की ठान ने चारा दाना खाते विधि कुकड़ी मन के। ये बीमारी लगलो ने कुकड़ी चो नाक आँख और टोंड ले गाढ़ा पानी और सेमट निकरे से और पूंड तो ने उनके खूब परेशानी होए से। तो ये बीमारी बचा तो काजे कुकड़ी के नंगत सूखा जगह ने हमके संगत रहे और पानी चो ठान के साफ सफाई ने संगत रहे और पानी दाना यथा ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और सल्फा ना चो जो दवाई मनात ये के होता मिसात रहे और नाले डॉक्टर मन के सांगुन ये चो इंजेक्शन बोले लगाओ पड़े। तो दा दीदी मन कुकड़ी पोस तो जितलो बोले लोग मनास कुकड़ी तुमके खूबे लाभ देते वित व्यवसाय होए से मात्र एक नियम ले डॉक्टर मंच सांगलो हिसाब ने दखरखा टीकाकरण और उपचार करा लो ने तुमके खूबे फायदा होए दे।
1: अभी आप सुन रही थी कृषि समय की बेड़ा खड़ा चौगोट मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। ये आकाशवाणी जगदलपुर है। इस समय सुबह के 6:40 हुए हैं। कार्यक्रम हुलहुली में लीजिए सुनिए दंतेश्वरी आया पाड़। कलाकार हैं भागीरथी और साथी।

कार्यक्रम हुलहुली में अभी आप सुन रहे थे दंतेश्वरी आया पाड़। कलाकार थे भागीरथी और साथी। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। आज रात 9:30 पर रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम और दोपहर 3:00 एफएम बैंड पर विविध भारती के कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 7:10 पर विशेष कार्यक्रम देश की वाणी आकाशवाणी और शाम 6:05 पर जिले की चिट्ठी। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 7:30 पर हल्बी समाचार बुलेटिन और शाम 6:30 पर गोंडी समाचार बुलेटिन। ये दोनों ही कार्यक्रम आप आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से सुन सकते हैं। अब से कुछ देर बाद सुबह 7:05 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी जिंगल फिल्म संगीत। सुबह 7:45 पर सुबह 8:30 पर लोक मंजरी में सुनिएगा विभिन्न बोलियों में लोकगीत। सुबह 9:00 होगा नन्हे मुन्ने बच्चों का कार्यक्रम बालवाड़ी। सुबह 9:30 पर कार्यक्रम एक ही फिल्म से के तहत आप सुनेंगे फिल्म करीब के गीत। सुबह 10:00 कार्यक्रम गुलशन में आज आप सुनेंगे नए तराने। सुबह 10:30 पर होगा फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम चाहत। प्रस्तुति होगी हरी प्रिया पानीग्रही की। संयोजन होगा चंद्र ऋषि ठाकुर का। आज सुबह 11:30 पर कार्यक्रम गुड़दुम में आप सुनेंगे हल्बी लोकगीत। कलाकार होंगे दयो और साथी। आज दोपहर 12:00 रुसरूसा में सुनेंगे आप लोकगाथा आंधा राजा। गायिका होंगी सुमरी बाई। दोपहर 12:30 पर होगा शहरी महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन। दोपहर 1:05 पर कृषि समय के बेड़ा खड़ा चौगोट का पुनः प्रसारण किया जाएगा। दोपहर 1:10 पर होगा फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम कला और कलाकार।

हमारी सांध्यकालीन सभा में शाम 5:05 पर आप सुनेंगे देशभक्ति गीत। 5:10 पर होगा युवाओं का अपना कार्यक्रम युववाणी हिंदी में। बस्तर के स्वर ये कार्यक्रम होगा शाम 7:00। आमचोगांव कार्यक्रम शाम 7:21 पर। रात 8:00 बालीफूल में आप सुनेंगे शिवराम नाग और साथियों का गाया हल्बी गीत। रात 8:00

इस मिनट पर पिलामन काजी गोठ में विषय होगा स्वामी दयानंद सरस्वती, प्रस्तुति होगी पीलूराम बघेल की। पुरानी फिल्मों से ये कार्यक्रम होगा रात 9:15 पर। रात 10 बजे कार्यक्रम दौना में आप सुनेंगे हल्बी गीत, कलाकार होंगे मधुराम और साथी।

ये थी हमारी आज की सभी सभाओं में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। क्रमशः संस्कृत और हिंदी में समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः दिव्यानन्द झा। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ह्यः आर्थिक परामर्श परिषदः सदस्यैः समं आकारितस्य उपवेशनस्य अध्यक्षताम् अकरोत्। उपवेशने प्रधानमन्त्री परिषद सदस्याश्च वैश्विका निश्चितता काले भारतस्य भूयोपि आर्थिक वृद्धिं कर्तुं विभिन्नेषु परामर्शोपायेषु चर्चितवन्तौ। जीवनस्तरं व्यापारं च सुगमीकर्तुम् अपि सविस्तरं विचारणा जाता। सदस्यैः भारते विश्वे च पश्चिमैशिया संघर्षेण उत्पन्न प्रभावानाम् अपि आकलनं प्रस्तुतम्। विदेशमन्त्री डॉ सुब्रह्मण्यम जयशंकरः उक्तवान् यत् भारतं नेपालं च सुदीर्घ मुक्त सीमायां सुरक्षा व्यवस्थां प्रवर्तयितुं दृढतया सहयोगं कुरुतः। अपि च उभौ देशौ संकटकाले अपि सर्वदैव परस्परं साहाय्यं कुरुतः। नवदिल्ल्यां नेपालस्य विदेशमन्त्रिणा शिशिर खनालेन सह उपवेशने डॉ जयशंकरः अवदत् यत् उभयोः देशयोः सम्बन्धः जीवित जनसम्बन्धस्य सीमापार सम्पर्कस्य पारस्परिक सांस्कृतिक धार्मिक परम्पराणां च सुदृढाधारे विनिर्मितः अस्ति। केन्द्रीयः गृहमन्त्री अमितशाहः अन्ताराष्ट्रिय सीमासु वित्तीय व्यवहारस्य भवन निर्माणस्य सम्पत्तिक्रय विक्रयणस्य च विषये विशेष समवधानतायै आहूतवान्। एषः निर्देशः बीएसएफ इति सीमा सुरक्षाबलस्य त्रिपुरा सीमा मुख्यालये गृहमन्त्रिणः अध्यक्षतायाम् आकारिते पूर्वोत्तर राज्य सीमा क्षेत्र विषयके सम्मेलने प्रदत्तः। गृहमन्त्री विगत पञ्चवर्षाणां भूमिलेखानां परीक्षणाय अपि निर्दिष्टवान्। सीबीएसई इति केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद अंक सत्यापनार्थं पुनर्मूल्यांकनार्थं च आवेदन समर्पणाय अन्तिमां तिथिं जून मासस्य सप्तम दिनांक पर्यन्तम् अग्रे सारितवती। परिषदा उक्तं यत् विद्यार्थिनः अद्य मध्यरात्रिं यावत् स्वावेदनानि अर्पयितुम् अर्हन्ति। इतः पूर्वम् आवेदन समर्पणाय अन्तिमा तिथिः अस्य मासस्य षष्ठः दिनांकः एव आसीत्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः सम्बलितस्य संस्कृत साप्ताहिकी इति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः एफएम गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने सार्धैकवादनतः भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। भारतीयर्तुविज्ञान विभागेन अनुमितं यत् अद्य तटीय कर्णाटक माहे केरलेषु मूसलाधार वृष्टिः भविष्यति। पूर्वोत्तर राज्यानाम् अधिकतर भागेषु आभ्यन्तरीण कर्णाटके गोवायां तमिलनाडौ पुदुच्चेर्याम् अण्डमान निकोबार द्वीप समूहे च श्वः पर्यन्तं प्रबल वृष्टेः सम्भावना अस्ति। सम्प्रति क्रीडावार्तासु, जापाने भारतस्य अन्तरष्टादश वयोवर्गीय पुरुषदलेन एशिया चषक हॉकी स्पर्धा मालिका जिता। निर्णायके द्वन्द्वे भारतेन जापानं 4-1 इति अंकांतरालेन पराजितम्। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी च उत्तम प्रदर्शन परकम् एतं विजयम् अभिलक्ष्य भारतीय हॉकी दलं वर्धापितवन्तौ। गोवायां भारतेन सैफ महिला पादकन्दुकनायक स्पर्धा श्रृंखला विजिता। निर्णायके द्वन्द्वे भारतेन बांग्लादेशः 3-0 इति अंकांतरालेन पराजितः। ध्यानास्पदम् अस्ति यत् भारतेन षष्ठवारम् एषा श्रृंखला जिता। अपरतः नवचण्डीगढे भारताफगानिस्तानयोः एकमात्र क्रिकेट निकषस्पर्धायाः प्रथमदिनस्य क्रीडासमाप्तिपर्यन्तं भारतेन क्रीडकत्रयस्य हानिपूर्वकम् 68-300 धावनांकाः अर्जिताः। अद्य भारतम् इतः अग्रे क्रीडिष्यति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री की कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य की सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। श्री शाह ने पिछले पांच वर्ष के जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जांच कराने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बैठक में भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में कल विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं के आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री की खबरों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा कि ये छात्रों उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एनटीए ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर आधारित हैं।
2: Collaborate closely to maintain security.
3: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
2: फुल पोटेंशियल ऑफ आवर टाइम।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का काम शुरू हो चुका

0: साथ ही दक्षिणेश्वर और कालीघाट जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुविधाओं में भी सुधार किए जाएंगे। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बनाए। न्यू चंडीगढ़ में खेल समाप्त होने तक कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। केएल राहुल ने 100 रन की पारी खेली। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। आज पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में तेज हवा के साथ बिजली चमकने की भी आशंका है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर में आगे बढ़ा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। आप हमें न्यूज ऑन EIR मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। इस समय सुबह के 7:05 हुए हैं।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: माटी की सौंधी खुशबू के साथ,
3: पवन के ठंडे झोंके के साथ
2: हिलोरे लेगी
3: आकाश की वाणी।
2: आकाशवाणी
4: विज्ञापन के लिए संपर्क करें आकाशवाणी जगदलपुर आकर,
2: या फोन करें 222-150 या 222-400,
3: 222-150 या 222-400।
5: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782-222-666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
6: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
7: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
8: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। डायल कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर 1512।
9: विविध भारती के खजाने से हम आपके लिए लाते हैं अनमोल कार्यक्रम।
10: फौजी भाइयों की खिदमत में आपका खादिम नौशाद आदाब पेश करता है, कबूल फरमाइए।
9: कल और आज के ऐसे ही नामचीन सितारों को आप सुनते हैं विशेष जयमाला में हर शनिवार और रविवार शाम 7:05 पर। विविध भारती आप सुन सकते हैं देश के कोने कोने में, मीडियम वेव पर, शॉर्ट वेव पर, एफएम पर। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक। विविध भारती पर विज्ञापन बुक कराने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 15102, या लॉग ऑन करें csuair.org.in। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
11: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं।
12: मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी जगदलपुर है। सुबह के 7:10 होने वाले हैं। विशेष कार्यक्रम देश की वाणी आकाशवाणी, अब हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 7:10 हुए हैं। प्रस्तुत है देश की वाणी आकाशवाणी। इसमें सुनिए आकाशवाणी की पूर्व उद्घोषिका कल्पना यादव से बातचीत। प्रस्तुत करता है दीपक हटवार।

0: देश की वाणी आकाशवाणी की ये यात्रा शुरू हुई थी 8 जून 2025 को। पूरे एक साल के सफर में आकाशवाणी के लिए समर्पित अनेक प्रसारकों और कलाकारों से हमने बातें की, उनकी यादों के पन्नों को पलटकर अतीत की कई उपलब्धियों के साथ आकाशवाणी से जुड़ी महत्वपूर्ण तारीखों को याद किया। आज इस श्रृंखला की ये आखिरी कड़ी है। ये कड़ी जरूर अंतिम है, मगर हमारे सुधी श्रोताओं के अपार स्नेह के साथ आकाशवाणी की ये स्वर सरिता अनवरत बहती रहेगी मधुर ध्वनि तरंगों के संग। तो देश की वाणी आकाशवाणी के इस समापन कड़ी में आज की हमारी खास मेहमान हैं, बड़ी ही मीठी आवाज की धनी, जिनके नाम से आकाशवाणी रायपुर के श्रोता बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं। आप हैं आकाशवाणी की पूर्व वरिष्ठ उद्घोषिका श्रीमती कल्पना यादव। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद दीपक, आपने इस अवसर पर मुझे याद किया और सच में बहुत बहुत अच्छा लग रहा है।
0: कल्पना जी, आपका ये जो नाम है ना, आकाशवाणी रायपुर के श्रोताओं के जहन में आज भी विभिन्न कार्यक्रमों के साथ गूंज रहा है, आज भी उन्हें याद है, और जब भी वे आपके इस नाम को याद करते हैं उस दौर के एक से बढ़कर एक कार्यक्रम उन्हें याद आने लगते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी रायपुर से आपका जो जुड़ाव है ये कितना पुराना है?
1: अब ये कहो कि मेरा रेडियो से संबंध बहुत पुराना है। जब मैं पढ़ा करती थी ना दीपक, तभी मैं सोचा करती थी कि मैं जाऊंगी तो रेडियो में ही जाऊंगी। तो मैंने बचपन से ही सपना देखा था कि मैं रेडियो में जाऊंगी, और रेडियो में मैंने आकाशवाणी रायपुर ज्वाइन किया 75 में।
0: तो उस समय आप किस रूप में यहाँ आते थे, मतलब नियमित उद्घोषिका के रूप में आप ज्वाइन की थी या फिर किसी और कार्यक्रम में आती थी?
1: ना, पहली बार मुझे यहाँ पर सहायक केंद्र निदेशक थे महेंद्र, तो उन्होंने मुझे एक कहानी पढ़ने के लिए बुलवाया था
0: जी।
1: वो कुंतला गोयल जो अंबिकापुर की थी, अपने जमाने की बहुत वरिष्ठ कहानीकार थी, बहुत साहित्यकार थी, वो ऊंची बहुत ऊंची साहित्यकार थी, तो उनकी कहानी उन्होंने मुझसे पढ़वाई थी और उसका रिहर्सल उन्होंने अपने सामने करवाया था। तब दीपक मुझे कहानी कैसे पढ़ी जाती है ये मालूम हुआ कि कहानी पढ़ने का भी एक ढंग होता है रेडियो में।
0: ये किस सन की बात होगी?
1: तब मेरा अपॉइंटमेंट नहीं हुआ था, ये बात है 74 दिसंबर की।
0: बहुत पुरानी बात है।
1: मेरा अपॉइंटमेंट जनवरी में हुआ था 75 में, और शादी हुई मेरी दिसंबर में।
0: बहुत पुरानी बात है कल्पना जी। तो इस कहानी के बाद सीधे आप अनाउंसर बनकर आकाशवाणी में आ गई?
1: हाँ जी। तो इस कहानी के पीछे भी एक वाक्या जुड़ा हुआ है
0: जी।
1: मैं कहा करती थी ना कि मैं रेडियो में जाऊंगी, और लकीली जगदलपुर, ग्वालियर और रायपुर के लिए जगह निकली थी उद्घोषकों के लिए, और इसका इंटरव्यू हुआ था आकाशवाणी भोपाल में। तो वहां पे जितने भी उम्मीदवार थे वहां पर गए, और वहां से हमें चयनित किया गया रायपुर के लिए। और हमसे पूछा भी गया था कि अगर आपको हम ग्वालियर दे दें या जगदलपुर दे दें तो क्या आप जाएंगे? तो हमने बड़ी शान से कहा कि सर, हम नौकरी करने के लिए निकले हैं तो हम तो जाएंगे, अगर आप ग्वालियर भेजेंगे तो हम ग्वालियर चले जाएंगे, आप जगदलपुर भेजेंगे तो हम जगदलपुर चले जाएंगे। मगर मुझे उन्होंने रायपुर ही दे दिया।
0: तो कल्पना जी, उस दौर में जब आपने जनवरी 1975 में उद्घोषक के पद पर यहाँ आकाशवाणी रायपुर में अपने कार्यों की शुरुआत की, तो यहाँ पर और कौन कौन लोग हुआ करते थे?
1: अरे, हमारे जमाने के मतलब बहुत ही प्रवीण उद्घोषक हुआ करते थे जो अब इस दुनिया में नहीं है। मैं नाम बता रही हूँ दीपक तुम्हें, आदरणीय किशन गंगेले जी, आदरणीय लाल राम कुमार सिंह जी और आदरणीय मिर्जा मसूद जी, इन तीनों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला और इनसे मैंने सच में बहुत बहुत बहुत कुछ सीखा।
0: ये तो तीनों आकाशवाणी रायपुर की वो त्रिमूर्ति हैं जिन्हें प्रसारण में लेजेंड माना जाता है आकाशवाणी रायपुर के प्रसारण के लिए, तो इनके साथ में कौन कौन से प्रोग्राम आप किया करती?
1: मैंने सबके साथ सभी कार्यक्रम किए हैं, और जैसे आपके पत्र, आपके मीत, ये गीत, अजीत सुनिए, और जब मिल बैठे हम, और मैं बिंदिया, मैंने ना बहुत सारे कार्यक्रम भूल रही हूँ। हाँ, एक बच्चों का प्रोग्राम हुआ करता था किसले उस
0: जी,
1: समय।
0: जी जी। अच्छा कल्पना जी, आप तो नाटकों में भी भाग लिया करती थी।
1: हाँ, नाटक में भी मैं काम किया करती थी, और बी हाई ग्रेड था मेरा, सिलेक्शन हुआ था मेरा, पहले तो बी हुआ करता, उसके बाद बी हाई ग्रेड इसको बोलते हैं अपन, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया था।
0: कल्पना जी, जिस वक्त आप आकाशवाणी में आई उद्घोषक के रूप में, सन 1975 के बाद की अगर दौर की बात करें तो वो वाकई रेडियो का ही दौर था, और रेडियो के अलावा कोई और माध्यम लोगों के घरों में हुआ नहीं करता था। तो उस वक्त
1: बिल्कुल
0: किस तरह का चार्म था रेडियो का, रेडियो के प्रति लोगों की रुचि, और रेडियो में जो प्रसारक

0: मीत ये गीत पेश किया करते थे जब हमारी ड्यूटी होती थी या होती थी तो बहुत से ऑफिस के सब लोग ना बाहर निकल जाया करते थे पान की दुकान पर
1: जी,
0: और सुना करते थे आपके मीत ये गीत कार्यक्रम, जो उन्हें बहुत अच्छा लगता था। और श्रोता भी इंतजार करते थे कि आज कल्पना जी आने वाली है वगैरह वगैरह जो भी हुआ करते थे। और दीपक अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, बहुत से लेटर भी, आशिकाना लेटर भी आते थे कुछ श्रोता कुछ श्रोता लिखते थे कि आप अपनी फोटो भेजिए, हम दिल से लगा के रखेंगे वगैरह वगैरह वगैरह। और बोलते थे कि आप बहुत अच्छा बोलती हैं, आप मेरी बहन के जैसे हैं। और किसी ने कहा कि मैं आपकी फोटो दिल से लगा के रखूंगा और मतलब अब मैं क्या बताऊं, मुझे श्रोताओं से बहुत बहुत बहुत प्यार मिला दीपक, बहुत प्यार मिला।
1: कल्पना जी, वो दौर ही वाकई रेडियो का एक सुनहरा दौर था, और उसमें में तो टेलीविजन लोगों के घरों में था भी नहीं। टेलीविजन तो 80 के बाद फिर लोगों के घरों में आया, जब हमारे यहाँ एशिया 82 के बाद। अगर टेलीविजन के आने के बाद भी रेडियो का एक चार्म तो बना ही हुआ था, खासकर
0: अभी भी है।
1: बिल्कुल,
0: वो रेडियो के अलावा दूसरा कुछ सुनते ही नहीं है।
1: बिल्कुल। कल्पना जी, ये होता है ना कि एक उद्घोषक जब आकाशवाणी के कैंपस में अपने कार्यक्रमों में पूरी तरह से समर्पित होकर श्रोताओं के लिए एक से बढ़कर एक प्रोग्राम पेश करते हैं, तो उस कार्यक्रम को सुनने के बाद में उनकी एक छवि बनती है श्रोताओं के मन में, चारों तरफ चारों दिशाओं में उनके नाम गूंजते हैं, उनके कार्यक्रम गूंजते हैं। और उसके बाद जो वो व्यक्ति जब आकाशवाणी कैंपस से बाहर निकलता है, अपने शहर से बाहर निकलता है, किसी यात्रा में जाता है, किसी से मुलाकात होती है, और उस वक्त जब लोगों को पता चलता है कि मैं तो कल्पना यादव जी के सामने खड़ा हूं, तो कैसा लगता था श्रोताओं को उस समय आपसे मिलकर?
0: दीपक, वाकई में तुमने जो ये यादें, सुनहरी यादें दिलाई ना, यकीन मानो मैंने रोंगटे खड़े हो गए हैं। कई वाक्य हैं ऐसे
1: जी,
0: बहुत सारे, मतलब मेरे सामने ऐसे जिंदगी के लम्हे हैं जिन्हें मैं भुलाई नहीं भूलती। एक बार क्या हुआ, मैं और मेरा बेटा, तब मेरा बेटा 7-8 साल का रहा होगा
1: जी,
0: हम ट्रेन से आ रहे थे, तो एक आदमी, एक सज्जन जो है, मुझे बहुत घूरे जा रहे थे।
1: अच्छा जी,
0: तो बेटे को बहुत गुस्सा आया, वो मेरे पास आ गया, बोला माँ ये आपको क्यों घूरे जा रहा है, तब ये 7-8 साल का ही रहा होगा
1: जी।
0: तो मैंने कहा कि बेटा हमें क्या मालूम है क्यों घूर रहा है। इतने में वो व्यक्ति मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा कि आप कल्पना यादव हैं? मैंने कहा कि जी हाँ, मैं कल्पना यादव हूँ। तो बोले कि हम आपके कार्यक्रम सुनते हैं, आपके कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वगैरह वगैरह। अब मैं क्या बोलूं, मतलब वो शब्द भी याद नहीं है और अपने मुंह से अब क्या बोलना उन शब्दों को, पर एक यादगार तो रहती है। एक वाक्य ये मुझे बहुत, मतलब बच्चे के साथ बहुत अच्छा लगता है कि उस जमाने में, फिर बच्चे ने मेरी तरफ देखा, मैंने कहा कि देखो वो इसलिए मुझे घूर रहे थे।
1: अच्छा कल्पना जी, जिस वक्त आकाशवाणी रायपुर में एक से बढ़कर एक ड्रामा बना करते थे, झलकियां हुआ करती थी, पत्रोत्तर के कार्यक्रम में भी आप भाग लिया करती थी, और ट्रांसमिशन ड्यूटी भी आप किया करती थी, है ना
0: जी,
1: और ट्रांसमिशन ड्यूटी तो इंसान को वक्त का बड़ा पाबंद रहना सिखाती है,
0: बिल्कुल,
1: खासकर मॉर्निंग ट्रांसमिशन में, सुबह की सभा में, बिल्कुल जब पूरी दुनिया सो रही होती है तो एक अनाउंसर जाग कर बिल्कुल सुबह 5 बजे 5:30 बजे तक आकाशवाणी पहुंच जाता था। और इस ट्रांसमिशन ड्यूटी में भी कई बार कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो बड़ी एडवेंचर क्रिएट करने वाली घटनाएं होती, कि आप, पता चल रहा है कि कई बार हम विलंब से पहुंचे और कुछ मिनट पहले या कुछ सेकंड पहले पहुंचे, तो इस तरह की कभी कोई घटना आपके साथ घटी है क्या?
0: एक वाक्य मुझे याद आ रहा है कि मेरा घर तो बहुत पास था, जब ये स्टूडियो की बात है, जब अपना सिटी में ट्रांसफर हो गया था, ये वाला अपनी बिल्डिंग बन गई थी आकाशवाणी की
1: जी,
0: तो मेरी, दीपक तुम यकीन मानो 5 मिनट पहले मेरी नींद खुली, ओपनिंग होने के पहले
1: जी,
0: मैं जिस ड्रेस में थी, जिस नाइट सूट में थी, मैं भागे भागे वहां पर गई ना, और उसमें ही मैंने ओपनिंग किया और पूरा शहनाई वादन वगैरह जो जो होता है अपना पूरा ओपनिंग किया, और उसके बाद मैंने ड्यूटी ऑफिसर से बोला कि मुझे 5 मिनट का समय दो, मैं घर से तैयार होकर आती हूँ। तब तक वो कार्यक्रम भोपाल से रेले हुआ करता था।
1: अच्छा,

0: फिर आप घर गई
1: तो
0: वापस
1: मैं घर वापस गई और
0: जी
1: फिर तुरंत तैयार होके फिर मैं वापस आई।
0: कल्पना जी, हमने सुना है कि आपका जो परिवार है वो फौजी परिवार रहा है, उसके बारे में कुछ बताएं।
1: दीपक, हमारी शादी की बात चल रही थी, 76 में हमारी शादी हुई,
0: जी
1: 75 से तो ये एक बार ऐसे देखने के लिए आए और इनको मालूम था कि मैं रेडियो में कैजुअल जाती हूँ और ये करती हूँ, तो ये गाना हरदम ये लगा दिया करते थे, पल पल तुम दिल के पास रहती हो, है ना। जब शादी हुई तो अब हम एक बार गए फील्ड पे, फील्ड पे स्टेशन में फैमिली नहीं रख सकते हैं दीपक,
0: जी जी
1: मगर 2 महीने या 1 महीने के लिए फील्ड स्टेशन खोल देते हैं फैमिली को आने के लिए। तो हम लद्दाख गए, वहां पर जो हमारा मजाक उड़ाया, इतना मजाक उड़ाया जिसकी कोई हद नहीं है। मेरी और कर्नल यादव की तो
0: ओ
1: ऐसी बैंड बजाई उन्होंने और हम हंसते हंसते लोटपोट हो गए।
0: अच्छा
1: बोले मिसेस यादव, यदि वहां पे मिसेस यादव फर्स्ट नेम नहीं लेते हैं फौज
0: जी
1: में, मिसेस
0: जी
1: यादव, बोले मिसेस यादव ये जो है ना आपका कार्यक्रम जो आप रात को 10 बजे पेश करती हैं, कौन से दिन मनचाहे गीत हुआ करते थे ना,
0: जी जी जी
1: तो बोले कि ये ना ट्रांजिस्टर लेके घूमते रहता है इधर से उधर इधर से
0: अच्छा
1: उधर। हाँ, और वो वाकई में दीपक, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 पे कौन कौन से गाने बजाए ये लिस्ट भेजा करते थे हमारे लेटर
0: अच्छा, वो
1: सिस्टम
0: पूरा
1: में, तो
0: हिसाब
1: हम वो
0: किताब
1: भी
0: रखते
1: करते
0: थे।
1: थे जी।
0: अच्छा जी
1: तो बहुत बहुत ही मतलब मजेदार। और मेरे साथी जैसे लक्ष्मेंद्र चोपड़ा है,
0: जी
1: मंडलोई जी हैं, और तेजिंदर सिंह जो अब इस दुनिया में नहीं है, ये हम सब हम उम्र थे ना, तो इन लोग चिढ़ाया भी करते थे, कल्पना ये वाला गाना बजाना, हाय हाय ये मजबूरी,
0: जी
1: तेरी 2 टकिया की नौकरी पे मेरे लाखों का सावन जाए ना।
0: जी जी जी
1: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा समय था दीपक।
0: अच्छा
1: और
0: कल्पना जी,
1: तुम्हारी
0: ये
1: हो?
0: बताइए कि कर्नल यादव साहब रेडियो के शौकीन जो हैं, वो आपकी शादी के बाद बने या पहले से
1: शादी के बाद, जब हमारी शादी की बात चल रही थी ना,
0: थे?
1: तो मुझे मालूम था कि मैं रेडियो में काम मतलब कैजुअल जाती हूँ, है ना। तो वो ना फिर एक बार आए रायपुर,
0: जी
1: तो वो ट्रांजिस्टर वगैरह साथ लेकर आए कि ये
0: अच्छा
1: कब बोलती है, कब क्या करती है, ये है, और फिर इनको लोग चढ़ाया भी करते थे, अरे यार तू तो फौज में जाता है ना, ड्रिल में भी ट्रांजिस्टर लेके जाया कर
0: अच्छा
1: इसे, इस तरह से ना बहुत अच्छा समय गुजरा, बहुत
0: तो ये
1: बहुत
0: कह सकते
1: अच्छा।
0: हैं कि आकाशवाणी आपका शुक्रगुजार है कि शादी करके आपने एक श्रोता बढ़ा दिया।
1: बहुत ही मतलब मैं क्या कहूँ, मुझे दीपक बहुत प्यार मिला, बहुत
0: जी
1: प्यार मिला
0: जी
1: मुझे,
0: जी
1: बहुत प्यार मिला
0: कल्पना
1: जी।
0: जी, हर आकाशवाणी के कर्मचारी के जीवन में, प्रस्तुतकर्ता के जीवन में एक दिन वो भी आता है जब उन्हें सेवानिवृत्त होना पड़ता है। तो आपकी सेवा का जो आखिरी दिन था वो कौन सा था और आपको उस वक्त कैसा लग रहा था?
1: मैंने ना प्री मैच्योर रिटायरमेंट लिया था, मेरे सर्विस के 10-12 साल थे
0: जी
1: दीपक, तो तब मैंने ट्रांसफर भोपाल करवा लिया था कि भोपाल में हम लोग सेटल होने वाले थे, है
0: कितने
1: ना।
0: साल रहे आप भोपाल में?
1: भोपाल में मैंने मुश्किल से 2.5-3 साल काम किया, मुश्किल
0: अच्छा,
1: से 2.5 साल।
0: तो भोपाल के बारे में भी कुछ बताएं हमारे श्रोताओं को।
1: हाँ, बड़ी सुहानी यादें भोपाल
0: अच्छा
1: से भी मुझे मिली, रियली कह रही हूँ, बहुत
0: जी जी
1: सुहानी,
0: जी
1: हालांकि मैंने बहुत कम काम किया लेकिन प्यार भी मुझे बहुत मिला। और उसका फाइनल फेयरवेल जो होता है,
0: जी
1: मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि इतने कम समय में मुझे भोपाल का भी बेहद प्यार मिला, बहुत
0: जी
1: प्यार
0: जी
1: मिला
0: वो कल्पना यादव जी, जिनकी आवाज वर्षों आकाशवाणी रायपुर में गूंजती रही, फिर यही खूबसूरत आवाज करीब 3 सालों के लिए भोपाल चली गई। आज उम्र के इस पड़ाव में जब आप आकाशवाणी की अपनी संपूर्ण यात्रा को याद करती हैं तो कैसा लगता है आपको?
1: सच में। जब तुम अभी ये बोल रहे हो ना, पूछ रहे हो मुझसे, तो यकीन मानो मेरी पोती मेरे सामने बैठी है,
0: जी
1: वो मेरी आंखों में मतलब मेरी आंखें डबडबा आई हैं, मतलब मैंने जिसने मैं ये सोचा था कि मैं करूंगी सर्विस करूंगी तो रेडियो में ही करूंगी, नहीं तो शादी तो होनी है और वो भी ऑफिसर से ही होगी ही
0: जी
1: होगी,
0: जी
1: मतलब जो मैंने चाहा मुझे जिंदगी में वो सब कुछ मिला, वो
0: ऐसा
1: सब
0: ना
1: कुछ मिला मुझे।
0: जी
1: और
0: जी
1: मैं जो मेरे साथी इस दुनिया में हैं नहीं हैं, उनको भी मैं बहुत याद करती हूँ, जो हमारे समय के थे वो तो तुम जानते हो दीपक,
0: बिल्कुल
1: सब एक एक करके चले गए, जिन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया था, जो बताया था, है ना, जो माहौल हमने देखा है, जो एक जो अपनापन था, मुझे गंगेली जी ने बहुत कुछ सिखाया, लाल राम कुमार सिंह जी ने खूब सिखाया, मिर्जा मसूद ने अलग सब कुछ अलग अलग सिखाया, तीनों उद्घोषकों से मैंने कुछ न कुछ अलग अलग अलग सीखा।
0: जी जी, तो इन दिनों कल्पना यादव जी का जो समय है वो कैसे बीत रहा है?
1: देखो, ये प्रतिभा मुझ में नहीं मालूम थी कि मुझ में है
0: जी,
1: कि मैं कुछ लिख सकती हूँ या पढ़ सकती हूँ। मुझे पढ़ने का शौक शुरू से रहा है।
0: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी, जी।
1: तो और पढ़ना भी पड़ता था थोड़ा बहुत, तो तुम तो जानते हो स्क्रिप्ट बनानी है या ये करनी है, थोड़ा बहुत है ना
0: जी, जी।
1: तो और बस, अब तो मेरी पोती है, पोती के साथ समय बहुत अच्छा गुजरता है
0: जी,
1: और हम दोनों में खूब बातें भी होती हैं, जैसे फ्रेंड्स रहते हैं ना, उस तरह से हमारी बातें होती हैं।
0: अच्छा।
1: बहू बेटा है, उनके साथ बहुत अच्छा समय गुजर जाता है। फौजी क्लब है, फौजियों के साथ हमारे पुराने संबंध है कर्नल यादव के, तो बस उनके साथ बहुत अच्छा संबंध गुजर जाता है। कभी रायपुर का चक्कर लग जाता है, कभी मेरठ का चक्कर लग जाता है
0: जी।
1: और भोपाल में तो रहना ही है बच्चों के साथ।
0: बिल्कुल, तो कल्पना जी हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि जिस खुशी के साथ आपने आकाशवाणी रायपुर की स्मृतियों को हमारे श्रोताओं के साथ साझा किया है वो खुशी सदैव आपके चेहरे पर बनी रहें, आप मुस्कुराते रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। आकाशवाणी रायपुर को इस कार्यक्रम के लिए आपने अपनी ढेर सारी पुरानी यादों के साथ बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, देश की वाणी आकाशवाणी की इस लंबी श्रृंखला में हमारी कोशिश यही रही है कि हम देश भर के आकाशवाणी केंद्रों से जुड़े प्रसारकों और कलाकारों से उनकी सुनहरी यादें ताजा करें। इस कार्यक्रम के लिए हमारे श्रोताओं का जो स्नेह और उत्साहवर्धन हमें मिला है वो अविस्मरणीय है। इसके लिए सभी श्रोताओं का हृदय से आभार। तो अब अपने दोस्त दीपक हटवार को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम देश की वाणी आकाशवाणी। इसे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी जगदलपुर है। अब लीजिए सुनिए हलबी समाचार बुलेटिन।

ये आकाशवाणी जगदलपुर आए हल्बी समाचार बुलेटिन संगे मैं माधुरी यादव। आज ही चो मूर खबर। विश्व पर्यावरण दिवस ने प्रदेश ने होली का एक कार्यक्रम मुख्यमंत्री एक पेड़ माँ के नाम अभियान के करला मूर। सुशासन तिहार भीतरे मुख्यमंत्री बीजापुर और कांकेर जिला चो दौरा करला। नगरीय निकाय चुनाव भीतरे अध्यक्ष चो पद ने 3 पद भाजपा और 2 पद ने कांग्रेस जीत ली। और CGPSC चो राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 का जे लिखित परीक्षा 6 जून के होए दे। एबर खबर सरसराले। विश्व पर्यावरण दिवस ने 5 जून के बस्तर संभाग संगे प्रदेश ने कई कार्यक्रम होली। राज्यपाल रमेंडे का रायपुर चो लोक भवन अरु नवा रायपुर चो नुआ बंतो लोक भवन परिसर ने बूटा मंडाला। ये मौका ने हुन लोग मन के आगर ले आगर बूटा मंडान पर्यावरण बलों ने लहरा पानी के बचान राखतो गुहार करला। हुताय मुख्यमंत्री विष्णु देवसाय वन अरु जलवायु परिवर्तन विभाग बाटले रायपुर ने प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए थीम उपरे होलो कार्यक्रम ने भाग धरला। ये मौका ने हुन एक पेड़ माँ के नाम अभियान के मूर करला। लोग मन के माँ चो नाव ने बूटा मंडातो काजे गुहार भले करला। यही मंच ही वन मंत्री केदार कश्यप बल्ला के छत्तीसगढ़ आपलो रान बन लहरा पानी और प्राकृतिक संसाधन काजे देश ने समृद्ध राज माने जाए से। राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण और हरित विकास काजे काम करे से। श्री कश्यप सांगला कि राज्य ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान भीतरे करोड़ ठान बूटा रोपलो होली से और एबर ये काम जन आंदोलन चो रूप धर ली से। विश्व पर्यावरण दिवस ने कोंडागांव जिला चो बेलगांव ग्राम पंचायत चो DAV स्कूल परिसर ने ए अभियान भीतरे बूटा मंडातोर होली। जेथा नाना प्रकार चो प्रजाति चो रूख राई चो बूटा मंडाला। ए मौका ने कोंडागांव विधायक लता उसेंडी सांगला कि ये विधानसभा क्षेत्र भीतरे सपाई सरकारी संस्था मन ने ग्रीन बाउंड्री वॉल चो निर्माण होए दे। कार्यक्रम ने जन प्रतिनिधि गुरुजी पीलामन और गांव कारी मन के लहरा पानी बचान राखतो क्रिया बोले धराला। हुताय कांकेर चो राम प्रसाद पोटाई कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र ने बले विश्व पर्यावरण दिवस ने कार्यक्रम आयोजित होली। कार्यक्रम ने गुरजी खोजाकारी लोग पीला मन लहरा पानी लागून किरिया धरला और बूटा मंडाला। असने जगदलपुर ने बले सेड़वा चो 241वीं बस्तरिया बटालियन चो मुख्यालय कैंप परिसर ने बले जवान मन बूटा रोपला। विश्व पर्यावरण दिवस चो मौका ने गेलो 1 जून के देहरादून ने होलो समारोह ने नारायणपुर चो लिंगो मुदियाल कृषि महाविद्यालय अरु अनुसंधान केंद्र के पर्यावरण चैंपियन अवार्ड ले सम्मानित करतोर होली। ये कृषि महाविद्यालय अनुसंधान केंद्र ने गेलो बरस ने जैविक खेती के बढ़ावा देतो काजे वृक्षारोपण अभियान जल संरक्षण गतिविधि नशा मुक्ति जन जागरूकता कार्यक्रम संगे खेतिहार अरु पढ़तो पीला मंचो प्रशिक्षण संगे जैव विविधता चो संरक्षण काजे आगर ले आगर कैक अच्छा काम मन होली से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गेलो 4 जून के अहमदाबाद ने विश्व योगासन चैंपियनशिप चो उद्घाटन करला। ये मौका ने श्री मोदी ये चैंपियनशिप ने भाग धरतो खिलाड़ी मन के आपलो देश ने आयुष मंत्रालय चो योग 365 अभियान के दुनिया ने अमरातो गुहार करला। हुन बल्ला की योग ले जुड़लो योग देह पाए काजे जरूरी आए। 8 जून तक चलतो पहल विश्व योगासन चैंपियनशिप ने 60 ले आगर खिलाड़ी मन भाग धरे सोत। ये चैंपियनशिप दुनिया ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस चो पहल योग चो संदेश के अमरातोर अच्छा मौका आए। जानू खो कि ए तो 21 जून के दुनिया भर ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस आए। मुख्यमंत्री विष्णु देवसाय गेलो 5 जून के श्रम विभाग बाटले रायपुर ने होलो मेधावी छात्र छात्रा सम्मान समारोह ने शामिल होला। ये मौका ने मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल चो 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा चो मेरिट सूची ने टॉप 10 ने इलो पंजीकृत निर्माण श्रमिक बलों ने भूतियार मंचो पीला मन के नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना भीतरे 2-2 लाख रुपया चो प्रोत्साहन राशि देऊन सम्मानित करला। जेथा 10वीं चो 9 जान और 12वीं चो 13 जान पीला मन शामिल आसोत। मुख्यमंत्री सम्मानित पीला मन के बधाई देते बल्ला कि राज्य सरकार चो विचार आए कि भूतियार मन चो पीला मन भूतियार नहीं बनोत बल्कि बड़े उच्च पद जसन की डॉक्टर इंजीनियर खोजाकारी असन पद मन ने आमरुद देश चो सेवा करो। सुशासन तिहार भीतरे मुख्यमंत्री विष्णु देवसाय गेलो 2 जून के बीजापुर जिला चो कोंडापल्ली गाँव अमरला अरुजन चौपाल लगान लोग मंचो समस्या के सुनला।
समस्या सुनते खन हुनमन अधिकारी मन के निर्देश दिला कि जन चौपाल ने मिरलो सपाई आवेदन चो समय सीमा ने निराकरण हो। श्री साय बल्ला कि सुशासन तिहार जनता और सरकार चो मंझी विश्वास के आगर पक्की करतोर माध्यम आए। मुख्यमंत्री आत्मसमर्पित माओवादी बायले मुनुस मंचो चलातो राशन दुकान बले आमरला और हुन मंचो जीवना ने इलो बदलाव के दखुन सहराला। मुख्यमंत्री बीजापुर पुवर्ती बाट ने बनतो बेली ब्रिज के बले दखला अरु एचो बनतो उट अरु तकनीक के दखुन एके बदलतो बस्तर चो चिन्ह बल्ला। आपलो बस्तर दौरा दाए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय दंतेवाड़ा जिला चो चेरपाल गांव ने होलो जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर ने बले भाग धरला। ए मौका ने हुन कुआकोंडा अरु कटे कल्याण विकास खंड चो 8 संकुल स्तरीय संगठन के आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना भीतरे टाटा मैजिक गाड़ी चो चाबी दिला। अधिकारी मंचो दिलो जानकारी अनुसार ये योजना चो उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र मन ने आजीविका बलों ने रोजगार चो नुआ नुआ मौका देतो संगे भीतर भीतर गांव लगले इहार जहार काजे गाड़ी चो सुविधा के और पक्की करतो रहे। मुख्यमंत्री 2 जून के कांकेर जिला ने सुशासन तिहार भीतरे कांकेर कोंडा गांव नारायणपुर अरु बस्तर जिला ने चलतो योजना अरु विकास काम चो समीक्षा करला। बसका ने मुख्यमंत्री अधिकारी मन के जवाबदारी संगे काम करून परिणाम दखातो निर्देश दिला। संघ ने प्रधानमंत्री आवास योजना भीतरे स्वीकृत घर बनातो काम के झपके पूरा करतो काजे बल्ला। बसका ने श्री साय अधिकारी मन के बल्ला कि ए तो खरीफ कमानी काजे खत अरु बीजा चो बराबर पूर्ति करोत अरु खेतियार मन के नैनो यूरिया अरु दूसर उर्वरक मन चो उपयोग करतो गोट के सांगला। खेतियार मन पीएम किसान सम्मान निधि अरु एग्री स्टॉक पोर्टल ने पात्र खेतियार मन चो पंजीयन करतो निर्देश बले दिला। मुख्यमंत्री बल्ला कि आयुष्मान भारत योजना संस्थागत प्रसव सिकल सेल स्क्रीनिंग अरु मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बस्तर योजना चो क्रियान्वयन उपरे खास जोर देतो रहो। नगरीय निकाय चो आम अरु उपचुनाव का जे गेलो 4 जून के गिनती होली। राज्य निर्वाचन आयोग ले मिरलो जानकारी हिसाब ले नगरीय निकाय ने अध्यक्ष चो 5 पद ने 3 ने भाजपा अरु 2 ने कांग्रेस प्रत्याशी जीतला। हुताय पार्षद चो 71 पद ने 39 ने भाजपा अरु 30 ने कांग्रेस चो प्रत्याशी जीतला। संघ ने 2 पद ने निर्दलीय प्रत्याशी बले जीतला। होता है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का जे मतगणना मतदान चो दिन नहीं छोड़ली। 4 जून के सारणीकरण होली अरु जीतलो प्रत्याशी मन के प्रमाण पत्र दिला। जानू खो कि त्रिस्तरीय पंचायत अरु नगरीय निकाय चो आम अरु उप चुनाव का जे 1 जून के मतदान हो रही। प्रदेश ने व्यापार अरु उद्योग के बढ़ावा देतो का जे दुकान अरु प्रतिष्ठान मंचो पंजीयन चो काम के और सरल बनातो रोली से। राज्य सरकार एचो का जे छत्तीसगढ़ दुकान अरु स्थापना नियम ने संशोधन करते नुआ अधिसूचना जारी कर ली से अरु ये लागू बले होंगे ली से। एबर कोनी बले दुकान नहाले प्रतिष्ठान का जे श्रम चिन्ह बलों ने पहचान संख्या चो पंजीयन प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन मिर्तो 24 घंटा चो भीतर जारी होय दे। एचो काजे मालिक मन के ऑनलाइन आवेदन संगे लागतो जरूरी दस्तावेज अपलोड करून ई चालान ने शुल्क जमा करतो होय दे। ये सफाई काम स्व घोषणा ऊपरे आधारित अरु सिस्टम जनरेट रह दे जेथा दस्तखत चो जरूरत नहीं पड़े दे। अधिसूचना ने साफ साफ बल्लो रासे कि सपाए दुकानदार मान आपलो दुकान चो नाव बीती बोर्ड ने ये पंजीयन प्रमाण पत्र के बोले छपात। मुख्य सचिव विकासशील गेलो 5 जून के मंत्रालय ने ए तो 21 जून के हो तो नीट परीक्षा के अच्छा ले करातो काजे जिला कलेक्टर मंचो बसका धरला। मुख्य सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चो माध्यम ले होलो ये बसका ने जिला कलेक्टर मन के परीक्षा दाए केंद्र सरकार अरु राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी बाटले जारी दिशा निर्देश चो पालन करातो का जे निर्देश बले दिला। हुन बल्ला कि 21 जून के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आए जेके दखून परीक्षा ने कहीं अड़चन नहीं हो ए गोटचो खास ध्यान राखतो रहो। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम चो ये बसका ने शामिल राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी चो महानिदेशक अभिषेक सिंह सांगला के छत्तीसगढ़ ने नीट चो परीक्षा 19 शहर ने होय दे जेचो काजे 127 परीक्षा केंद्र बनालोर आसे। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग CGPSC बाटले राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 चो लिखित परीक्षा शनिवार 6 जून ले होय से जो 9 जून तक हर दिन 2 पाली ने होय दे। पहली पाली बिहाने 9 बजे ले मंझान बेरा 12 बजे तक अरु दूसर पाली मंझान बाहर 2 बजे ले संझ बेरा 5 बजे तक होय दे। मुख्य परीक्षा जगदलपुर अंबिकापुर बिलासपुर दुर्ग रायपुर चो परीक्षा केंद्र बनने होय दे।
6 जून के भाषा अरु निबंध चो परीक्षा होली, आज 7 जून के सामान्य अध्ययन प्रथम अरु द्वितीय प्रश्न पत्र परीक्षा होए दे, काली 8 जून के सामान्य अध्ययन तीसरा अरु चौथा पेपर अरु 9 जून के सामान्य अध्ययन पंचम प्रश्न पत्र चो परीक्षा होए दे। छत्तीसगढ़ चो 5 ठान नुआ मेडिकल कॉलेज ने 149 पद ने संविदा भर्ती होए दे। चिकित्सा शिक्षा विभाग दंतेवाड़ा मनेन्द्रगढ़ कुनकुरी जांजगीर चांपा अरु कबीरधाम मेडिकल कॉलेज का जे प्राध्यापक सहायक प्राध्यापक अरु सीनियर रेजिडेंट चो पद ने ऑनलाइन आवेदन मंगाई गेली से। आवेदन कर तो आखिरी तारीख 15 जून आए। प्रदेश ने रेहड़ी पटरी कारोबारी मन बल्लो ने नानी रोजगार करतो लोग मन के आर्थिक रूप ले सशक्त बनातो का जे 1 जून ले 30 जून तक स्वनिधि महोत्सव अरु लोक कल्याण मेला चो आयोजन होए से। नगरीय प्रशासन अरु विकास विभाग बाटले हो तो ये आयोजन भीतरे स्ट्रीट वेंडर्स मन के ऋण सुविधा UPI अरु QR कोड असन डिजिटल चो सहायता दिए जायते। संगे संग जनधन आयुष्मान भारत सामाजिक सुरक्षा बीमा अरु दिगर जन कल्याणकारी योजना ले बले जुहातोर होए से। उप मुख्यमंत्री अरुण साव बल्ला से कि अभियान चो मूर गोट नानी कारोबारी मन के आत्मनिर्भर बनातो रहे। टेमरू पाना संग्राहक परिवार मन चो पीला मन का जे राज्य सरकार बाटले शिक्षा प्रोत्साहन योजना चलाए जाए से। ये योजना भीतरे बोर्ड परीक्षा ने अच्छा प्रदर्शन करतो पीला मन के सहायता राशि दिए जाए से। सुशासन तिहार भीतरे गेलो दिने बस्तर जिला चो उलनार गांव ने आयोजित शिविर ने सांसद महेश कश्यप 10वीं चो बोर्ड परीक्षा ने अच्छा नंबर पावलो दुई झांडले की रुद्राणी कश्यप और डालेश्वरी बघेल के शिक्षा प्रोत्साहन योजना भीतरे 15,000 रुपया चो चेक दिला। ये मौका ने श्री कश्यप दोनों लेकी मन के आगे पढ़तो काजे बल्ला। जानू खो कि उलनार गांव चो रुद्राणी कश्यप करपावन चो स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय ले अरु डालेश्वरी बघेल उलनार चो सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल ले ए बरस 10वीं चो परीक्षा पास करला से। दंतेवाड़ा चो जवांगा चो वीरांगना मासक देवी नागा शासकीय नवीन आदर्श महाविद्यालय भीतरे चलतो कला अरु संगीत महाविद्यालय ने चालू शिक्षा सत्र काजे कयक विधा ने पढ़तो काजे भर्ती होए से। जेथा गायन तबला कथक भरतनाट्यम अरु लोक संगीत संगे चित्रकला मूर्तिकला ग्राफिक्स विषय ने पढ़तो सुविधा आसे। ये महाविद्यालय के खैरागढ़ चो कला संगीत विद्यालय ले मान्यता प्राप्त आसे। ये गोठ ले दक्षिण बस्तर चो पीला मन के आपलो क्षेत्र ने कला अरु संगीत चो उच्च शिक्षा धरतो महका मिरे से। सरासरी ने मूर खबर एक हार फेर। विश्व पर्यावरण दिवस ने प्रदेश ने होली कार्यक्रम मुख्यमंत्री एक पेड़ माँ के नाम अभियान के करला मूर। सुशासन तिहार भीतरे मुख्यमंत्री बीजापुर अरु कांकेर जिला चो दौरा करला। नगरीय निकाय चुनाव भीतरे अध्यक्ष चो 5 पद ने 3 भाजपा अरु 2 पद ने कांग्रेस जीतली और CGPSC चो राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 का जे लिखित परीक्षा 6 जून के होए दे। एचे संगे हल्बी समाचार बुलेटिन चो ये अंक एथाय सरे से। जुहार।

0: अभी आप सुन रहे थे हलमी समाचार बुलेटिन। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। अब लीजिए सुनिए कुछ जरूरी संदेश।
1: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
2: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
1: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
3: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
4: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
5: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
4: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
5: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
4: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
5: 8700001-4242।
0: और अब पेश है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म पड़ोसन से, लता मंगेशकर, आशा भोसले और साथियों की आवाजों में। गीत है राजेंद्र कृष्ण का, संगीत है आर डी बर्मन का।

नितिन मुकेश और अनुराधा पोडवाल की आवाज में अब लीजिए सुनिए फिल्म भाभी का गीत। गीत है हसरत जयपुरी का, संगीत है अन्नू मलिक का।

कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए फिल्म मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी का गीत, उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाज में, संगीत है अनु मलिक का।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में समाचार प्रभात, अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने कहा, वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और फुटबॉल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों के खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। हमारे संवाददाता आदित्य दत्त की रिपोर्ट।
4: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वस्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह, मुख्य सचिव जेके सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
3: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी। एनटीए ने उम्मीदवारों, अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यक्तिगत रूप से धन के लेन देन को सुगम बनाने के लिए यूपीआई समन्वय का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। बैठक के दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और नेपाल अपनी लंबी और विशिष्ट रूप से खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग करते हैं और दोनों देश हमेशा आवश्यकता के समय एक दूसरे के साथ खड़े हैं।
5: Collaborate closely to maintain security.
6: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
5: फुल पोटेंशियल।
3: नेपाल के विदेश मंत्री श्री शिशिर खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि नेपाल और भारत केवल दो देश नहीं बल्कि एक गौरवशाली प्राचीन सभ्यता के साझेदार हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में विमानन के विकास में भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। इस क्षेत्र में 2044 तक भारतीय यात्रियों की संख्या लगभग 4 अरब तक पहुंचने का अनुमान है।
7: अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ के एशिया प्रशांत क्षेत्र के उपाध्यक्ष शेल्डन ही ने कल ब्राजील में बताया कि भारत पिछले कई वर्षों से एशिया प्रशांत क्षेत्र के विमानन विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते घरेलू नागर विमानन बाजारों में से एक है। श्री शेल्डन ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में पिछले 5 से 10 वर्षों में मजबूत वृद्धि हुई है और भविष्य में भी इसके मजबूत बने रहने की आशा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ 370 से अधिक एयरलाइनों का प्रतिनिधित्व करता है या वैश्विक हवाई यातायात का लगभग 85% हिस्सा है। 82वीं अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ वार्षिक आम बैठक और विश्व हवाई परिवहन शिखर सम्मेलन 6 से 8 जून तक ब्राजील में आयोजित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का काम शुरू हो चुका है, साथ ही दक्षिणेश्वर और कालीघाट जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुविधाओं में भी सुधार किए जाएंगे। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। श्री अधिकारी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस शासन की सरकार ने विकास के बजाय तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस की कीमत 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए हो जाएगी। रूस ने कहा है कि यूक्रेन ने सेंट पीटर्सबर्ग और उसके आसपास के इलाकों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। रूस ने लेनिनग्राद क्षेत्र के आसपास 140 से अधिक ड्रोन मार गिराए गए।
8: गवर्नर अलेक्जेंडर ड्रोजडेंको ने निवासियों से घरों के अंदर रहने का आग्रह किया है। श्री ड्रोजडेंको ने कहा है कि किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली है, हालांकि कई जिलों में ड्रोन का मलबा गिरने की सूचना मिली है। इससे आवासीय भवनों को मामूली नुकसान हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी ड्रोनों ने सेंट पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक की दूरी तय की और दुश्मन नौसेना के शस्त्रागार और क्रोनस्टेड में एक अड्डे को निशाना बनाया। ज़ेलेंस्की के आज ब्रिटेन का दौरा करने यूक्रेन के निकट यूरोपीय सहयोगियों प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत की आशा है। समाचार कक्ष से मैं राजेश कुमार मीणा।
3: इसराइल के हमले में 2 महिलाओं सहित कम से कम 7 फलस्तीनी मारे गए। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि कल काहिरा में मध्यस्थों ने हमास और अन्य गुटों के साथ तनावपूर्ण युद्ध विराम समझौते को सुरक्षित रखने के लिए बातचीत फिर से शुरू की। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से हुआ युद्ध विराम इसराइल के हमलों को रोकने में विफल रहा है और इसराइल ने गजा के आधे से अधिक हिस्से पर नियंत्रण बनाए रखा है। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो भारत पहुंच गए हैं। श्री सुगियानो नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान दोनों मंत्री भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में कल भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। 7 साल बाद भारतीय टीम ने ट्रॉफी अपने नाम की है। एक रिपोर्ट।
9: गोवा के मडगांव में खेले गए सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही भारतीय महिला टीम ने 7 साल बाद इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को फिर अपने कब्जे में लिया। खिताबी मुकाबले की शुरुआत में ही दोनों टीमों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली। पहले हाफ में भारत की ओर से प्यारी झागसा गोल करके टीम को बढ़त दिलाई। पहले हाफ की समाप्ति तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर थी। दूसरे हाफ में भारतीय टीम पूरी तरह हावी नजर आई। संस्विदा ने शानदार गोल कर भारत को फिर बढ़त दिलाई, जबकि लिंडा कॉम ने 3rd गोल दागकर जीत पर मुहर लगा दी। इसके बाद बांग्लादेश की टीम वापसी नहीं कर सकी और भारत ने 3-1 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम ने फाइनल में भी अपना दबदबा कायम रखा और ब्लू टाइग्रेस ने एक शानदार जीत के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी से निखिल उपाध्याय।
3: और अब अन्य खेल खबरों के साथ है वीरेंद्र कौशिक।
10: भारत एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में अफगानिस्तान के साथ नया चंडीगढ़ में आज दूसरे दिन अपनी पहली पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 368 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगा। केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल के शतक की बदौलत भारतीय टीम मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। कप्तान गिल 103 रन और ऋषभ पंत अर्धशतक बनाकर क्रीज पर हैं। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। ये एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। उधर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने कल इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली टी20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। हॉकी में जापान के काका मिगाहारा में भारत की अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में कल भारत ने जापान को 4-1 से हराया।
3: केरलम के 7 जिलों त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के शेष 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। केरलम में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार कल भी केरलम में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। खराब मौसम और ऊंची समुद्री लहरों को देखते हुए केरलम के तटीय क्षेत्रों में मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एम पुनरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा। विभाग ने कर्नाटक के तटीय इलाकों माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक, कोंकण तथा गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, हिमालय के तटीय क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी के कुछ हिस्सों में भी आज वर्षा की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर आज गरज के साथ बिजली गिरने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश के तटीय भाग और ओडिशा के कुछ हिस्सों में आज लू चलने की संभावना है। ओडिशा में आज रात गर्म मौसम रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
11: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आर्थिक रफ्तार को तेज करने की खबरें सभी अखबारों में हैं। लोक सत्य की सुर्खी है, आर्थिक मोर्चे पर निपटने के लिए बनाई गई रणनीति। पत्र ने इसी विषय पर डील, मौसम और चुनौतियां शीर्षक देकर संपादकीय में लिखा है कि सवाल केवल तेल का नहीं, बाकी बहुत सी चीजें हैं जिन पर भारत निर्यात में अग्रणी है। पत्र आगे लिखता है, मॉनसून अच्छा रहे, युद्ध के बादल छट जाएं, इससे बड़ा सुकून भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए और क्या हो सकता है। अमर उजाला की खबर है, नेपाल की नई सरकार के साथ नई गर्माहट। नेपाल के विदेश मंत्री बोले, भारत के साथ संबंध सर्वोच्च प्राथमिकता। पत्र ने इस खबर को शीर्षक दिया है, अतीत का कोई भी बोझ भारत से रिश्तों में बाधा नहीं। दिल्ली से सिलीगुड़ी तक दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, 6 घंटे में ही तय हो जाएगा सफर। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय का असर रेल परियोजनाओं पर दिखने लगा है। राजस्थान पत्रिका की खबर है, भारत में छोटे परिवार की चाहत से बूढ़ा हो रहा युवा भारत। पत्र ने ढलान पर जन्मदर की खतरे की घंटी बताते हुए लिखा है कि अगले 20-30 साल बाद युवा कामगारों की संख्या घटेगी। अखबारों ने खेल जगत की 3 महत्वपूर्ण खबरों को एक साथ दिया है। नवभारत टाइम्स ने प्रज्ञान नंदा के नॉर्वे शतरंज का खिताब जीतने, वैभव सूर्यवंशी के सबसे कम उम्र में भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बनाने और रूस की 19 वर्षीय मीरा आंद्रीवा के फ्रेंच ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीतने की खबरें एक साथ दी हैं। दैनिक ट्रिब्यून कहता है, खेलों का शानदार शनिवार, हॉकी से शतरंज तक युवाओं की बिसात। हिंदुस्तान ने लद्दाख के प्रति पर्यटकों की बढ़ती रुचि पर लिखा है, लोगों को भा रहा है ठंडा रेगिस्तान। पत्र के अनुसार 2020 में अटल टनल खुलने के बाद से पर्यटकों की पहुंच बेहतर हुई।
3: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिसंघ ने कहा, वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार सैफ महिला चैंपियनशिप जीती। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ. नमस्कार.
12: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज. Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. Home Minister Amit Shah calls for sharper vigil on financial transactions, construction of buildings and sale and purchase of properties along international borders. National Testing Agency dismisses claims of NEET UG 2026 re-exam paper leak as false, warns of strict action against those spreading such content. West Bengal government to undertake major development initiatives to upgrade facilities at key religious sites across the state. India hands over 72 health facilities and 12 cultural heritage projects to Nepal. International Air Transport Association says India will be a significant player to air traffic boom in Asia-Pacific region by 2044. And in football, India beat defending champions Bangladesh 3-1 to win SAF Women's Championship for record sixth time. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah has called for a sharper vigil on financial transactions, constructions of buildings and sale and purchase of properties along the international borders. The directive came during a meeting chaired by Mr. Shah at BSF Tripura Frontier Headquarters regarding the border areas of the northeastern state. More from our correspondent.
13: Home Minister directed that an examination of land records of the last 5 years be conducted. Mr. Shah said frequent operations against drug and arms trafficking must be conducted and the entire chain of contributors to drug trafficking must be dealt with the ruthless approach. He said that ensuring financial discipline in the border districts is the responsibility of the states. Mr. Shah directed that collectors and GST officials be trained and that the Central Board of Direct Taxes, CBDT, conduct a survey on fake currency. Home Minister said that camps must be organized to train people living along the border to tackle the threats of narcotics and firearms and instructed that the presence of Patwari sentinels, local police and PSF personnel be ensured in these camps.
14: For Akashbani News, Shuman Bhattacharji, Agartala.
12: The National Testing Agency, or NTA, has refuted the claims circulating on social media and messaging platforms.

अभी आपने सुना शिवराम नाग और साथियों का गाया हल्बी गीत। अब लीजिए सुनिए नंदोराम भारती और साथियों का गाया ये नाट गीत।

0: संगे पानी रानी पूर्णी बंदे उपका बुढ़ा होई पानी दोते रलाय टोकी मन संगे रे हर की बेला पानी रानी हनाई देला डेंग तले बसला छे गोटक कुमर केऊ देशे घर कार कुमर अति सुंदर बर बोली कोई देला सखी मानकु हे सखी गण जाई पचारी आस केऊ देशर विदेशिया बसी अछि बंद डेंगे कही दियो सखी गण पचारी आस सुनी करी दासी गण
1: सुनी करे दासी गण
0: बिजला पटी संगे।

0: सुनी
1: पानी कुमार वाली
0: जल रानी लगे सांगी देला
1: ए रानी जल रानी कोनो देशर पानी कुमार।

0: मोर पानी रानी,
1: पानी कुमो और पानी रानी,
0: असल बोबलात गोरी का नोनी,
1: अच्छा बोबलात गोरी का नोनी,
0: राजा रानी राजा रानी,
1: राजा रानी राजा रानी,
0: सुनी करी पानी रानी,
1: सुनी करी पानी रानी,
0: लुको लुकानी केलबू बोलला,
1: लुको लुकानी केलबू बोलला,
0: आमी जितले आमी नेबू,
1: आमी जितले आमी नेबू,
0: तुमी जितले तुमी नेबास,
1: तुमी जितले तुमी नेबास,
0: आरा जीता।

0: सुनिकोरी पानी कुमार, सुनिकोरी पानी कुमार, आगे तो मिलू का बोला, आगे तो मिलू का बोला, जलो जलो रानी लुची गला,
1: जलो रानी लुची गला,
0: पूर्णी बंदे लुकी गला,
1: पूर्णी बंदे लुची गला,
0: पूर्णी लाटा ताने लुकला,
1: पूर्णी

राजा पानी राजा

कार्यक्रम लोक मंजरी में अभी आप सुन रहे थे विभिन्न बोलियों में लोकगीत। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 9 बजे हैं। पेश है नन्हे मुन्ने बच्चों का कार्यक्रम बाल बाड़ी।

0: बाल बाड़ी कार्यक्रम सुनने वाले सभी नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को भूमिका दीदी का ढेर सारा प्यार और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले करते हैं भारत माँ का वंदन। तो बच्चों मेरे साथ मिलकर कहिए जय हिंद।
1: जय हिंद।
0: बच्चों आप जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो हमेशा अपने से बड़े का सम्मान करें, क्योंकि जितना हम अपने से बड़ों का आदर सत्कार करेंगे उतना हमारा विकास होगा। बच्चों बड़ों का आदर सत्कार करना हमारे अच्छे संस्कारों में से एक है। बड़े बुजुर्गों की बात मानना, उनका कभी अपमान नहीं करना चाहिए, उन्हें अपशब्द नहीं कहना चाहिए और उनकी बातों को अनसुना करके नहीं जाना चाहिए। बच्चों हम तमाम तरह के कई ऐसे कार्य करते हैं जिनके चलते हम जाने अनजाने अपने से बड़ों का दिल दुखाते हैं। वर्तमान समय में किसी भी बच्चे के पास अपने माता पिता के पास बैठने का समय ही नहीं होता है। अगर बैठ भी गए तो उनका पूरा ध्यान मोबाइल पर या टीवी पर ही होता है। माता पिता सुबह से शाम तक हम बच्चों की सेहत और जरूरत के लिए भागदौड़ करके हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं, पर हम बच्चे अपने में इतने मगन हो गए हैं कि हम ये तक नहीं जानते कि आज हमारे मम्मी पापा या घर में जो भी बुजुर्ग हैं उन्होंने खाना खाया है या नहीं, या उनकी सेहत कैसी है। हमें तो बस अपनी जरूरत पूरी होने का इंतजार रहता है। कभी ये नहीं सोचते कि मम्मी अकेले किचन में काम करते परेशान हो रही होंगी या पापा दिन भर काम करके कितना थक गए होंगे। ये सब बिना सोचे, बिना उनकी परेशानी समझे हम अपने फरमाइशों की लिस्ट उन्हें थमा देते हैं। और हद तो तब हो जाती है जब मम्मी या पापा किसी बात पे टोके तो उन्हें चिल्लाकर जवाब देना, गुस्से में सामानों को इधर उधर फेंकना। बच्चों ये सब बहुत ही गलत बात है। अगर आप में से भी किसी को ये बुरी आदत है तो तत्काल इस आदत को सुधार लें, क्योंकि हमारे माता पिता, टीचर या बुजुर्ग हमें डांटते हैं तो उनका डांटना हमारे भविष्य के लिए ही सही होता है। हमें अपने आदत और व्यवहार में भी इस प्रकार की आदतों को शामिल करना है जिससे किसी को भी बुरा ना लगे, किसी का दिल ना दुखे। बच्चों आदर सम्मान करने का ये मतलब नहीं कि आप हमेशा पैर छूकर ही उन्हें सम्मान दें। सम्मान के और भी कई तरीके हैं, जैसे कोई बड़ा आपके पास आया तो आप आराम से कुर्सी पर फैल कर ना बैठे रहें, या घर पर हैं तो सोए या लेटे ना रहें। बड़ों के आते ही उठ जाना चाहिए, उनसे ये पूछना चाहिए कि कहीं आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। अगर आप फोन पे बेवजह की गप मार रहे हैं और कोई बड़ा आपके पास है तो आप फोन रख दीजिए। बड़े बुजुर्ग जो भी कहें उनकी बातों को ध्यान से सुने या जो भी काम कहे उसे पूरा करके दीजिए। टालमटोल ना करें या वह काम आपसे नहीं होता है तो विनम्रता पूर्वक मना करें या किसी की सहायता से वह काम पूरा करके दे। इससे बड़ों के चेहरे पे जो खुशी होगी वह बेहतरीन होगी और उनसे आपको बहुत प्यार और आशीर्वाद भी मिलेगा। बच्चों हम जैसा व्यवहार करेंगे हमारे छोटे भाई बहन भी हमसे ही सीखेंगे और हमारे साथ उनका व्यवहार भी वैसा ही होगा। इसलिए जितना हो सके अपने से बड़ों का सम्मान करें और उनका आशीर्वाद लें। तो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जगदलपुर शहर के नन्हे मुन्ने बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे। बच्चों आप जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो हमेशा अपने से बड़े का सम्मान करें, क्योंकि जितना हम अपने से बड़ों का आदर सत्कार करेंगे उतना हमारा विकास होगा। बच्चों बड़ों का आदर सत्कार करना हमारे अच्छे संस्कारों में से एक है। बड़े बुजुर्गों की बात मानना, उनका कभी अपमान नहीं करना चाहिए, उन्हें अपशब्द नहीं कहना चाहिए और उनकी बातों को अनसुना करके नहीं जाना चाहिए। बच्चों हम तमाम तरह के कई ऐसे कार्य करते हैं जिनके चलते हम जाने अनजाने अपने से बड़ों का दिल दुखाते हैं। वर्तमान समय में किसी भी बच्चे के पास अपने माता पिता के पास बैठने का समय ही नहीं होता है। अगर बैठ भी गए तो उनका पूरा ध्यान मोबाइल पर या टीवी पर ही होता है। माता पिता सुबह से शाम तक हम बच्चों की सेहत और जरूरत के लिए भागदौड़ करके हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं, पर हम बच्चे अपने में इतने मगन हो गए हैं कि हम ये तक नहीं जानते कि आज हमारे मम्मी पापा या घर में जो भी बुजुर्ग हैं उन्होंने खाना खाया है या नहीं, या उनकी सेहत कैसी है। हमें तो बस अपनी जरूरत पूरी होने का इंतजार रहता है। कभी ये नहीं सोचते कि मम्मी अकेले किचन में काम करते परेशान हो रही होंगी या पापा दिन भर काम करके कितना थक गए होंगे। ये सब बिना सोचे, बिना उनकी परेशानी समझे हम अपने फरमाइशों की लिस्ट उन्हें थमा देते हैं। और हद तो तब हो जाती है जब मम्मी या पापा किसी बात पे टोके तो उन्हें चिल्लाकर जवाब देना, गुस्से में सामानों को इधर उधर फेंकना। बच्चों ये सब बहुत ही गलत बात है। अगर आप में से भी किसी को ये बुरी आदत है तो तत्काल इस आदत को सुधार लें, क्योंकि हमारे माता पिता, टीचर या बुजुर्ग हमें डांटते हैं तो उनका डांटना हमारे भविष्य के लिए ही सही होता है। हमें अपने आदत और व्यवहार में भी इस प्रकार की आदतों को शामिल करना है जिससे किसी को भी बुरा ना लगे, किसी का दिल ना दुखे। बच्चों, आदर सम्मान करने का ये मतलब नहीं कि आप हमेशा पैर छूकर ही उन्हें सम्मान दें। सम्मान के और भी कई तरीके हैं, जैसे कोई बड़ा आपके पास आया तो आप आराम से कुर्सी पर फैल कर ना बैठे रहें, या घर पर हैं तो सोए या लेटे ना रहें। बड़ों के आते ही उठ जाना चाहिए, उनसे ये पूछना चाहिए कि कहीं आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। अगर आप फोन पे बेवजह की गप मार रहे हैं और कोई बड़ा आपके पास है तो आप फोन रख दीजिए। बड़े बुजुर्ग जो भी कहें उनकी बातों को ध्यान से सुने, या जो भी काम कहे उसे पूरा करके दीजिए। टालमटोल ना करें, या वह काम आपसे नहीं होता है तो विनम्रता पूर्वक मना करें, या किसी की सहायता से वह काम पूरा करके दे। इससे बड़ों के चेहरे पे जो खुशी होगी वह बेहतरीन होगी और उनसे आपको बहुत प्यार और आशीर्वाद भी मिलेगा। बच्चों, हम जैसा व्यवहार करेंगे हमारे छोटे भाई बहन भी हमसे ही सीखेंगे और हमारे साथ उनका व्यवहार भी वैसा ही होगा। इसलिए जितना हो सके अपने से बड़ों का सम्मान करें और उनका आशीर्वाद लें। और जानते हैं कि वो सब हमें क्या क्या सुनवाने वाले हैं, तो सबसे पहले बुलाते हैं हम नन्हे से बच्चे को। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए।
2: उस्मान खान।
0: क्या सुनाएंगे आप?
2: पोयम।
0: सुनाइए।
2: मैं गुलाब का फूल बनूंगा, मन मन मुस्काऊंगा, जो चिट्ठे मेरे पास आएंगे उसको जोर बनाऊंगा। बारिश आई थम थम थम, छाता लेकर निकले हम, पैर से चल जा गिर गए हम, ऊपर छाता नीचे हम।
0: बहुत प्यारी कविता सुनाई आपने, इनके लिए तालियां हो जाए बच्चों। तो अगली प्रस्तुति के लिए बुलाते हैं हम आपको, आप अपना नाम बताइए।
3: मेरा नाम आयत खान है, मैं क्लास 3rd में पढ़ती हूँ। मैं आप सबको पेड़ लगाने के फायदे बताना चाहती हूँ। पेड़ हमें सांस लेने के लिए ताजी हवा देते हैं। पेड़ों से हमें फल, फूल और लकड़ी मिलती है। पेड़ गर्मी कम करते हैं और ठंडी छाया देते हैं। पेड़ों पर पंछी अपना घर बनाते हैं। पेड़ बारिश लेने में मदद करते हैं। पेड़ मिट्टी को बहने से बचाते हैं। ज्यादा पेड़ लगाने से धरती हरा भरा हो जाता है। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं और बीमारी से बचाते हैं। इसलिए हमें हर साल अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।
0: बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने पेड़ के बारे में। बच्चों, जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें महसूस होता है ना कि थोड़ी सी हवा मिल जाए या गर्मी के मौसम में थोड़ी छाया मिल जाए, तो पेड़ कितना जरूरी है ना मानवों के लिए भी और पशु पक्षियों के लिए भी। लेकिन बढ़ती आबादी के कारण पेड़ जो है कटते जा रहे हैं, तो ऐसे में हम सभी बच्चों का और बड़ों का कर्तव्य बनता है कि जब भी बारिश का मौसम आए तो एक पौधा अवश्य लगाएं। जैसे आपकी उम्र बढ़ते जाएगी वो पौधा भी बढ़ते जाएगा, है ना? आप सबने देखा होगा बहुत सारे पेड़ कट चुके हैं, तो ऐसे में पशु पक्षी भी लुप्त होते जा रहे हैं। अब उनका घर ही नहीं रहेगा तो वो दिखेंगे कहाँ से, है ना? जैसे अभी गर्मी का मौसम है, आम, जामुन, बहुत सारे फल ऐसे मिलेंगे, तो आप उन्हें खाइए और उनकी गुठलियों को धोकर रख दीजिए। जब कहीं आप घूमने जाएं या खुले मैदान में जाएं तो उन बीजों को इकट्ठा करके लेकर जाइए और वहां पे रोप दीजिए। आपकी छोटी सी पहल उसको बहुत बड़ा रूप दे सकती है पेड़ का, है ना? तो इतना तो कर सकते हैं ना आप सब।
4: जी।
0: अगर किसी का बर्थडे भी आता है तो आप उसे एक पौधा गिफ्ट कीजिए, जैसे आम का, अमरूद का, बादाम, जामुन, बहुत सारे ऐसे फल के पेड़ हैं जिनको आप पौधे के रूप में दे सकते हैं गिफ्ट में। तो सोचिए वो आपका गिफ्ट जो है वो जीवन भर यादगार बना रहेगा, है ना? और वो पशु पक्षियों का आश्रय भी होगा। तो एक छोटी सी पहल सबको करनी चाहिए और इस बारिश में आप सब बच्चे ये जरूर कीजिएगा, ठीक है? तो आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी पेड़ के बारे में, तो बच्चों इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। अगली प्रस्तुति के लिए बुलाते हैं हम आपको, आप अपना नाम बताइए।
5: भाव्या।
0: क्या सुनाएंगी आप?
5: कविता।
0: सुनाइए।
5: नमस्ते, मेरा नाम भाव्या भूरा है, मैं 4th कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको कविता सुनाने वाली हूँ। मेरी कविता का नाम है चला किसान। सर पर पगड़ी, कमर पर धोती, हल कंधे पर रखे चला किसान। बैल चल रहे आगे आगे, लगते हैं बिल्कुल सीधे साधे, धरती माँ की किस्मत जागे खेती करने चला किसान, हल कंधे रख चला किसान। सर्दी गर्मी या बरसात, चाहे दिन हो चाहे रात, लू आंधी या झंझावात, मेहनत करना उसका काम, हल कंधे रख चला किसान। धन्यवाद।
0: बहुत अच्छी कविता सुनाई आपने, बच्चों के लिए भी तालियां बजाइए। अगली प्रस्तुति के लिए बुलाते हैं हम आपको, आप अपना नाम बताइए।
4: मेरा नाम उत्कृष यादव है, मैं कक्षा 30वीं पढ़ता हूँ। मैं एक पोयम सुनाने वाला हूँ।
0: सुनाइए।
4: हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। बेल गुलाब चूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल उठे माला में एक हैं। कोयल की कूक प्यारी पपीहे की तेर प्यारी गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक हैं। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी जाके मिली सागर में हुई सब एक है। धन्यवाद।
0: बहुत प्यारी कविता सुनाई आपने, बच्चों इनके लिए भी तालियां बजाइए। ताली बजाने में इतनी कंजूसी क्यों भाई, आपको पसंद नहीं आई क्या कविता? ताली जोर से बजाना चाहिए ना, तब तो उनका उत्साह बढ़ेगा, तब तो वो नेक्स्ट बार और बहुत सारी कविता लाएंगे। सब बच्चे एक दूसरे के लिए जोर से ताली बजाइए ताकि एक दूसरे का उत्साह बढ़े, ठीक है? बच्चों चर्चा हमारी और भी रहेगी जारी, और भी बच्चों से पूछेंगे कि वो हमें क्या क्या सुनाने वाले हैं। उसके पहले सुनते हैं हम सामुदायिक गीत।

0: सामुदायिक गीत के बाद फिर आते हैं बच्चों के बीच और जानते हैं कि वो सब हमें क्या क्या सुनाने वाले हैं। तो अगली प्रस्तुति के लिए बुलाते हैं हम आपको, आप अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम प्रगति यादव है, मैं कक्षा तीसरी में पढ़ती हूँ।
0: आप क्या सुनाने वाली हैं प्रगति?
1: कविता।
0: सुनाइए।
1: देखो कोयल काली है पर उसकी मीठी है बोली, उसने ही तो कुक कुक कर आमों में है मिस्ट्री खोल। कोयल कोयल सच बतलाओ क्या संदेश लाई हो, बहुत दिनों के बाद फिर आज इस जाली पर आई हो।
0: अरे वाह, बहुत प्यारी कविता सुनाई आपने। तो बच्चों इनके लिए तालियां बजाइए। अगली प्रस्तुति के लिए बुलाते हैं हम आपको, आप अपना नाम बताइए।
2: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अन्वेषा पाणिग्रही है, मैं कक्षा छठवी की छात्रा हूँ। आज मैं आपको कविताएं सुनाने वाली हूँ। मेरी पहली कविता का शीर्षक है नन्हे सपनों की उड़ान। तो चलो सुनते हैं। नन्हे नन्हे प्यारे बच्चे मन के होते सच्चे बच्चे, आँखों में सपने सजाते मेहनत से आगे बढ़ जाते। चिड़िया जैसे उड़ना सीखो, फूल जैसा खिलना सीखो, नदी धारा कहती है रुकना कभी ना अच्छा है। सूरज बनकर जगमगाना, अंधियारों को दूर भगाना, ज्ञान की ज्योति मन में भरकर चलना तुम सच्चाई पर। जब भी मुश्किल सामने आए हिम्मत तुम बिल्कुल मत हारो, कोशिश करने वालों की ही जीवन में होती जय जयकार हो। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है सूरज की किरणें। जब सूरज की किरणें आती सारी कलियां खिल जाती, अंधकार सब खो जाता है, दुनिया सुंदर हो जाती है, चिड़िया गाती है।

0: अपने बच्चों इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। अगली प्रस्तुति के लिए बुलाते हैं हम आपको, आप अपना नाम बताइए।
1: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौम्या जोशी है, मैं कक्षा 5वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आपको कविताएं सुनाने वाली हूँ। मेरी पहली कविता का शीर्षक है सीखो। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की सूखी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीखो हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बनाना, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है समय। समय का जो रखता ध्यान जग में होता उसका मान, समय को जो खोता है बाद में रोता रहता है, समय कभी नहीं रुकता है चलता है बस चलता है, सफल यहाँ वही रहता है समय के साथ जो चलता है। मेरी आखिरी कविता शीर्षक है पेड़ पौधे। मैं हूँ पेड़ मुझे मत काटो, टुकड़ों टुकड़ों में मुझे मत बांटो, दर्द मुझे भी होता है मेरा मन भी रोता है, मैं हूँ मित्र तुम्हारा सदा हूँ सबसे न्यारा, मेरे फल खुद नहीं खाता सब तुम्हें ही तो दे जाता हूँ, जहरीली गैस भी पी जाता हूँ शुद्ध हवा तुम तक पहुँचाता हूँ, सूरज का भी ताप सहूँ मैं हूँ जीवन का आधार, फिर भी तुम मुझ पर करते प्रहार, सुनो तुम सब कान लगाकर वृक्षों का करना सम्मान, मैं हूँ जीवन का आधार। धन्यवाद।
0: बहुत ही प्यारी कविता सुनाई आपने, इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए बच्चों। अगली प्रस्तुति के लिए बुलाते हैं हम आपको, आप अपना नाम बताइए।
2: मेरा नाम उन्नति यादव है, मैं कक्षा 8वीं में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको स्वदेश कविता सुनाने जा रही हूँ। वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जो जीवित जोश जगा न सका उस जीवन में कुछ सार नहीं, जो चल न सका संसार संग उसका होता संसार नहीं, जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुँच सकेगा पार नहीं, जिससे न जाति उद्धार हुआ होगा उसका उद्धार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती उसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। धन्यवाद।
0: बहुत ही प्यारी कविता सुनाई आपने, बच्चों इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। आप सभी बच्चों ने सुनाई हमें बहुत ही प्यारी प्यारी कविताएं, अब बारी है हमारी कि हम सुनवाते हैं आपको एक प्यारा सा गीत। गीत सुना तो सभी बच्चों को पसंद ही होगा, है कि नहीं?
3: हाँ।
0: तो आइए बच्चों सुनते हैं प्यारा सा गीत।

0: गीत के बाद फिर आते हैं बच्चों के बीच। आप अपना नाम बताइए।
1: पायल सा।
0: क्या सुनाओगे पायल आप?
1: मैंने तोता पाला है, कितना बोला भाला है, पिंजरे में हो जाता है, मिट्टू मिट्टू कहता है। रानी बरसा पानी मैडा करते हैं, शैतान बिक गए जब इतनी रानी सर पर नन्नी छतरी नानी।
0: अभी प्रस्तुति के लिए हम बुलाते हैं आपको, आप अपना नाम बताइए।
2: माय नेम इज प्रेम कसिया।
0: क्या सुनाओगे आप?
2: पोयम।
0: सुनाइए।
2: बारी बारी ऋतु में आती अपनी छटाया दिखलाती, बर्फलों से भरे बगीचे चिड़िया मुझे गीत सुनाती, देश मेरा यह सबसे न्यारा, कितना सुंदर कितना प्यारा।
0: आपको सुनाओगे आप? सुना।
2: हाथी राजा बहुत बड़े, सूंड हिलाकर कहाँ चले, पूछ हिलाकर कहाँ चले, मेरे घर भी आना, मीठे गन्ने खाना, आओ बैठो कुर्सी पर, कुर्सी बोली चटर पटर।
0: अगली प्रस्तुति के लिए बुलाते हैं हम आपको, आप अपना नाम बताइए।
3: अवनी तिवारी।
0: क्या सुनाओगी अवनी आप?
3: सुबह सवेरे आती तितली, फूल फूल पर जाती, रंग रंग पंख सजाए, सबके मन को भाती तितली।
0: तो बच्चों अब हमारा समय होने को है समाप्त। अगले रविवार सुबह 9 बजे फिर होगी मुलाकात। तब तक अपने दीदी भूमिका को दीजिए विदा। तो बच्चों मेरे साथ मिलकर कहिए जय हिंद।
4: जय हिंद।

0: अभी आप सुन रहे थे नन्हे मुन्ने बच्चों का कार्यक्रम बालवाड़ी, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 9:30 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम एक ही फिल्म से।

श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म करीब के गीत। फिल्म करीब विधु विनोद चोपड़ा द्वारा निर्देशित और निर्मित प्रसिद्ध हिंदी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। इसमें मुख्य भूमिकाएं निभाई है बॉबी देओल और शबाना रजा, जिन्हें नेहा भी कहा जाता है। कार्यक्रम की शुरुआत में लीजिए सुनिए फिल्म करीब का ये बेहद ही खूबसूरत सा गीत।

हिंदी फिल्म करीब 17 जुलाई सन 1998 को प्रदर्शित हुई। ये फिल्म एक हिंदी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे विधु विनोद चोपड़ा ने लिखा, निर्देशित किया और सह निर्मित भी किया। बॉबी देओल और शबाना रजा अभिनीत ये फिल्म हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से शहर के बेफिक्र लड़के और एक जिम्मेदार लड़की के प्रेम प्रसंग की कहानी है। फिल्म को इसके मनमोहक दृश्यों और सदाबहार संगीत के लिए सराहा जाता है।

फिल्म करीब में पटकथा और कहानी है कामना चंद्रा और अभिजात जोशी की। फिल्म का छायांकन किया विनोद प्रधान ने, फिल्म का संपादन किया रेणु सलूजा ने, फिल्म के सभी गीतों की रचना की राहत इंदौरी ने, अन्नू मलिक द्वारा रचित संगीत जबरदस्त हिट साबित हुआ और आज भी बेहद लोकप्रिय है। फिल्म के गीतों को मुख्य रूप से अपनी आवाजें दी कुमार सानू और संजीवनी ने। इसके अलावा इस फिल्म के अन्य गीतों में अन्य आवाजें हैं अभिजीत, रूप कुमार राठौर और जसपिंदर नरोला की।

फिल्म गरीब की कहानी एक छोटे से हिल स्टेशन से शुरू होती है, जिसमें बिरजू यानी बॉबी देओल एक मस्तमौला युवक है, जबकि नेहा यानी शबाना रजा एक सीधी सादी युवती। बिरजू नेहा को प्रभावित करने के लिए झूठ का सहारा लेता है और इस बीच दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो जाती है। बाद में सच्चाई सामने आने पर नेहा का परिवार इस रिश्ते का विरोध करता है, जिसके बाद बिरजू खुद एक जिम्मेदार इंसान साबित होने के लिए भरपूर कोशिश करता है और फिल्म के अंत में दोनों का मिलन होता है और फिल्म की कहानी एक सुखद अंत की ओर जाती है। कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए फिल्म करीब का ये नगमा।

कार्यक्रम एक ही फिल्म से के अंतर्गत आज आप सुन रहे थे फिल्म करीब के गीत। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 9:55 होने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार अब हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

सम्मेलन में शामिल होंगी और घरेलू गैस की कीमत में 29 रुपए की वृद्धि की गई है। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर संभाग की समीक्षा बैठक में कहा है कि किसानों को खाद और बीज की उपलब्धता में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता के आधार पर खाद बीज उपलब्ध कराया जाए और इसकी जवाबदेही संबंधित कलेक्टरों की होगी। मुख्यमंत्री ने नैनो उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने और अवैध रेत उत्खनन पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। बैठक में सुपेबेड़ा की पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए 7 करोड़ रूपये की लागत से तेल नदी पर एनीकट निर्माण की स्वीकृति दी गई। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। नई दरें आज रात 12 बजे से लागू हो गई हैं। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस की कीमत 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए हो जाएगी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति आज रायपुर के एक दिवसीय प्रवास पर रहेंगी। वे रायपुर में आयोजित पिछड़ा वर्ग संगठन के सामाजिक प्रगति चिंतन सम्मेलन में शामिल होंगी। इसके अलावा अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक भी लेंगी। इस बैठक में मुख्य सचिव के अलावा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रमुख सचिव भी मौजूद रहेंगे। साध्वी निरंजन ज्योति अपने प्रवास के दौरान रायपुर में राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से शिष्टाचार भेंट भी करेंगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कृष्णा गौर भी आज रायपुर पहुंच रही हैं। श्रीमती गौर भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में शामिल होंगी और संगठनात्मक विषयों, पिछड़ा वर्ग समाज के सशक्तिकरण और आगामी कार्यक्रमों के संबंध में मार्गदर्शन करेंगी। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि संशोधित नियमों के अंतर्गत प्रमुख खाद्य तेलों के लिए मानक पैक आकार निर्धारित किए गए हैं। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलोग्राम, 15 किलोग्राम और 20 किलोग्राम है। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतों की तुलना और सोच समझकर खरीदारी करना आसान हो जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE में अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। CBSE ने बताया कि आज छात्र मध्यरात्रि तक आवेदन कर सकेंगे। CBSE ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून की उत्तरी सीमा देवगढ़, कोप्पल, अनंतपुरम, चेन्नई है। एक सीजनल द्रोणिका सूरतगढ़, रोहतक, रीवा, रांची, कैनिंग और उसके बाद दक्षिण पूर्व की ओर उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी तक स्थित है। उत्तर प्रदेश और झारखंड के आसपास एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा बना हुआ है, जिसके असर से आज प्रदेश के एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने तथा वज्रपात होने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल रमेश

डेका ने रायपुर में छत्रपति शिवाजी महाराज राज्याभिषेक समारोह दिवस पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज का साहस, सुशासन और राष्ट्रभक्ति का आदर्श आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा को संसद के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी विभागीय संसदीय स्थायी समिति का सदस्य नामित किया गया है। छत्तीसगढ़ के क्रिकेट खिलाड़ी आयुष पांडे का चयन भारत ए की टीम में श्रीलंका दौरे के लिए किया गया है। और कोरबा जिले में अवैध उत्खनन और परिवहन के खिलाफ खनिज विभाग के विशेष उड़न दस्ता ने बड़ी कार्रवाई की। जिले के 15 संदिग्ध स्थानों पर छापेमारी के दौरान अवैध गतिविधियों में संलिप्त 14 वाहन और मशीनें जब्त की गई हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता के आधार पर खाद बीज उपलब्ध कराया जाए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति आज रायपुर में आयोजित सामाजिक प्रगति चिंतन सम्मेलन में शामिल होंगी। और घरेलू रसोई गैस की कीमत में 29 रूपये की वृद्धि की गई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक हिन्दी समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 10 बजे हैं। पेश है कार्यक्रम गुलशन। आज इसमें आप सुनेंगे नए तराने। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म एनिमल से। आवाज और संगीत है विशाल मिश्रा का, गीत है राजशेखर का।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए फिल्म गदर 2 से मिथुन नीति मोहन और विशाल मिश्रा की आवाजों में। गीत है सईद कादरी का, संगीत है मिथुन का।

विशाल मिश्रा और तुलसी कुमार की आवाजों में पेश है फिल्म बॉर्डर 2 का गीत। गीत है मनोज मुंतशिर का, संगीत है विशाल मिश्रा का।

आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से कार्यक्रम गुलशन में आप सुन रहे हैं नए तराने। कार्यक्रम का अगला नगमा अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म किसी का भाई किसी की जान से। आवाजें हैं कमाल खान और पलक मुच्छल की, गीत है शब्बीर अहमद का, संगीत है हिमेश रेशमिया का।

अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाज में लीजिए सुनिए फिल्म जवान का गीत। गीत रचना है कुमार की, संगीत निर्देशन है अनिरुद्ध रविचंद्र का।

कार्यक्रम गुलशन में अभी आप सुन रहे थे नए तराने। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 10:30 हुए हैं। पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फोन इन चाहत। प्रस्तुति है हरिप्रिया पानीग्रही की, संयोजन है चंद्र ऋषि ठाकुर का।

0: नमस्कार, फोन इन कार्यक्रम चाहत में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैथिली शरण गुप्त जी की कविता को अपनी प्रेरणा बनाते हुए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। निज गौरव का निज ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे। करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। आइए इसी सुविचार के साथ लेते हैं आज का पहला फोन।
1: हेलो।
2: हेलो,
1: हाँ जी नमस्कार, फोन इन कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: नमस्ते मैडम जी।
1: हाँ जी बोलिए।
2: मैं साहिल बोल रहा हूँ।
1: साहिल कहाँ से बोल रहे हैं?
2: पीकल की नगरी मुरादाबाद से।
1: हाँ जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, बताइए कैसे हैं साहिल जी?
2: एकदम अच्छा, आप बताइए मैडम जी, आप कैसे?
1: हम भी बढ़िया हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस है जब हम फोन इन कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बताइए क्या कुछ सोचा है आपने? जुलाई महीने में पौधे लगाने का समय होता है।
2: जी जी, हमारे यहाँ पे तो मैडम जी, मैं तो गांव से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे यहाँ पे तो मैडम जी क्या हरियाली है, खेत है, पेड़ लगे हुए और लगाते हैं हम।
1: जी जी, कौन कौन से पेड़ लगाए हैं आपने
2: यहाँ पे मैडम जी? हमारे यहाँ पे आम का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, नीम का पेड़ है।
1: जी जी,
2: और भी काफी सारे हैं, लेकिन ज्यादातर तो हमारे यहाँ पे अमरूद और आम का पेड़, बेल का पेड़ लगता है।
1: अच्छा, फलदार बड़े वाले वृक्ष लगाते हैं आप?
2: जी जी जी।
1: देखिए वो घने छायादार भी होते हैं और उनसे फल भी प्राप्त हो जाता है ना?
2: जी जी, आम का पेड़ तो काफी एरिया में होता है, उसके नीचे इतना ठंडा से हवा चलती है इन दिनों में यहाँ पे जेठ के महीने में।
1: हाँ, क्या करते हैं सर जी आप?
2: तो मैं तो मैडम जी, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ और यहाँ पे इस टाइम पे तो छुट्टियाँ चल रही है, तो कंपनी में मैं फर्नीचर का जॉब करता हूँ।
1: किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं आप?
2: इस टाइम पे मेरा बीकॉम फर्स्ट ईयर, तो मैडम जी एग्जाम हो चुका है मेरा।
1: जी हाँ जी हाँ, बताइए साहिल जी कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
2: तो मैडम जी मूवी देखी संग्राम
1: जी,
2: दिल में मोहब्बत है, आंखों में प्यार, तुझको ही कहा है ओ मेरे यार, मिलेगा सुनने को?
1: हाँ हाँ जी जरूर। ठीक है साहिल जी, लीजिए सुनिए आपकी फरमाइश का गाना।
2: ओके, थैंक यू मैडम जी,
1: आपको भी धन्यवाद।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: हेलो,
3: फोन इन कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: दीदी, मैं आपका नियमित रेडियो श्रोता, अस्पताल लोक केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गौर बोल रहा हूँ।
3: जी हाँ, चंद्रेश गौर जी, बताइए कैसे हैं आप?
2: दीदी, आप सबकी दुआएं हैं और इतनी तपती धूप में, और जो आप लोग हम लोगों को संगीत के माध्यम से जो ठंडक का एहसास दिला रहे हैं, इसके लिए हम आपका तहे दिल से और आकाशवाणी जगदलपुर के तमाम अधिकारियों और उद्घोषकों का आभार व्यक्त करते हैं।
3: जी हाँ, इसका तो ध्येय वाक्य ही है, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय।
2: बहुजन सुखाय जी,
3: इसी के लिए आकाशवाणी ने जो जिम्मा लिया है वो उसे पूरा करती है।
2: बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है।
3: जी, हम इसके सहयोगी मात्र हैं और हम भी अपना काम करने का पूरा प्रयास करते हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल दीदी, आज भारत सहित समूचा विश्व आज विश्व पर्यावरण दिवस मना रहा है।
3: जी हाँ जी हाँ, जब हमारे इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हो रही है 5 जून को।
2: जी जी जी जी, मैं इसकी भी आप सभी को मंगलमयी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूँगा।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी परिवार की ओर से। वनों के बिना तो हमारे जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती।
2: बिल्कुल दीदी, सही कहा आपने। कभी गर्मियों की पहचान आम की बोर, कुएं की पानी और मानसून के इंतजार से होती थी।
3: जी हाँ,
2: ये पहले कपती थी लेकिन मौसम का अपना एक अलग स्वभाव था, और आज वही गर्मियाँ, हीट वेव, जल संकट और मौसम की अनिश्चितता की खबरों के साथ आती हैं।
3: अभी जितना प्रचार प्रसार हो रहा है वैश्विक स्तर पे भी कि पौधे लगाइए, उन्हें बड़ा कीजिए, उन्हें पेड़ बनाइए, वृक्ष बनाइए, जिससे ऑक्सीजन मिलेगा, लेकिन मेरे हिसाब से शायद हमारे पूर्वज जो करते थे वो हम नहीं कर पा रहे हैं।
2: बिल्कुल, इसमें प्रकृति से हमने
3: इस विषय हमें ही गंभीरता से सोचना है। और जैसे कि जन्मदिन के अवसर पर और एक पेड़ माँ के नाम करके इसे भावनात्मक रूप से भी लोगों को जोड़ने का प्रयास किया है हमारे।
2: बिल्कुल बिल्कुल, सही कहा दीदी आपने कि प्रकृति से तो हमने बहुत कुछ लिया है।
3: जी हाँ,
2: लेकिन दुर्भाग्य ये है कि प्रकृति को हम कुछ दे नहीं पाए।
3: जी हाँ, तो हम
2: ये हमारा दुर्भाग्य,
3: हम सभी ऐसा प्रयास करेंगे कि पेड़ पौधे लगाएंगे। तो चलिए बताइए, कौन से फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं आप?
2: दीदी, फिल्म है एक बार फिर, ये पौधे, ये पत्ते, ये फूल, ये हवाएं।
3: देखिए, हमारी बातचीत भी इसी संबंध में हुई और आपने ये गाना पसंद किया है।
2: बिल्कुल, और दीदी मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि पर्यावरण की रक्षा करना प्रकृति पर कोई उपकार नहीं है।
3: जी जी,
2: ये तो हमारी अपनी सांसों और आने वाली नस्लों के वजूद की जंग है।
3: जी जी, हम स्वयं पर ही उपकार करेंगे यदि हम पौधे लगाते हैं तो।
2: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब तक हम प्रकृति सुरक्षित है
3: जी,
2: अभी तक हमारा अस्तित्व है।
3: प्रकृति तो बहुत उदार है, वो हमें बहुत कुछ देती है, बस
2: जी, जी, जी।
3: हमें समझने की जरूरत है कि हमें भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाना है, और प्रकृति को बचाए रखेंगे तो हम भी बचे रहेंगे।
2: बात से बात करके बहुत अच्छा लगा दीदी।
3: आपने भी फोन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लीजिए, सुनिए आपकी पसंद का ये गाना।
2: थैंक यू।

0: किसान भाई बहन मन का जे नुआ वार्ड एदाए रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 बजे ले 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने ले जुड़लो सपाई समस्या चो समाधान बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होय से रोजे मंगलवार अड़ौ पहाड़ 3:30 बजे ले 4 बजे तक। तो आपन मन सपाय सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आए 07782226666। फोन इन किसान वाणी आपन मंचो सवाल आपन मंचो कहानी खेती बाड़ी चो जुबानी आकाशवाणी जगदलपुर ने।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: हेलो,
4: नमस्कार जी।
3: हाँ नमस्कार, फोन इन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बताइए, नाम बताइए जी अपना।
4: मैं बोल रहा हूँ पंजाब से, गांव हीरावाली, फाजिलका डिस्ट्रिक्ट, सुभाष गुजारा।
3: सुभाष जी बताइए।
4: बस मैम, जगदलपुर का साथ बना हुआ है और बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम सुनने को मिलते हैं। साथ में यहाँ बाइक रिपेयर की शॉप है, फाजिलका में काम करते रहते हैं और आकाशवाणी का साथ तो काफी सालों से।
3: बाइक रिपेयरिंग की दुकान है आपकी?
4: हाँ जी।
3: तो इधर काम चलते रहता है और इधर आपका हमारा रेडियो बजता रहता है।
4: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे अच्छे दिन जो श्रोता सुमन प्रोग्राम आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। ये
3: बहुत अच्छी बात है, आप सभी के लिए, आपके मनोरंजन के लिए ही आकाशवाणी सारे कार्यक्रम देती है और आप सुन के आनंद लेते हैं, ये बहुत अच्छी बात है।
4: मैम पहले मैं नाम लेता हूँ, मेरे साथ तो हमेशा घरवाली होती है, बिमला देवी, बच्चे इंदु वाला, पार्वती देवी, लड़का हिमांशु और जितने जगदलपुर के अपने श्रोता वो साथ सुन रहे हैं।
3: जी जी जी, और बताइए आज आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
4: आज मेरे को सड़क फिल्म का गीत सुनना, जब जब प्यार पे पहरा हुआ है, प्यार और भी गहरा गहरा हुआ।
3: बहुत बढ़िया गाना चुना है आपने, प्यार में तो गहराई होती ही है ना?
4: बिल्कुल बिल्कुल,
3: श्रोता और हमारे रेडियो का भी संबंध ऐसे ही प्यार का संबंध ही है जो बना हुआ है ना?
4: बिल्कुल, ये श्रोताओं का प्यार ही है जो इतनी दिन दूर दूर से अपने के अंदर से श्रोता जुड़ते हैं और अपनी बात भी रखते हैं और अपना मनोरंजन भी खुद सबका हो रहा है।
3: तो दीदी सुनिए, आपकी पसंद का ये गाना, आपसे बहुत अच्छी बातचीत हुई, फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
4: शुक्रिया मैम।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: हेलो, फोन इन चाहत।
3: हाँ, फोन इन चाहत में आपका स्वागत है।
2: नमस्कार मैम।
3: नमस्कार।
2: मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी बात कर रहा हूँ।
3: कार्यक्रम में आपका स्वागत है मोहम्मद वकार फरीदी जी।
2: जी मैम, हरी प्रिया जी बात कर रही हैं।
3: जी हाँ, मैं हरी प्रिया बोल रही हूँ।
2: जी मैम, कैसे हैं आप?
3: बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं बताइए।
2: जी मैम, मैं भी अच्छा हूँ। और आज फोन इन चाहत में मैम बहुत ही समय के बाद आपसे बात हो रही है।
3: जी जी, बताइए वहाँ का मौसम कैसा है?
2: मैम, मौसम में तो काफी गर्मी है, लेकिन
3: मानसून ने दस्तक दी।
2: हाँ मैम, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई थी आज सुबह में।
3: जी जी,
2: उससे थोड़ा सा बस ये है कि मौसम थोड़ा सा चेंज हो जाता है।
3: जी जी,
2: और थोड़ी हवा भी चल रही है तो थोड़ा सा मौसम मतलब बेहतर है। सुनते रहते हैं प्रोग्राम आकाशवाणी जगदलपुर के और जुड़े रहते हैं, अच्छे लगते हैं सारे कार्यक्रम।
3: बताइए आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
2: मैं आज मैं सुनना चाहूँगा, फिल्म का नाम है बाजीगर, उसका गीत है। किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है।
3: आपको चेहरा पढ़ना आता है?
2: बिल्कुल मैम, आता है।
3: ठीक है, फिर लीजिए सुनिए अपनी पसंद का गाना।
2: जी मैम,
3: धन्यवाद फोन करने के लिए।
2: थैंक यू मैम, शुक्रिया।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: हेलो।
5: हाँ जी, फोन इन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है।
4: नमस्ते बहन जी।
5: नमस्ते जी।
4: आपका शुभ चिंतक। मेरा नाम बाहुबली है। छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से संवाद कर रहा हूँ बहन जी।
5: जी जी।
4: जन्म के साथ ही पिताजी ने और माताजी ने हमारा नाम बाहुबली रखा।
5: जी जी।
4: मगर जब से ये मूवी आई
5: जी जी,
4: तब से लोगों को जरा आश्चर्य देता है कि इनका नाम कैसा, कुछ गलत तो नहीं बोल रहे है। मगर ये वास्तविकता है। अभी मेरी उम्र 84 84 साल चालू है बहन जी।
5: बहुत अच्छी बात है, आप सतायु हो और उससे भी आगे जिए, हमारी तो यही शुभकामना है।
4: चलो, बहुत बहुत आपके मंगल कामना के लिए धन्यवाद।
5: जी हाँ, बताइए कौन से फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं?
4: फिल्म मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम, दिल तेरा दीवाना।
5: अच्छा जी, बहुत ही अच्छा गाना आपने पसंद किया है और आपके हौसले को, आपके जोश को हम सलाम करते हैं। आपकी जिंदा दिली के हम भी कायल हो गए हैं।
4: जी जी, ये तो आपका बड़प्पन है
5: जी। बहुत अच्छी बात है, आप यूं ही हमारे केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम सुनते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए गीत संगीत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए। धन्यवाद।
4: धन्यवाद।

0: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
1: हेलो।
2: हाँ, फोन इन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नाम बताइए जी अपना।
1: हाँ, हरिप्रिया जी को हमारा वंदे मातरम।
2: वंदे
1: मातरम। मैं बनिया पारा धनतेरस से बोल रहा हूँ, रामचंद्र माखीजा काथर है।
2: अरे वहाँ, रामचंद्र माखीजा जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका
1: जी। धन्यवाद।
2: बताइए कैसे हैं आप?
1: बस भगवान की दया से ठीक है, अभी बढ़िया है।
2: और
1: गर्मी भर बढ़ गई है।
2: कैसा है
1: जी,
2: मानसून ने दस्तक दी कि नहीं?
1: हाँ, मानसून ने दस्तक दी है, लेकिन उतना बरसात नहीं गिरा है। तापक्रम तो अभी बढ़ा हुआ है, कोई राहत मिली है बीच में बरसात गिरी से? रात
2: को दस्तक ही होगी ना।
1: हाँ,
2: बरसात तो अभी दूर है।
1: हाँ, क्या है, पहले मकान कच्चे थे तो वृक्ष अच्छे थे।
2: जी जी।
1: मकान पक्के बने हैं तो वृक्ष कटे हैं, तो उसका भी प्रभाव पड़ता है ना?
2: बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा।
1: हाँ, क्योंकि हमारे घर जो कच्चा था तो पीछे में पेड़ वगैरह रहते थे बढ़िया, उससे फल वगैरह मिल जाता था, जाम है।
2: आपकी ये जो बात कर रहे हैं, इससे मुझे एक कवि की बहुत ही अच्छी पंक्तियाँ याद आ रही है।
1: जी।
2: रच रहे कंक्रीट धरती का हरापन नोच कर, रच रहे कंक्रीट धरती का हरापन नोच कर, मनुज भी बाकी रहेगा अगर वन बाकी रहे।
1: जी जी।
2: देखिए, घर बना लेंगे हम, घर में रहने लगेंगे, लेकिन जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगा हम सांस कैसे ले पाएंगे?
1: हाँ,
2: घर भी जरूरी है, लेकिन वनों की सुरक्षा भी बहुत
1: बहुत जरूरी है। तो हम पक्के मकान तो बना लेते हैं, उसमें भाई पेड़ नहीं उगा सकते, तो चलो ऐसे ऑक्सीजन वाले तुलसी के पौधे हो गए, अन्य फूल के पौधे हो गए छोटे छोटे, उसको भी लगाने से वातावरण में शुद्धि मिलेगी।
2: जी हाँ, जी
1: और ऑक्सीजन मिलेगा।
2: जी हाँ जी, जीवन का प्रमुख साधन का खान पान की चीजें भी हमको वनों से मिल जाती है ना।
1: जी जी, और आय का स्रोत भी है ना वन।
2: हाँ,
1: हरिप्रिया जी,
2: निश्चित
1: इनकम भी मिल जाती है। इमारती लकड़ियाँ हैं वो तो चलो भाई व्यापार के हिसाब से हुआ, फल हुआ, अमरूद हुआ, लीची हुआ, जाम हुआ, आम है अभी सीजन। तो मेरा तो यही बचपन में रहता था, पीछे बाड़ी रहती थी, आम की गुठलियाँ फ्रेश चाकू से काट कर, यानी जूठी नहीं हो
2: जी,
1: तो उसको मिट्टी में उगा देता था, फिर कहीं न कहीं लगा देता था दूर दराज 10-12 किलोमीटर के गांव के आसपास इधर उधर जगह देख के।
2: तो आजकल आप लगाते हैं कि नहीं पौधे?
1: अभी नहीं लगा रहा हूँ, अभी क्या है जाना हो नहीं पाता उम्र के हिसाब से। तो पहले क्या बरसात वगैरह में भी निकल जाता था साइकिल में लेकर।
2: जी हाँ जी।
1: क्या इधर दूसरा मकान बना लिया है ना, दूसरे जगह है पक्के में?
2: तो रामचंद्र माखीजा जी, आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: आप सुनाइएगा बूंदे जो मन गए मोती, ये कौन चित्रकार वाला?
2: आपका बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए। ऐसे ही हमारे कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी जगदलपुर के साथ जुड़े रहिए
1: जी। शुक्रिया। वंदे मातरम।
2: वंदे मातरम।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
0: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
2: हेलो।
3: हाँ फोन इन कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: नमस्कार।
3: हाँ नमस्कार जी,
2: बुलंदशहर में बोल रहा हूँ, मोहम्मद सईद अब्बासी।
3: हाँ कार्यक्रम में आपका स्वागत है अब्बासी जी।
2: जी शुक्रिया, मेहरबानी। आज बहुत दिन बाद मेरी कॉल लगी है, बड़ी खुशी हो रही है मुझे।
3: देखिए ये तो आनंद की बात ही है, मुलाकात हो बात हो, हम जिसे चाहते हैं पसंद करते हैं, और हमारे केंद्र से प्रसारित कार्यक्रमों को तो आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं।
2: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल, सुनता भी हूँ।
3: फरमाइश पूरी होने वाली है, बताइए कौन से फिल्म का गाना सुनेंगे?
2: जी मैं गाना सुनूंगा फिल्म सरगम का, जिसके बोल हैं टपली वाले टपली बजा, और इस गाने के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा।
3: जी
2: देखिए जब ये सॉन्ग लिखा गया था
3: जी जी,
2: तो इसमें मोहम्मद रफी साहब के मतलब ज्यादा वर्डिंग नहीं थी, बोल जो थे वो कम थे।
3: जी हाँ।
2: तो एक इंटरव्यू में इन्होंने लता जी ने कहा था कि जब ये रिकॉर्डिंग चल रही थी तो रवि साहब मेरे से कह रहे थे कि मेरी जो वर्डिंग है मेरी कब शुरू होगी।
3: जी।
2: बोले अभी आपका कपाट कम है इसमें, पहले मेरे गाना है गाना। तो काफी देर हो गई, उनसे रहा नहीं गया वो, जब रिकॉर्डिंग चल रही रिकॉर्डिंग रूम में पहुंच गए तो जैसे ही कहने लगे उन्होंने स्टार्ट कर दिया कि घुंगरू वाली घुंगरू बजा मैं नाचू तू बजा, तो वो बहुत जोर से हंसने लगी। तो वो कहने लगी ये लाइन कहाँ से आई कि ये मैंने लिखी है। तो ये छोटी सी रफी साहब की चुलबुली हरकत थी जो मैंने आपसे शेयर की, और जितने भी आपके प्रोग्राम को सुन रहे हैं उन सबको ये मतलब मैंने सोचा कि चलो ये गाना सुनूंगा।
3: मतलब गायकों के बारे में या कलाकार के बारे में सुनते हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि देखिए फिल्मी जगत से तो हर व्यक्ति का किसी न किसी रूप में लगाव या जुड़ाव झुकाव रहता ही है, और इस तरह की घटनाएं सुनकर हम आकर्षित भी होते हैं, हमें अच्छा भी लगता है। चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताई।
2: मैं अपना इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह से देता हूँ
3: जी,
2: बुलंद शहर की बुलंद आवाज में मोहम्मद सईद अब्बासी का, आपको और आपके जितने भी मखमली आवाज वाले प्रेजेंटर हैं उन सबको मेरा प्यार भरा आदाब, और जितने भी टेक्नीशियन हैं और आप सबका मैं शुक्रगुजार हूं कि आप बड़ी मेहनत से प्रोग्राम को तैयार करके लाते हैं और बहुत लजीज नगमे हमें सुनवाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है।
3: गाने ही इतने सुरीले बनाते हैं, गीतकार संगीतकार गायक इन सब की मेहनत का फल होता है
2: जी, उसमें आप भी तो मेहनत करते हो ताकि वो आप भी तो लिस्नर को मद्देनजर रखते हुए ही प्रोग्राम को तैयार करते हो कि मतलब हमारे लिस्नरों को अच्छा लगे ताकि अपनी प्रतिक्रिया हमें भेजें।
3: शुक्रिया शुक्रिया तारीफ के लिए।
2: यकीन मानिए जब से मैंने जगदलपुर के कार्यक्रम सुनने शुरू किए हैं
3: जी जी,
2: तब से मैं रेगुलर सुनता हूँ, और एक मेरे दोस्त है रोशन देवांगन जी, उन्होंने मुझे आकाशवाणी जगदलपुर से जोड़ा है।
3: जी हाँ जी हाँ।
2: उन्होंने कहा था मेरे से कि आप इस प्रोग्राम को सुना करो, जगदलपुर के बहुत अच्छे प्रोग्राम होते हैं।
3: रोशन जी हमारे भी आर जी आते हैं, रोशन देवांगन हमारे छत्तीसगढ़ के नियमित श्रोता है।
2: जी जी जी, तो ये गाना आपको और जितने भी सुनने वाले हैं सभी को गाना ये डेडिकेट करता हूँ।
3: जी हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, यूं ही जुड़े रहिए आकाशवाणी जगदलपुर से, फोन करने के लिए धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए।

0: हेलो
1: हाँ, फोन इन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नाम
0: जी।
1: बताइए।
0: हाँ नमस्कार,
1: नमस्कार।
0: संजीत कुमार बोल रहा हूँ मैं, पांड्यार गांव फरस गांव से। जी
1: हाँ बताइए संजीत कुमार। मुझे लगता है हमारी पहले भी बात हो चुकी है। हाँ
0: मैम, फिल्म
1: बताइए, कौन सी फिल्म का गाना सुनेंगे?
0: परदेसी बाबू का सुना दीजिए मैम।
1: कौन सा गाना?
0: क्या है प्यार बताओ ना, दिल का चैनिया दिल का रोग, बड़ा कठिन है प्यार निभाना, ऐसा क्यों कहते हैं लोग। कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में है मैम।
1: हाँ, संदीप जी क्या करते हैं आप?
0: अभी तो खेती चल चल रहा मैम, धान बुआई स्टार्ट करेंगे,
1: जी हाँ
0: मक्का तोड़ाई हो गया है मैम।
1: जी। और कैसा, आप बताइए इस बार का मानसून कैसा होगा? बारिश अच्छी होगी?
0: इस बार तो मानसून
1: क्या
0: कम होगा
1: अनुमान
0: लग
1: है
0: रहा है मैम,
1: आपका?
0: पानी कम गिरेगा लग रहा है मैम।
1: बारिश कम होगी?
0: जी जी मैम।
1: देखिए, इससे तो नुकसान हो जाएगा। तो
0: जी
1: आपकी खेती में बोर वगैरह करवाए हैं आप?
0: बोल रहा है मैम, नाला भी है मैम।
1: अच्छा, दोनों चीजें हैं आपके पास।
0: जी मैम
1: तो फिर बारिश होने का महत्व है कि नहीं, बताइए।
0: है मैम।
1: जी। तो चलिए, खेती बाड़ी कीजिए और अच्छी अच्छी चीजें, सब्जियां खिलाइए
0: जी मैम
1: हमें। और देखिए, किसान तो हमारे लिए भगवान की तरह है,
0: जी मैम
1: अन्नदाता है हमारा।
0: जी।
1: लीजिए सुनिए आपकी पसंद का गाना। बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए। धन्यवाद।

0: साथियों, ये था हमारा आज का फोन इन कार्यक्रम चाहत। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आप भी हमें फोन कर सकते हैं प्रत्येक शुक्रवार को दोपहर 3 बजे से 3:30 के बीच। हमारे फोन नंबर है 2221600 और दूसरा फोन नंबर है 2226666। हमारा एसटीडी कोड है 07782। श्रोताओं, आपसे अनुरोध है कि कम से कम 2 या 3 माह के अंतराल के बीच में ही आप हमारे इस कार्यक्रम में फोन करें, जिससे अन्य श्रोता साथियों को भी हमसे जुड़ने का अवसर मिल सके। अब इस कार्यक्रम से हरिप्रिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम चाहत। प्रस्तुति थी हरिप्रिया पानीग्रही की, संयोजक चंद्र ऋषि ठाकुर का था। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलो हर्ट्स और एफएम बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। हमारे कार्यक्रम आप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: सुनो ना।
5: हाँ?
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
5: तो रोका किसने है? हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
5: मुझसे।
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूँ।
5: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
4: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
1: हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। कार्यक्रम गुड़दुम में सुनिए दयो और साथी से हलवे लोकगीत।
6: सगा जो

Bye. Minha amor.

ಕೂಡಿ ಮಾರಿ ನಡಿ

Vas-y, laisse le coup de mourir dans les mots.

सुमति राजा।

बिगली बिगली अगन मन करैली कहली।

ಚಂದಿರ ಹದಿನೂರ ಇರೇವ

0: असनी असनी बरका बेले चढ़ नहीं जन गोरे कारे भाजी वजीर असी लकूटी मारी डांडी मांगनार कथा भाजी बदमन का छड़ों दिला बसों दिला जमनार कथा दादा उन्हीं घर जारू गीत का जे बदे मारू कारे मामा मामा रे नीर कूटी मारी डांडी मांगनार तुम कहता कला तो कला लगली सगा जो मनाए रे
1: सड़का सड़का जंग सी बचे मड़ी तेलो तेलो बास करे भाची
0: भाची रे सी लकुटी मारी डाडी मांगनाए रे कसम भाची बस नदीला जी मारे के छड़ में पिन झमनाए रे
1: बोला ना बीती जा बोला तेरो से केवले कमन खासे करे भाची
0: लगली सगा जो मनाए रे
1: ढंगरी

ಬರೆಯಿರುವ ಕಿರಿಕಿರಿ ಹಾಲಿನಾಗಿದ್ದೇವೆ.

कार्यक्रम गुड़दुम में आप सुन रहे हैं दयो और साथी से हलबी लोकगीत।

Radio.

नदी गयलरी गदुर झुले तुमचो काजे मानालु रे दुआरे कदली गचो सुआकाई गडा रोस

0: चरकीना जाह छेदे द्वारे कदली गच सुआ खाई गला रस राम गला रे वनवास
1: नगरी उपरे भगरा मिया लगी ना देखू कोई द्वारे कदली गच सुआ

ତମ

स्वधर्म प्रोग्राम करलाई।

いや

0: जुआली
1: हजारी गोरे लोग नायिका
2: बड़ी थाने मईलो डिंडा गावे चौटा पिंडा कारानी चुबे चुबाली हजारी गोरे नायिका चुबे चुबाली
1: बाटे
0: बोरो सिला पानी कायरानी चुबे चुबाली हजारी घरे नाई कायरानी चुबे चुबाली।

0: कार्यक्रम कुर्दुम में आप सुन रहे थे दयो और साथी से हल्बी लोकगीत। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। दिन के 11:55 होने को हैं। प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करते हैं।
1: इन फरमाइश, ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। प्रस्तुतकर्ता थी प्रवीणा त्रिपाठी। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11:55 होने को हैं। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। ये आकाशवाणी रायपुर है। लीजिए अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 29 रूपये की वृद्धि की गई है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति आज रायपुर में आयोजित सामाजिक प्रगति चिंतन सम्मेलन में शामिल होंगी। और छत्तीसगढ़ के क्रिकेट खिलाड़ी आयुष पांडे का चयन भारत ए टीम में श्रीलंका दौरे के लिए किया गया है। अब समाचार विस्तार से। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रूपये की वृद्धि की गई है। नई दरें आज रात 12 बजे से लागू हो गई हैं। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस की कीमत 913 रूपये से बढ़कर 942 रूपये हो गई है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति आज रायपुर के एक दिवसीय प्रवास पर रहेंगी। रायपुर में आयोजित पिछड़ा वर्ग संगठन के सामाजिक प्रगति चिंतन सम्मेलन में शामिल होंगी। इसके अलावा अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक भी लेंगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कृष्णा गौर भी आज रायपुर पहुंच रही हैं। श्रीमती गौर भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में शामिल होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 जून को दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में इस वर्ष के 65 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। इससे पहले पिछले महीने श्रीमती मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित पहले नागरिक अलंकरण समारोह में 66 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे। ये पुरस्कार प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के ग्रामीण प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना के तहत प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। योजना के माध्यम से चयनित विद्यार्थियों को प्रतिष्ठित निजी आवासीय विश्वविद्यालय में कक्षा 6वीं से 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 जून निर्धारित की गई है। चयन परीक्षा 5 जुलाई को होगी। इस वर्ष विशेष पिछड़ी जनजातियों के बच्चों के लिए पहली बार 2% आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। सीबीएसई ने बताया कि छात्र आज रात मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। सीबीएसई ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा कल 8 जून को विशेष कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा बनाए गए इस कार्यक्रम का प्रसारण सुबह 8:30 से 9 बजे तक किया जाएगा। छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र इस कार्यक्रम को एक साथ प्रसारित करेंगे। छत्तीसगढ़ के क्रिकेट खिलाड़ी आयुष पांडे का चयन भारत ए टीम में श्रीलंका दौरे के लिए किया गया है। इसी के साथ वे सीनियर इंडिया ए टीम में जगह बनाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। आयुष ने पिछले रणजी ट्रॉफी सीजन में छत्तीसगढ़ के लिए 7 मैचों की 13 पारियों में 57.3 के औसत से 573 रन बनाए थे। इनमें 2 शतक और 2 अर्धशतक शामिल हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल के रसमड़ा स्टेशन पर माल गोदाम लाइन के कमिश्निंग कार्य के लिए 9 से 12 जून तक प्री नॉन इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किए जाएंगे। इसके कारण कई यात्री गाड़ियां प्रभावित रहेंगी। रायपुर डोंगरगढ़ रायपुर सहित 8 डेमू और मेमू गाड़ियां 10 और 11 जून को रद्द रहेंगी। वहीं रायपुर डोंगरगढ़ और डोंगरगढ़ बिलासपुर पैसेंजर गाड़ियां दुर्ग स्टेशन तक ही संचालित होंगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल रमेश डेकर ने रायपुर में छत्रपति शिवाजी महाराज राज्याभिषेक समारोह में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने महाराष्ट्र मंडल को एम्बुलेंस देने की घोषणा भी की। राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा को संसद के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी विभागीय संसदीय स्थायी समिति का सदस्य बनाया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। घरेलू रसोई गैस कीमत में 29 रुपए की वृद्धि की गई है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति आज रायपुर में आयोजित सामाजिक प्रगति चिंतन सम्मेलन में शामिल होंगी। और छत्तीसगढ़ के क्रिकेट खिलाड़ी आयुष पांडे का चयन भारत ए टीम में श्रीलंका दौरे के लिए किया गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

0: मीडियम वेव और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। दिन के 12 बजे हैं।
1: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
2: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
1: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
2: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
1: आकाशवाणी से।
3: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
4: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
5: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
6: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाट एदाए रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 बजे ले 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी। यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने लिए जुड़ लो सपाए समस्या चो समाधान। बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होए से रोजे मंगलवार अड़ौ पहाड़ 3:30 बजे ले 4 बजे तक। तो आपन मन सपाए सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आए 07782226666। फोन इन किसानवाणी, आपन मंचो सवाल, आपन मंचो कहानी, खेती बाड़ी चो जुबानी, आकाशवाणी जगदलपुर ने।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र। अब सुनिए कार्यक्रम रुसरुसा में लोक गाथा आंधा राजा। गायिका है सुभरी बाई।

वासये वेजे सतठन वेटायासोत पुरवु सतजन वुअरियास देशो धोरु न खाओत वे ए राजो धोरु न खाओत वे जे राजो पाट धरत पुरवु देशो पा

दिला, एक पडाल आता तो बदला न दिला, जे घरे नेहून गेला प्रभू घरे नेहून गेला। हरी हरी जय राम राम, ए हरी हरी जय राम राम, मय राम बोलू न जाय प्रभु हरी बोलू न जाय। रोवत रोवत आसत एवे, ए रोवत रोवत आसत एवे, जे आंदा राजा आसत प्रभु आंदीन रानी आसत। कितल दिन तो होली एवे, ए कितल दिन तो होली एवे, जे राज धरुन खासत प्रभु देश धरु।

आय प्रभु आंदा राजा तो आय। ई सोना सोना मच बुहरी मन, ए सोना सोना मच बेटा मन, जे मच बातो सुना प्रभु मच बातो सुना।

मैं ऊपर पूरे तो जाए दे रानी, ये ऊपर पूरे तो जाए दे रानी, मैं बेटी बोरो मांगू प्रभु बेटी बोरो मांगू। ये सोना सोना तुम्हें आधा राजा, ये सोना सोना तुम्हें आधा राजा, जे हम चो बातो सुना प्रभु हम चो बातो सुना। ईसा तो जनो तो बुआरी आसत, ऐसा तो जनो तो बेटा आसो, तो काये विवती पड़ली प्रभु काये विवती पड़ली। इनी जा राजा तुम्हें आधा राजा, ए माना राजा तुम्हें आधा राजा, जे मोचो बातो सुना प्रभु मोचो बातो सुना। हरी हरी जे रामो रामो, ए हरी हरी जे रामो रामो, मैं रामो बोलू न जाए प्रभु हरी बोलू न जाए। बेटा बोले तुम्हें सातो जनो, ये बेटा बोले तुम्हें सातो जनो, जे मोचो बातो सुना प्रभु

मोके प्रभु बेटी नाही मोके। मैं बेटी बोरो मैं मागू का जाए दे ए बेटी बोरो मैं मागू का जाए दे ऊपर पूरा ने आई प्रभु

बोलु न जान प्रभु हरि बोलु न जान। ई झूठा टोंडे मैना मधरले ए मोहिल मुंडे मैना मधरले मैं सबके विनती करले प्रभु सबके विनती करले। ये रानी बोले दे आंधी नरानी ये बेटा बोले दे सातो जो नो हो सुना मोचो बातो प्रभु सुना मोचो बातो। ई बुआरी मनो तुम्हें सातो जो नो ए बुआरी मनो तुम्हें सातो जो

ਮੋਤਾਨੋ ਗੇ ਲੋ ਏ ਵੇ ਏ ਗੀਰਿੰਜ ਮੋਤਾਨੋ ਗੇ ਲੋ ਏ ਵੇ ਜੇ ਆਂਦਾ ਰਾਜਾ ਤੋ ਆਏ ਪੁਰਬੂ ਆਂਦਾ ਰਾਜਾ ਤੋ ਆਏ ਈ ਹੋਰੀ ਹੋਰੀ ਜੇ ਰਾਮੋ ਰਾਮੋ ਏ ਹੋਰੀ ਹੋਰੀ ਜੇ ਰਾਮੋ ਰਾਮੋ ਮੈਂ ਰਾਮੋ ਬੋਲੂ ਨ ਜਾਏ ਪੁਰਬੂ ਹਰੀ ਬੋਲੂ ਨ ਜਾ ਈ ਭੂਲਕ ਭੋਟਕ ਨਾਹੀ ਭਗਵਾਨ ए भूलक भोटक नाई भगवान सरस्वती आले ये वो प्रभु सरस्वती आले ये वो ई खूबे दीनो तो होली भगवान ए खूबे दीनो तो होली भगवान आजी उकालू न दिले प्रभु आजी उकालू न दिले ही सा तो भाई तो बोलत ये वे ऐसा तो भाई तो बोलो तो ये भेजे नीजा बाबा बोलो प्रभु नीजा बाबा बोलो आंधी नरानी तो गागे ये बे ए आंधी नरानी तो गागे ये भेजे गागुना यहाँ से प्रभु गागुना यहाँ से ए नीजा राजा तुम्हें नीजा बोले ए नीजा राजा तुम्हें नीजा बोलो तो ऊपर पूरा ने आए प्रभु ऊपर पूरा ने आए।

ये सो सो लाडू मके बांधू ना दिया, ए भू को लाडू मके बांधू ना दिया, जे आंधा राजा बोले प्रभु।

0: ভগবান লোক তো কায়ে বলো, এ মা পরু লোক তো কায়ে বলো। তো
1: कार्यक्रम रुसरुसा में आप सुन रहे थे सुबरी बाई से लोक गाथा आंधा राजा। श्रोताओं, लोक गाथा का अगला भाग आने वाले शुक्रवार को प्रसारित किया जाएगा। हम आकाशवाणी की जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है शहरी महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन।

0: मेहनत कर सफल खुद को बनाना है, क्योंकि यही रस्मी जमाना है। इस पल को ही नहीं, हमें उस पल को भी सजाना है, हमें उस पल को भी सजाना है। जी हाँ बहनों, हम महिलाएं श्रम करने में पीछे नहीं हैं। उनका अदृश्य श्रम तो जीवनदायिनी है, परिवार बनाने से लेकर देश के निर्माण विकास में अपना योगदान देती हैं। बहनों, आगे मैं आपसे बातें करती रहूं, इससे पहले आपसे अभिवादन तो कर लूं। तो बहनों लीजिए, मैं हाजिर हूं आपके इस छोटे से माइक्रोफोन के जरिए, आपके अपने रेडियो सेट के जरिए। तो स्वीकार कीजिए मेरा यानी कि आपकी अपनी सखी डॉक्टर उषा शुक्ला का स्नेहिल अभिनंदन और प्यार भरा नमस्कार। और आज के हमारे कार्यक्रम घर आंगन में आपका बहुत बहुत स्वागत है बहनों। बहनों, स्त्री सौभाग्य है, हे पुरुष अभागा मत बनो। मैं अदृश्य श्रम ही सही, पर यह चूल्हे का धुआं मेरी सांसें हर दिन चुराता है। यह अनगनत बर्तनों की खटखट मेरे सपनों को कुचल जाती है। मैं अदृश्य श्रम ही सही, पर यह थकान मेरे शरीर मेरी रूह तोड़ती है। हर सुबह से रात की जद्दोजहद कोई नहीं देखता। मैं अदृश्य श्रम ही सही, पर इन हाथों की लकीरों में औरतपन की कड़ी मेहनत जली हुई है। इन आँखों के नीचे के काले घेरे त्याग की दास्तान लिखे हुए हैं। मैं अदृश्य श्रम ही सही, हर घर की रोटी में, हर सलीके में मेरी अनकही मेहनत, मेरा अनकहा प्यार छिपा है। मैं अदृश्य श्रम ही सही, पर कभी बैठ कर पूछो मेरी खामोशी कितनी भारी है, मेरी पीड़ा कितनी सच्ची है। मैं अदृश्य श्रम ही सही, पर सुबह से रात तक तन और मन का श्रम करती हूँ, उसका कोई हिसाब इस किताब में दर्ज होता है। मैं अदृश्य श्रम ही सही, पर बच्चे की भूख, बुजुर्ग का दर्द, पति की थकान सब मेरे हिस्से का है, जो कभी सराहा नहीं गया, केवल फर्ज कहलाता है। मैं अदृश्य श्रम ही सही, पर जब कपड़े धोकर सफ़ेद चमकते और घर की चौखट पर हमेशा मेहमान मुस्कुराती हैं, तो उस चमक और मेहमान की मुस्कान के पीछे मेरी अनगिनत रातों का काम छिपा होता है। मैं अदृश्य श्रम ही सही, पर सच्चाई यह है कि मैं थक जाती हूँ, मेरे पांव फूल जाते हैं, मेरे हाथ छील जाते हैं, और मन में एक ही सवाल उठता है, क्या मेरी मेहनत केवल कर्तव्य है, या यह भी किसी दिन का काम कहलाएगा। मैं अदृश्य श्रम ही सही, पर यह दुनिया भूल जाती है कि औरत घर की नींव है। नींव अगर टूट जाए तो, थक जाए तो यह महल खड़ा नहीं रह सकता। मैं अदृश्य श्रम ही सही, यह कहकर हंस लेती हूँ, क्योंकि मेरी हर थकान में मेरे परिवार की हर धड़कनें बसती हैं। यह सोचकर थकी होने के बाद भी काम कर लेती हूँ। मैं अदृश्य श्रम ही सही। बहनों, ये कविता मैं इसलिए कह रही थी कि मेरी आज की बात का विषय इससे गहराई से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारी आज की बात का विषय ही यही है कि महिलाओं का अदृश्य श्रम। बहनों, महिलाओं का श्रम एक ऐसा श्रम है जो दिखाई नहीं देता किसी को, चाहे वह गृहिणी हो या कामकाजी महिला। वह जितना भी काम कर ले, घर या बाहर का, वह उसके श्रम की श्रेणी में नहीं आता है। उसके कर्तव्यों का लबादा पहना दिया जाता है उसे, और कहा जाता है कि यह उसकी जिम्मेदारी है, कर्तव्य है। आज महिलाएं जीवन के हर क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। घर के समस्त कार्य, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, कपड़ा धोना, अतिथि सत्कार, पूजा पाठ, घर की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए घर से बाहर जाकर अपनी योग्यता के अनुसार श्रम करना, सब कुछ करती हैं। लेकिन यह श्रम जो है अदृश्य श्रम होता है, जो न घर के सदस्यों को दिखाई देता है, न किसी अन्य को। महिलाएं खेत में भी काम करती हैं, फैक्ट्री में काम करती हैं, ऑफिस में काम करती हैं, होटलों में, रेस्तरों में, प्रबंधन संस्थानों में, गार्डन में, शादी पार्टियों के मैनेजमेंट में, सिलाई कढ़ाई बुनाई कर स्वसहायता समूहों के माध्यम से घरेलू उद्योग की सामग्रियों के निर्माण, जैसे अचार, पापड़, जैम, जेली व अन्य जीवन की आवश्यक वस्तुओं के निर्माण में कार्य करती है। बहनों, ये अदृश्य श्रम कहीं ना कहीं देश की प्रगति और आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ता में अपना योगदान देती है। बहनों, जैसा कि उदाहरण के तौर पर भारत में 75% कृषि कार्य महिलाएं ही करती रही हैं। फसलों के उत्पादन से लेकर उत्पाद के बाद होने वाले काम तक महिलाएं करती हैं। हमारी टेबल पर खाना महिलाओं का श्रम है। भारत में 65% कृषि कार्य बल महिलाएं हैं। फिर भी ज़्यादातर महिलाओं के पास ना तो ज़मीन है और ना ही उन्हें सही मजदूरी दी जाती है, और मजदूरी महिलाओं को पुरुषों की तुलना में 1.4% कम है। कहने का मतलब यह है बहनों कि भारत में महिलाओं का अदृश्य श्रम बहुत अधिक है, जिसका रिवार्ड उन्हें नहीं मिलता है, वो उससे वंचित हैं। इसके लिए उनका हमें मिलकर अदृश्य श्रम की महिलाओं को उनका रिवार्ड मिलना चाहिए, दिलाना चाहिए, क्योंकि अधिकांश परिवारों में संसाधन कम होने के कारण महिलाओं को एग्रीकल्चरल लेबर या हाउस होल्डर वर्क माना जाता है। यहीं से महिलाओं का अदृश्य श्रम की शुरुआत होती, जो बिना किसी मालिकाना हक के वंचित होती हैं, ना भी पैसा मिलता है ना सम्मान। तो बहनों, महिलाओं का अदृश्य श्रम अपने आप में न घर की बल्कि पूरे देश की आर्थिक सामाजिक विकास की प्रगति में अपना योगदान दे रही है, इसलिए ऐसे अदृश्य श्रम का सम्मान होना चाहिए, तभी उनके अदृश्य श्रम की वास्तविक परिभाषा को सम्मान मिल पाएगा। जी हाँ बहनों, हमारी आज की बात यहीं तक। चलिए अब विज्ञापन की दुनिया में और सुनते हैं ये संदेश।
1: सो बिड़किन बिड़िया राहत तिंदनत उंडना सामान तलाय दरकता डबल रोटी आरी और छेना पनीर असित के इंजे जीएसटी लगे मायो इदेना संगेन 33 जरूरी दवाई नद मोलावेंट कम की सित तोड़ अदेन के इलाज तलाय खर्चावेंट कम लगे माता जीवन बीमा तगवेंट इंजे जीएसटी छूट दोर किता अदेन के पॉलिसी पोईतनत इंजे सस्ता आंता सुडला कार गाड़ी और 350 सीसी ता पोटरो गाड़ी ता पर्रो 28% जीएसटी मत्ता अद कम मास इंजे 18% अत्ता इदेन मतलब इद की इंजे गाड़ी पोटरो गाड़ी असित के सस्ता दोर किता।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: जो महसूस किया दिल ने उन्हें शब्दों में बयां किया, सहारा दिया कागज कलम ने कल्पना को, धरातल पर मैंने खड़ा किया, शब्दों का चोला पहना कर कहानी उसे बना दिया। तो बहनों, आइए सुनते हैं सुहानी शुक्ला की कहानी भूयादी।
4: नमस्कार, मेरा नाम सुहानी शुक्ला है। मेरी कहानी का शीर्षक है वो यादें। तो लीजिए सुनते हैं ये कहानी। मेरे जीवन में तुम बसंत की तरह आए और पत्थर की तरह चले गए। ना तो मेरी भीगी आँखों को देखा और ना ही आहों को महसूस किया। यदि मैं चाहती तो तुम्हें बता देती कि तलाक लेना इतना भी आसान नहीं जितनी आसानी से मैंने तुम्हें उन तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए, जिन्होंने मेरा वजूद की नींव को ही हिला दिया। यदि मैं चाहती तो अपनी इस टूटी बिखरी जिंदगी का मुआवजा तुमसे जीवन भर वसूलती रहती, पर मेरे अंदर की औरत को यह कतई मंजूर नहीं था, क्योंकि जिस रिश्ते को अंजाम तक पहुंचना ही नहीं था उसे एक खूबसूरत मोड़ पर छोड़ देने में ही मुझे अपनी और तुम्हारी भलाई दिखी। मगर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ आकाश? हम तुम प्यार करते थे ना, तुमने मेरी नौकरी के साथ ही मुझे अपनाया था। फिर यदि शादी के बाद ऐसा क्या हुआ जो तुम आम मर्दों की तरह अपनी जिद को मुझ पर लादने लगे? अब तुम्हें क्या पता कि यह नौकरी मुझे कितनी मुश्किलों से मिली है, पर तुमने तो बिना कुछ सोचे समझे ही फैसला कर लिया और हुक्म दे दिया कि यह नौकरी छोड़ दो पूजा। आकाश, तुम्हें क्या पता कि मुश्किलों से मिली हुई चीजों को आसानी से छोड़ा नहीं जाता। फिर यह तो मेरी नौकरी थी ना, तो तुमने मुझे कभी किसी चीज के लिए मना किया। तुमने मुझे एक बेटी दी, याद है उसके जन्म पर हम दोनों कितने खुश थे, पर तुम्हारी जिद ने इस खुशी के एहसास को भी कम कर दिया। तुम्हारा कहना था कि औरत का काम घर और बच्चे संभालना है। मैं हैरान थी, तुम कितने बदल गए थे। धीरे धीरे मुझे लगने लगा तुम्हारे साथ मेरा कोई भविष्य नहीं है। तुम मेरी सोच को दबाकर मुझ पर हुक्म करना चाहते थे। आखिर हमारे तलाक का मुकदमा अदालत में आ ही गया। 5 साल तक हर तारीख पर मैं अदालत की सीढ़ियां चढ़ती उतरती, दिल दिमाग सब सुन पड़ गए थे। कभी कभी सोचती पता नहीं कब छुटकारा मिलेगा, पर आखिर छुटकारा मिल ही गया। जिस दिन तलाक मिला उस दिन लगा जैसे सब कुछ टूट कर बिखर गया, और एक डर ने धड़कने बढ़ा दी। और एक दिन आकाश ने कानून के जरिए प्रिया को पाने की कोशिश की, मगर तुमने पास आकर कहा, पूजा प्रिया तुम्हारे पास ही रहेगी, पर कभी यह मत भूलना कि वह मेरी बेटी भी है। मैं उससे मिलने आता रहूँगा, उसकी चिंता रहेगी मुझे। मैं क्या कहती, सब कुछ तो टूट गया था। पहले आकाश तुमसे प्यार हुआ, फिर परिवार से बगावत करके तुमसे शादी की, बच्चा पैदा हुआ और फिर अकेली हो गई। नौकरी और आकाश में से मुझे किसी एक को चुनना था और मैंने नौकरी को चुन लिया। जानती थी सरकारी नौकरी थी, मरते दम तक साथ देगी, पर आकाश उसने तो बीच चौराहे पर ही अकेला छोड़ दिया था। जख्म ताजा था, दर्द भी काफी था, पर समय के साथ साथ हर जख्म भर जाता है ऐसा सुना था, और सोचा मेरा भी भर जाएगा। आकाश और प्रिया के बीच एक डेट फिक्स हो गई थी, हर महीने की 1 तारीख को उसने प्रिया के नाम कर दिया था। उस दिन का इंतजार प्रिया को बेसब्री से रहता। आकाश आता और प्रिया को ले जाता। शाम को जब प्रिया वापस आती तो उसके पास ढेर सारे गिफ्ट होते और वह कहती, मम्मी पापा कितने अच्छे हैं, मेरा कितना ख्याल रखते हैं। और मेरे दिल में एक हुक सी उठती। इस बात का जवाब मुझे कभी नहीं मिला। मैं कैसी माँ हूँ। प्रिया का कहना भी ठीक था। आकाश ने ना तो वह घर मुझसे वापस लिया और ना ही अपनी बेटी। फिर मैं उस पर क्या इल्जाम लगाऊं। मैं कभी कभी सोचती कि क्या सारी गलती मेरी ही थी। क्या मुझे अपने पति को उस दंज के साथ अपनाए रखना था। आखिर आकाश ने क्यों मेरी नौकरी छुड़ाने की जिद ठान ली थी। यह तो ठीक था कि नौकरी छोड़ने के बाद मैं चैन की जिंदगी गुजारती, एक आम औरत की तरह औरतों के साथ मेलजोल बढ़ाती, किटी पार्टी करती और मोहल्ले की गॉसिप में हिस्सा लेती। पर रोज पति के साथ गहनों और कपड़ों के लिए फरमाइश करती, मगर मैं एक आम औरत से हट कर थी। मैं कैसे अपने अंदर की क्षमता को मार कर एक आम औरत बन जाती। क्या पुरुष की दासी बनने के बाद ही उसकी गृहस्थी पर राज करने का अधिकार औरतों को मिल सकता है। विचारों की यह कश्मकश हर पल हर घड़ी मेरे मन में कुमराम मचाए रहती थी। समझ में नहीं आता कि गलती आखिर किसकी थी। मैं मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी थी। पिता रिटायर अध्यापक थे। उनके पास दो कमरों का छोटा सा फ्लैट था। एक कमरे में मम्मी पापा और दूसरे में भैया भाभी और उनके बच्चे रहते थे। तलाक के मुकदमे में दौरान ही भाभी के तेवर बदलने लगे थे। उसने एक दिन कह ही डाला, तलाक के बाद तुम प्रिया के साथ कहाँ रहोगी पूजा। यदि सूरज ने मुझे यह मकान रहने को ना दिया होता तो पिछले 12 सालों से दिलो दिमाग में घटनाओं के चक्रव्यूह में फंसा था कि अचानक जिंदगी में कुछ बदलाव आया। दफ्तर में नए बॉस आए थे। काम के दौरान अक्सर फाइलें लेकर बॉस के पास जाना पड़ता था। बॉस का नाम शेखर था। धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि शेखर मुझ में कुछ ज़्यादा ही रुचि लेने लगे हैं। एक दिन शेखर ने कहा, पता चला है कि आपका आपके पति के साथ तलाक हो गया है। जी हाँ, मैंने धीरे से कहा और फिर फाइल उठाकर चलने लगी। तो शेखर ने फिर कहा, मैं आपकी तकलीफ़ को समझता हूँ क्योंकि मैं भी इस दर्द से गुजर चुका हूँ। मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगी। मैं उनके केबिन से बाहर आ गई। एक लंबे अरसे से दर्द से दूर रहने के बाद मैं पत्थर की शिला सी बन गई थी। अब आते जाते शेखर की नज़रें मेरे अंदर की रूखी औरत को पिघलाने लगी थी। एक दिन आईने के सामने बैठकर मैंने खुद को गौर से देखा। मुझे लगा मेरा खूबसूरत चेहरा अब भी वैसा ही है। आकाश अक्सर कहा करते थे, तुम कितनी सुंदर हो पूजा। बरसों बाद अचानक मेरी सोच ने करवट ली। पूजा, क्यों खुद को मिटा रही हो, खुद को संभालो। मैं अगले दिन जब दफ्तर पहुंची तो साथ काम करने वाली महिलाओं ने कहा, वाओ पूजा, आज तो जच रही हो। उस दिन शाम को छुट्टी के बाद बस स्टॉप पर पहुंची तो अचानक शेखर की गाड़ी मेरे पास आकर खड़ी हुई। पूजा जी, आइए गाड़ी में बैठ जाइए, मैं ड्रॉप कर दूंगा। नहीं सर, मैं चली जाऊंगी। जानता हूँ आप रोज ही जाती हैं बस से, पर देख रही हैं काले बादल कैसे गरज रहे हैं। जल्द ही बारिश शुरू होने लगी। शेखर ने कहा, फिर आपकी बेटी भी तो आपका इंतजार कर रही है। प्रिया का ख्याल आते ही मैं गाड़ी में बैठ गई, लेकिन घर पहुँचते पहुँचते बरसात और तेज होने लगी। घर के सामने शेखर ने गाड़ी रोकी। मैंने कहा, सर आइए, बारिश तेज है, बारिश बंद होने के बाद चले जाइएगा। शेखर मेरे साथ अंदर आ गए। प्रिया मोबाइल पर किसी से बातें कर रही थी। उसने शेखर को हैरानी से देखा। मैंने कहा, प्रिया ये शेखर सर हैं, हमारी कंपनी के बॉस। प्रिया ने शेखर को नमस्ते किया और फिर अपने कमरे में चली गई। मैंने महसूस किया कि प्रिया को शेखर का आना अच्छा नहीं लगा। शेखर के जाने के बाद प्रिया मेरे पास आई और बोली, मम्मी मुझे तुम्हारा गैरों से मेलजोल पसंद नहीं है। मेरे मुंह से अचानक निकल गया, कोई अपना भी तो नहीं है। अब कभी कभी शेखर मुझे अपनी गाड़ी से घर छोड़ दिया करते व खाने खाने ले जाया करते। धीरे धीरे मुझे भी उनका साथ अच्छा लगने लगा। मुझे लगने लगा कि मेरे मन का सूना कोना अब भरने लगा है। जब तब मैं भी घर पर खाने के लिए शेखर को बुला लिया करती। शेखर के साथ रिश्ते में एक कदम आगे बढ़ाना चाहते थे वह, पर प्रिया को यह कतई मंजूर नहीं था। शेखर अब इस रिश्ते को नाम देना चाहते थे। मुझसे

0: शादी करना चाहते थे, पर प्रिया उसका क्या होगा? वह बहुत संवेदनशील है, इस रिश्ते को कभी नहीं कबूल करेगी। मैंने शेखर से कहा, शेखर, प्रिया बड़ी संवेदनशील है, वह सौतेले पिता को कभी कबूल नहीं करेगी। मैं जानती थी शेखर बात को समझेंगे। मैं उस दोराहे पर आकर खड़ी थी जहां 17 साल पहले खड़ी थी। मुझे नौकरी और पति दोनों में से एक को चुनना था। अब शेखर और प्रिया में से एक को चुनना होगा, पर प्रिया को मैं किसी भी कीमत में खोना नहीं चाहती थी। एक दिन प्रिया जब आकाश से मिलकर घर आई तो गुस्से से भरी हुई थी। उसने आते ही अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। मैंने खुलवाने की कोशिश करती रही, लेकिन प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। एक घंटे बाद जब वह बाहर आई और मैंने उससे पूछा तो वह रोकर मेरी गोद में लेट गई और फूट फूट कर रोने लगी। बोली, मम्मी पापा ने शादी कर ली। उफ, ये अपने आदर्श पिता की जो तस्वीर उस बेटी के मन में बसी थी वह टूट गई। मेरे अंदर भी कुछ कुछ टूटने लगा। आकाश मुझसे काफ़ी दूर था, पर मेरा और उसके बीच कुछ भी नहीं था। पर उसकी शादी की बात सुनकर दर्द फिर हिरोने लेने लगा। मैंने प्रिया को अपनी बाहों में भर लिया और उसका दर्द कम करने की कोशिश की। इससे पहले कि प्रिया मुझसे कुछ कहती, मैंने कहा, प्रिया पापा ने शादी कर ली तो क्या, तुम्हारी माँ सिर्फ तुम्हारी है। यह सुनते ही प्रिया मेरे गले लग गई। इसके बाद मैंने मन में सोच लिया। अगले ही दिन शेखर को जाकर कह दिया, हम केवल दोस्त ही रहेंगे और किसी रिश्ते में नहीं बन सकते। काफ़ी समझदार थे, उन्होंने सहज रूप से उसे स्वीकार कर लिया। मैंने प्रिया को अस्वस्थ करना चाहती थी और इसलिए शेखर से भी दूरियां बना ली थी, लेकिन धीरे धीरे मैं महसूस कर रही थी कोई अपराध बोध प्रिया के अंदर ही अंदर खल रहा है। एक दिन प्रिया कॉलेज से लौटी तो मुझसे घर पर देखकर बोली, मम्मा आज आप ऑफिस नहीं गई? मन कुछ ठीक नहीं है प्रिया, इसलिए सोचा आज घर पर ही रहकर पढ़ लिख लूं। प्रिया बोली, क्या मम्मा मैं बहुत बुरी बेटी हूँ? ओह ऐसा क्यों कह रही हो? कुछ दिनों से जो कुछ घटित हो रहा है उसने मुझे कुछ सोचने को मजबूर कर दिया है। तभी प्रिया बोली, मम्मा मैं आपकी उदासी का कारण समझती हूँ। पापा ने आपको कितना दर्द दिया है। मैंने बात को टालने का बहाना किया, तुम अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। मम्मा मैं अब यह समझने लगी हूँ कि अकेलापन इंसान को किस कदर आहत कर देता है। शायद इसलिए पापा ने भी शादी कर ली। मैंने प्रिया को हैरानी से देखा और समझ गई वह कुछ कहना चाहती है, पर शायद संकोच के कारण नहीं कह पा रही है। मैं खामोशी से चाय पीने लगी। तभी प्रिया ने कहा, मम्मा मैं आज आपके ऑफिस गई थी। क्यों? शेखर अंकल से मिलने। सच कहूँ तो कभी कभी हम अपने आप में इतना खो जाते हैं कि सामने वाले को समझ ही नहीं पाते। क्या मतलब है तुम्हारा प्रिया? यही कि शेखर अंकल अच्छे इंसान हैं। मेरा दिल धड़कने लगा। मैं उसके आगे उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रही थी और ना ही खुद को तैयार कर पा रही थी। तभी प्रिया ने कहा, आप शेखर अंकल से शादी कर लीजिए। शेखर का उदास चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम गया और फिर अनायास ही मुंह से निकल गया, क्या? प्रिया खिलखिलाकर हंसने लगी, फिर बोली, तो आप क्या सोच रही हैं? मगर तुम, यह नहीं हो सकता प्रिया। क्यों नहीं हो सकता? बल्कि मैं तो कहती हूँ यही होगा। आपने बहुत दुख झेल ले मम्मा, अब आपको जीवन साथी मिलेगा और मुझे अपने पापा। मैं प्रिया के इस बदले मिजाज से हैरान थी। तभी दरवाजे पर आहट हुई। शेखर थे। उन्होंने अंदर आकर मेरा हाथ थाम लिया, कहा, प्रिया बिल्कुल ठीक कह रही है पूजा, सही फैसले सही समय पर ही लेने में बुद्धिमत्ता होती है। मैंने प्रिया की ओर देखा, उसकी आंखों में इस रिश्ते के लिए स्वीकृति थी और फिर मैंने भी शेखर को अपनी स्वीकृति दे दी। धन्यवाद।
1: बहनों, अभी आप सुन रहे थे सुहानी शुक्ला की कहानी। कहानी का शीर्षक था वो यादें। बहनों, अब हमारे जाने का समय हो रहा है और जाने से पहले हम एक छोटी सी रोटी की चूरी की रेसिपी बता दें। बासी रोटी 2 कप बची हुई, एक बारीक प्याज कटा हुआ, 2 टीस्पून घी, 1/2 टीस्पून जीरा, 1 मसाला, तलने के लिए तेल। घी गरम करके प्याज को लाल होने तक भूने, रोटी के टुकड़े करके तेल में तल लें और चूरा करके उसमें जीरा, 1 मसाला और तला हुआ प्याज डालकर तुरंत उसे परोसें। तो बहनों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। बहनों, अब हमारे जाने का समय हो रहा है। हमारे बातें बस यहीं तक। हमें अपनी क्रिया प्रतिक्रिया संदेश लिख भेजिएगा। हमारा पता है पत्रांकन आपके पत्र कार्यक्रम घर आंगन द्वारा उपनिदेशक आकाशवाणी केंद्र जगदलपुर जिला बस्तर छत्तीसगढ़ पिन 4940001 और हमारा SMS नंबर है 9425591594। बहनों, कागज में शब्दों को पिरोकर आप हमें अपना पैगाम भेजें, कुछ अपनी बात कहें व सलाम भेजें। जी हाँ बहनों, लिख भेजिए अपनी चिट्ठी, हम आपके पत्र का जवाब जरूर देंगे। तो बहनों, अपनी भागीदारी आकाशवाणी पर बनाए रखें, क्योंकि बहनों, आदमी लाख संभलने पर भी गिरता है लेकिन झुककर उसे उठा ले वो ईश्वर होता है। इन्हीं लाइनों के साथ अगली मुलाकात तक अपनी आवाज को विराम देती हूँ। इसी के साथ डॉक्टर उषा शुक्ला को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: अभी बहनें सुन रही थीं अपना कार्यक्रम घर आंगन। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दिन के एक बजने को हैं। अब समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 साल के अंतराल के बाद हो रही है। उन्होंने कहा कि इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। विदेश मंत्री ने इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो के साथ नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने पिछले वर्ष द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया है।
2: मैं आप सभी के साथ व्यापक और सार्थक चर्चा की अपेक्षा करता हूं। हमारी बातचीत द्विपक्षीय सहयोग के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगी, जिनमें राजनीतिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार तथा निवेश, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग जैसे विषय शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि हम सहमति से तय किए गए एजेंडा के अनुसार आगे बढ़ते हुए इन सभी विषयों पर सकारात्मक और रचनात्मक विचार विमर्श करेंगे।
1: सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं। घरेलू रसोई गैस की कीमतों में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने उद्योगपति सना सतीश, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्ण और टीडीपी सोशल मीडिया विंग की प्रमुख चिंतकयाला विजय को उम्मीदवार बनाया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू फाइनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 6 परिसरों पर छापे मारे। ये मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी क्रेस्ट के 2 विभागों में 661 करोड़ रुपए के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है। कक्षा 12वीं की परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन जमा कर दें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्नपत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। अमरीकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में समुद्री जहाजों पर दागे गए 2 ईरानी ड्रोन्स को रोका और नष्ट कर दिया है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने पश्चिम एशिया में तैनात अमरीकी बलों की इस कार्रवाई की पुष्टि की है। सैन्य कमान के अनुसार अमरीकी बल हाई अलर्ट पर हैं और इस क्षेत्र में किसी भी खतरे का जवाब देने को तैयार हैं। ईरान ने कल कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। पुरुष क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच के 2रे दिन ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पहली पारी में 121वें ओवर में 8 विकेट पर 541 रन बना लिए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। 1:05 हुए हैं, आइए सुने कृषि समय की बेड़ा खाड़ा चुघोट।
3: कुकुड़ी चो संक्रामक रोग असन रोग के बले सत जोन गोटक कुकुड़ी ले दूसर नंगत कुकुड़ी के दाना पानी और लहरा ले फैले से। बीमार कुकुड़ी मरलो ने बाहर खुला ने पकाले उनके जनावर नाले चढ़ी मन छावन नीलो ने बले ये संक्रामक रोग एक जगह ले दूसर जगह ने फैले से। असनी बीती जुगे करुण हो तो बीमारी चो फैल तो कारण लक्षण रोकथाम और उपचार के मैं सांगेन से। सबले फैलाए रानीखेत बीमारी एके हमी जुमरी बीमारी बल बोलून से। ये बीमारी संगे रतो सफाई कुकड़ी मन ने फैले से। ये रोग भलो ने कुकड़ी मुंह उठावन पुंडे से फटकी के लटकाए से झर खोखली चीखा ऐसे और दस्त होन जाए से। पाए ने रेंगुक नहीं सके और कमजोर होन मरुन जाए से। ये बीमारी होलो ने ये चो इलाज कर तोर किडिक मुश्किल होए से। होनी काजे एके ठेबा तो खाजे साल ने एक हार ये चो टीका लगाओ पड़े से। और दूसर बीमारी आए चेचक एके फाउल पाक्स और माता बीमारी बल बोले सत। ये बीमारी संगे रतो कुकड़ी मन के लार ने एके उनके टोकलो ने और लेहरा ले बोले फैले से। ये चो लक्षण आए कुकड़ी चो छेंडी आँख नाक और टोन ने पिड़की पिड़की होए से। और कुकड़ी चो आँख बंद होन गेलो ने कुकड़ी दाना पानी खाओ नहीं सके। असन ने कमजोर होन कुकड़ी मुरुक सके। हुनी का जे ये बीमारी होलो ने कुकड़ी के एंटीबायोटिक और विटामिन पानी ने घोरुन देते रहते रहे। और जोन पिड़की मन होला से उताले छाली के गुचाउन 2% कापर सल्फेट चो घोल के लगाते रहे। ये बीमारी ले बचा तो काजे फाउल पाक्स वैक्सीन 4 ले ऊपर छो कुकड़ी मन के हर साल लगाते रहे। कुकड़ी मन ने फैलते बीती और गोटक बीमारी होय से जेच नाव आए पुलोरम डिसीज। ये साल्मोनेला पुलोरम नाव छो गोटक जीवाणु ले होय से। ये बीमारी नानी कुकड़ी के ऊंचो माय ले गार ले बोले लग सके। संगे संगे बीमार लगलो पानी दाना चारा और मल ले बोले ये बीमारी फैले से। ये बीमारी होलो ने कुकड़ी के भूख प्यास नहीं लगे और पेट फूले से। और 15 हर दिया कुकड़ी चो मल पाटकुती बाट लटक लो हम दखा दे से। ये बीमारी जुगे करुन नानी कुकड़ी मन के खूब भी नुकसान हमराए से। और ये रोग ले बचा तो काजे डॉक्टर मन चो सांगलो हिसाब ने सल्फा और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन ग्रुप चो दवाई दिलो ने कभी फायदा करे से। और गोटक बीमारी होय से जेच नाव आए कोराइजा। ये झपके झपके गोटक कुकड़ी ले दूसर कुकड़ी के लगा तो बीती बीमारी आए। और ये जुगे करुन सांस नली ने होय से। ये बीमारी हेमोफिलिस गेलिनेरम नाव चो गोटक जीवाणु ले होय से। और ये फैले से बीमार कुकड़ी चो संगे रलो कुकड़ी के और गोटकी ठान ने चारा दाना खातो बीती कुकड़ी मन के। ये बीमारी लगलो ने कुकड़ी चो नाक आँख और टोन ले गाढ़ा पानी और सेमट निकरे से। और पूंड तो ने उनके खूब परेशानी होय से। तो ये बीमारी ले बचा तो काजे कुकड़ी के नंगत सूखा जगह ने हमके संगत रहे। और पानी चो ठान के साफ सफाई ने संगत रहे। और पानी दाना यथा ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और सल्फा ना चो जो दवाई मनात एक मिसात रहे। और नाले डॉक्टर मन के सांगुन ये चो इंजेक्शन बोले लगाव पड़े। तो दा दीदी मन कुकड़ी पोस्तो जितलो बोले लोग मनास कुकड़ी तुमके खूबे लाभ देते हुए व्यवसाय होय से। मात्र एक नियम ले डॉक्टर मंच सांगलो हिसाब ने दखा रखा टीकाकरण और उपचार करा लो ने तुमके खूबे फायदा होय दे।
0: अभी आपने सुना कृषि समय की बेड़ा खाड़ा चुघोट का पुनः प्रसारण। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र।

हम आकाशवाणी की जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:10 हुए हैं। पेश है पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। श्रोताओं, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त प्रीति। स्वीकारें प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज रविवार का दिन है, यानी छुट्टी का दिन है, परिवार के साथ समय बिताने का दिन है। आज हम आपके पत्रों के माध्यम से कुछ चुनिंदा और बेहद प्यारे गीत लेकर आए हैं, जो आपके इस सुंदर दिन को और भी खूबसूरत बना देंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम और सुनवाते हैं आपको ये पहली फरमाइश फिल्म डॉन से, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। अनजान के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है कल्याण जी आनंद जी ने, और पसंद है आपकी। डुमराव से हैं वलीउल्लाह अंसारी, आसमा नाज अंसारी, सोनम, लाल बाबू दीवाना और दिव्या भारती। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हैं हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जयतेग बीरक, मीका बीरक। देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्वनी वर्मा, गणेश मिस्त्री। कवर कॉलोनी बढ़वा से है प्रवीर श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति शिवानी और मीनू राज श्रीमाली। बोरसरा नैला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु, बबली, प्रियांशु साहू। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां। कैदी मुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, श्रीमती उषा सिंह, प्रियंका, पूजा सिंह, लीलू, रितु सिंह, ऋषभ सिंह। बाजार चौक ग्राम दीवाल से शंकर लाल गंगराड़े, वनीता गंगराड़े, छोटू, रोशनी और अजय गंगराड़े। लक्कर बाजार खंडवा से हैं मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकिब पवार, मोइन छोटू पवार और मोहम्मद हसनैन पवार। गांधी बाग अकोला से रमेश कटंकर, वैशाली कटंकर। महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, आसमा, सालिया शोएब खान, रऊब भाई, शहीद भाई। गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंदले, आरती जोंदले। भाटापारा से हैं दान सिंह रावत, दानू, पद्मनी रावत, शुभम, सौरव रावत और नीरज रावत। करपावन बस्तर से गेनू राम बघेल, गोमती बघेल, तनुजा बघेल, सुभाष बघेल और ईशान बघेल।

अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म लैला मजनू का गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के युगल स्वर में। गीत रचना साहिर की है, तर्ज बनाई है जयदेव मदन मोहन ने, चाहत है आपकी। सागर मध्य प्रदेश से हैं चंद्रेश गौहर, श्रीमती वंदना गौहर, मयंक एवं तन्वी गौहर। पन्ना मध्य प्रदेश से कौशल किशोर, संगीता हर्षित एवं वैभव मट्टू। भाटापारा से हैं सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, बाणी चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, धनेश तिवारी, सावन नायक, अंकिता जोशी, वैदेही जोशी। जगदलपुर से पूनम नायडू। नागपुर से हैं कैलाश प्रसाद शर्मा, किरण शर्मा, आशीष कुमार शर्मा, अमृता शर्मा। मूर्तिजापुर से हैं हरुण शाह, साजिया बानो। नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामनी वर्मा। राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबीये, राधिका गजबीये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबीये। महामायापारा ग्राम दरचुरा से फिरंता साहू, दुलौरिन साहू, कामेश्वरी कुमारी, प्रीतम कुमार साहू, ददुआ साहू, भूरी साहू, रेखा, मोतीलाल साहू। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से हैं रविन्द्र सिंह छावड़ा, इंद्रजीत कौर छावड़ा, स्यूटी छावड़ा। अनूपपुर से श्रीमती जयमंत्री, कृष्ण केवट, अंजलि केवट, रेणु केवट। सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। कुंडलेश्वर वार्ड खंडवा से हैं योगेश गुजराती, रेखा गुजराती, तुषार, किशु, आनंद जोशी, अभय गुजराती और भवानी सिंह बैस। तो लीजिए सुनिए ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में। फिल्म का नाम है पत्थर के सनम। मजरूह के शब्द संयोजन में धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। ख्वाहिशमंद हैं। मयूरी परिसर भोपाल से हैं श्रवण सिंह गिनारे, जगदीश सिंह गिनारे, रेखा, विनीता, शेर सिंह गिनारे, संजय पगारे। सुभाष वार्ड भाटापारा से एमएल यादव, अजय कुमार यादव, अमित अमीन यादव, युवान ढावेश यादव। हथबंद नेवदा से हैं सेवकराम यादव, टुपेंद्र कुमार यादव, तुलेंद्र कुमार यादव और देव कुमार यादव। बीसलपुर पीलीभीत से विमल वर्मा, नीतू वर्मा और प्राची वर्मा। हसदा अमनपुर से हैं कमलेश साहू, जितेंद्र साहू और पायल साहू। उत्तर बस्तर कांकेर भान प्रतापपुर से हैं प्रकाश तिरसुनिया, विकास तिरसुनिया, नैतिक मुकुल, दिव्यांश, धैर्य, आराध्या। ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम। जतुका किशनपुर से हैं आलम दिलकश, शबाना आलम, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, फिरोज आलम, नाज प्रवान, चांदनी नाज। ताजपुर मोरवा से भाई कारी रायकारी, श्रीमती मीना कारी, पुंजराज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की, नित, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा, जयंत कुमार, वैरागी। छत्रपति शाहूनगर हिंगोली से पेंटर रामचंद्र हिंगोले, सिद्धांत, टिंकू हिंगोले, रमाबाई, सुरेंद्र हिंगोले, मयूरी, सुरभि, मंजूषा, गौतम हिंगोले। अशोकनगर हिंगोली से दीपाली, राजू ठोके, पार्वती, सखाराम ठोके, रोहित, सोनू, मोनू ठोके। नागेश्वर नगर माटेगांव से शेषराव बोबडे, सुवर्णा सोनाड़ी, सीताराम, शुभम बालाड़ी बोबडे, वेणुताई, वैष्णवी बोबडे, नाविकीकार मातोराम भुसारे। पांगरा सिंधे हिंगोली से हैं सुनील जबड़े, टेलर आरडी हिंगोले, देव किशन हिंगोले और चांदू बलखंडे। बेडी से हैं हुकुम करमकर, सुनीता करमकर, हार्दिक करमकर, प्राची करमकर, तन्या करमकर। सतना बिल्डिंग जबलपुर से अनीता तिवारी, अंजना तिवारी, बीना तिवारी, ज्योति और गौरी। पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तास देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा। छत्री तालाब अमरावती से हैं साधना रानी गुप्ता, किशोर गुप्ता। वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से हैं कुमारी वंदना मराठा, कुमारी देविका चौधरी, गणेश दादा मराठा, कार्तिक भाव मराठा, परी संजना मराठा, मालती चौधरी, स्वाति प्रयाग चौधरी और ललिता नारायण खर्चे। तो लीजिए सुनिए फिल्म पत्थर की सनम का ये गीत।

आरजू, अब सुनिए इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत को सुनना चाहते हैं आप सभी। ग्राम बुड़गहन छत्तीसगढ़ से हैं राम दुलारी प्रजापति, रामशरण प्रजापति, चंद्रेश कुमार प्रजापति, चंद्रकला प्रजापति, शशिकांता प्रजापति, अनारकली बाजार जगराव से हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, बेबी गव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा पाठक। गणेशपेठ पारथडी महाराष्ट्र से हैं अंबादास शिंदे, संगीता शिंदे, अमोल अमृत और सुवर्णा शिंदे। किकीर मेटा बिल्हारी पाटन दुर्ग से हैं संतोष शर्मा, रुकमणी शर्मा। गुरामी डोंडी लोहारा बालोद से हैं पीयूष नेताम, जोहत्रीबाई नेताम और कोमल नेताम। हथकेरा भाटापारा से हैं पंचू यादव, दादू यादव। बावली से कमलेश साहू, हारेंद्र साहू, सुशील बेल, सुप्रिया। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं रामकुमार राउत, अमरिका राउत, गणेश राउत, कार्तिक राउत, युवराज राउत। डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से हैं देवशंकर तामुरिया, अजय देव, राधिका, तुषार तामुरिया, डॉली मास्टर अल कबीर, बेबी पूजा तामुरिया, प्रभा देवी तामुरिया। करताबेडी से हैं राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री दोमने, वैष्णवी दोमने, चंचल दोमने, अर्जुन गवेनकर, धीरज। जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया, पप्पी भाटिया। पुटानी चौक से हैं ललन मिश्रा, उदयकांत ठाकुर, अमन परासर, बेबी आराध्या, लल्लू पंडित, भाई फटफटिया झा, गुंजन परासर, डब्बू मिश्रा, छोटू मिश्रा, बीके सुरगनिया। पाठर कवड़ा से अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, प्राची बुरांडे, अनुश्री बुरांडे, धनश्री बुरांडे। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा, यशस्वी वर्मा। मध्य प्रदेश रतलाम से हैं बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई वर्मा, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा।

0: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह।
1: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज आपकी कहानी आपके खेतों की जुबानी।
2: जीएसटी काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रावर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही रेत चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
3: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम श्रोता सुमन। कुमार सानू और अलका यागी के युगल स्वर में सुनिए देव कोहली का लिखा गीत फिल्म कुरुक्षेत्र से। संगीतकार हैं हिमेश रेशमिया, फरमाइशी खत हैं आपके। मध्य प्रदेश खंडवा से हैं जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम पटेल, ललित, मनीषा, शुभम, भावना, कनिका, आदित्य, मानस पटेल और मन पटेल। कतियापारा जूना बिलासपुर से हैं सुशील देवांगन, अखिलेश देवांगन, लोकेश देवांगन, आशीष देवांगन, रवि, मोनू, सोनू, कान्हा, आदित्य देवांगन। बमहर चाटी डी से गंगा देवी देवांगन, पूनम देवांगन, धनेश्वरी देवांगन, महेश्वरी देवांगन, कुमारी मिल्की देवांगन, बेबी मीनाक्षी, निधि देवांगन। गोगावा जिला खरगोन से उस्मान खत्री, रिजवान खत्री, अब्दुल गफ्फार खत्री। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से हैं रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन। मूर्तिजापुर से है हारून शाह, शाजिया बानो। नवागढ़ कटई से हैं नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामनी वर्मा। राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से हैं राष्ट्रपाल गजबीये, राधिका गजबीये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबीये। महामायापारा ग्राम दरचूरा से है फिरंता साहू, दुलौरिन साहू, कामेश्वरी कुमारी, प्रीतम कुमार साहू, ददुआ साहू, भूरी साहू, रेखा, मोतीलाल साहू। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविन्द्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा। अनूपपुर से हैं श्रीमती जयमंत्री, कृष्ण केवट, अंजलि केवट, रेणु केवट। सपना संगीता रोड इंदौर से हैं लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन, तानिया।

समीर का लिखा गीत सुनिए अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू के युगल स्वर में। फिल्म का नाम है दिल है कि मानता नहीं। इस गीत को संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने। पसंद है आपकी। राजनगर मधुबनी से हैं कुशेश्वर कांति गुप्ता, मौसम गुप्ता, संगीता गुप्ता, रुद्र गुप्ता, रिद्धि सिद्धि गुप्ता। ऐशबाग पीली कॉलोनी लखनऊ से हैं मुकेश गुप्ता, रानी गुप्ता, कुसुम गुप्ता, पलक गुप्ता, पंखुरी गुप्ता। राजनगर गांधी चौक कांति निकेतन से हैं मंजीत गुप्ता, सोनाली गुप्ता, सूर्यांशी गुप्ता, कोमल गुप्ता, मेनका गुप्ता, माधवी साध्वी, एम के गुप्ता, राजू गुप्ता और विनीता गुप्ता। दिल्ली शहर मोरी रोड से हैं कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार। शेरी वडनेर अकोला से हैं बलदेव दामोदर, अरुणा दामोदर। दरियापुर बावली महाराष्ट्र से गजाना नेले, नवदीप येले। कोरदा लवन से हैं भूधर प्रसाद वर्मा, घनश्याम प्रसाद वर्मा, गुलशन कुमार वर्मा, शिव कुमारी वर्मा, हेमलता वर्मा, वेद किरण वर्मा। झुमरी तलैया से देविंगोले, छोटू दादा इंगोले, झकुलिंगोले। पीपरपारा पालचुआ मुंगेली छत्तीसगढ़ से उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, योगिता दिवाकर, नितिन और वंशिका दिवाकर। जेल रोड मथुरा से वसीम आसमा बेलदार, अकरम आसमा बेलदार, उल्लाह आसमा बेलदार। बिहारी कॉलोनी लोनी से हैं परवीन डोम, सरुफुद्दीन डोम, कुमारी वली डोम, कुमारी डब्लू डोम। सरगुजा मैन पार्ट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा, आदिबा थापा। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु। कटोरा तालाब रायपुर से हैं मोहन लाल देवांगन, कृष्ण कुमार ध्रुव, तामन लाल भारती, झावेंद्र कुमार ध्रुव। तालुका निवासा खुपटी महाराष्ट्र से हैं बंडू लोहार पोपलघट, माया शिवांश, चंद्रकला पोपलघट और देवीदास पोपलघट।

अगला गीत हमने लिया है फिल्म खाकी से, आवाज है ए चक्रवर्ती और श्रेया घोषाल की। समीर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है राम संपत ने, अनुरोध है आपका। बिरसिंहपुर पाली जिला उमरिया मध्य प्रदेश से हैं संतोष कुमार राव, भारती राव, बेलाबाई, विकास सिंह, ओम प्रकाश सिंह, शुभम विश्वकर्मा, अरुण विश्वकर्मा। चंडीगढ़ से हैं सतीश अनेजा, बिमला अनेजा। कलाना राजस्थान से हैं विक्रम कड़वासरा, सचिन कड़वासरा। राजकोट गुजरात से रश्मि झरना, भरत कुमार। नईवाला राजस्थान से वेद मीणा, अलका मीणा। जाखोद राजस्थान से हैं शंभु दयाल खटक, बिमला देवी खटक। फाजिलका पंजाब से हैं सुभाष गोदारा, बिमला गोदारा। जलालाबाद वेस्ट पंजाब से हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा। वडिंगखेड़ा पंजाब से हैं मिंटू टॉमस, पिंकी अरोड़ा। पदमपुर राजस्थान से हैं मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा। साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली से हैं गुरमीत सिंह मीता। गांधीग्राम गुजरात से हैं प्रवीण सोनी और कलावती सोनी।

श्रोताओं, लीजिए आप इस गीत का आनंद और दीजिए मुझे यानी अपनी रेडियो दोस्त प्रीति को कार्यक्रम श्रोता सुमन से अनुमति। रविवार का यह दिन आपके परिवार खुशियों और अच्छे संगीत के साथ और भी खूबसूरत बीते, यही कामना है। अगले दिन फिर मिलेंगे आपके नए पत्रों और नई फरमाइशों के साथ। नमस्कार।

0: while supplies were also sourced from countries including the United States, Canada and Algeria to ensure uninterrupted availability. Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
1: Today is the last day to submit applications for verification of issues observed and re-evaluation of answers on the post-result services portal for CBSE Class 12 Examination 2026. In a social media post, Central Board of Secondary Education said that the portal will remain open until midnight. It asked the students to complete and submit their applications before the deadline. The Central Bureau of Investigation, CBI, yesterday conducted searches at six premises at Chandigarh, Panchkula and Delhi NCR region in connection with the ongoing investigation with IDFC First Bank and AU Finance fraud case. The case is related to 661 crore rupees misappropriation fraud and siphoning of the government funds in eight departments of Haryana government and two departments of Municipal Corporation Chandigarh and Crest Chandigarh. In a statement, the CBI said that the search operations were carried out at residential premises of senior public servants of Haryana Cadre and a private consultant firm and its director in connection with irregularities committed and with regard to receipt of proceeds of crime. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on IX handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Andhra Pradesh Governor Justice S. Abdul Nazir extended his warm greetings to Akashwani on the completion of its historic 90-year journey, describing the occasion as a landmark moment in the history of Indian public broadcasting. The governor praised Akashwani for its valuable contributions to society over the past nine decades.
2: Today marks a momentous milestone in the history of Indian broadcasting. I extend my best wishes as we celebrate 90 glorious years of Akashwani with one motto, Bahujana Hitaya, Bahujana Sukhaya.
1: The Telugu Desam Party, TDP, announced their three candidates for the Rajya Sabha elections scheduled to be held on the 18th of this month. TDP National President N. Chandrababu Naidu released the list of candidates, which includes industrialist Sana Satish, educationist and Bhashyam Educational Institutions Chairman Bhashyam Ramakrishna, and TDP Social Media Wing Chief Chintakayala Vijay. World Food Safety Day is being observed today globally. The day highlights food safety as a shared right and responsibility and serves as a powerful opportunity for collective action. This year's theme, From Problem to Solution, Safe Food Everywhere, highlights the importance of ensuring food safety through cleanliness and scientific practices from farm to plate. Health and Family Welfare Minister Jagat Prakash Nadda today reaffirmed the government's commitment to safe and hygienic food for a healthier future. Mr. Nadda urged citizens to adopt healthy eating habits and contribute to building a fit and self-reliant India. Union Youth Affairs and Sports Minister Dr. Mansukh Mandaviya today participated in the 77th edition of Fit India Sundays on Cycle initiative in New Delhi this morning. Talking to the media, the minister said that cycling keeps the planet clean and offers a solution to the major problem of traffic congestion.
3: Cycling karne se
4: cycling keeps you healthy and mentally fit. It also helps save fuel. It is an activity that helps keep the planet clean and sustainable. Moreover, cycling is an effective solution to one of the biggest problems today, heavy traffic.
3: Vartaman mein traffic ki bahut badi samasya hai.
1: Actor Vikrant Messi, who also participated in the Fit India Sundays on Cycle, described the initiative as incredible and said it has now become a movement.
5: It's an incredible initiative, and like you said, it's become a movement almost happening for more than a year and a half now. And today, as we speak, I stand corrected, there were nearly 15,000 people today. And simultaneously, every Sunday, 200 cities across India participate in this movement.
1: The India Meteorological Department, IMD, has forecast widespread rainfall across the country for the next 2 to 3 days as southwest monsoon advances while heatwave conditions continue to persist in parts of north and central India. Meanwhile, the Met Department has forecast heatwave conditions over Delhi, Punjab, Haryana, Chandigarh, West Rajasthan and coastal Andhra Pradesh for the next 4 days. Northwest India and Central India are likely to experience a rise in maximum temperatures by 2 to 6 degrees Celsius over the next 3 days. Today marks the 100th day of the conflict between the United States and Iran, a confrontation that has steadily expanded beyond its original front lines to affect key flashpoints across the Gulf and wider West Asia. What began with US and Israeli strikes on Iran in late February has evolved into a broader regional crisis involving missile exchanges, threats to maritime traffic in the Strait of Hormuz, and renewed tensions in Lebanon, placing increased pressure on efforts to preserve a fragile ceasefire. We have a report from our West Asia correspondent amid fresh escalations in the region.
6: On the 100th day of the conflict, tension still prevails in the Strait of Hormuz, with kinetic activity continuing to threaten one of the world's most important maritime corridors. U.S. Central Command says American forces intercepted two Iranian one-way attack drones on Sunday after determining they posed a threat to international shipping. The incident follows Friday's downing of four Iranian drones and subsequent U.S. strikes on Iranian radar and surveillance installations at Goruk and Kesham Island. Iran responded on Saturday by launching ballistic missiles towards Bahrain and Kuwait, with U.S. officials reporting that most were intercepted before reaching their targets. The crisis has also spilled into other fronts in West Asia. In southern Lebanon, a Lebanese military vehicle near Nabatea was struck during an Israeli operation, resulting in casualties among Lebanese armed forces personnel. Diplomatic initiatives aimed at halting the conflict continue, although significant obstacles remain. Discussions focus on preserving the ceasefire, ensuring the security of maritime navigation through the Strait of Hormuz, sanctions-related issues, and the future of billions of dollars of frozen Iranian assets held abroad. This is Vinod Kumar for Akashwani News, Dubai.
1: Just in, Prime Minister Narendra Modi has expressed sorrow at the passing of veteran actor Saleem Kumar. In a social media post, the Prime Minister said that the actor made a mark with his versatility and memorable performances across a wide range of roles over the course of his distinguished career. Mr. Modi said that his thoughts are with the actor's family and countless admirers in this hour of grief. In cricket, India have declared their innings at 564 for 8 on day 2 of the one-off test against Afghanistan in New Chandigarh. In response, Afghanistan were 28 for 1 in their first innings when reports last came in. Prime Minister Narendra Modi has also congratulated the Indian women's football team on winning the SAF Women's Championship 2026. In a social media post, he said that the team played excellently through the tournament. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India-Indonesia Joint Commission meeting underway in New Delhi. Comprehensive strategic partnership and ways to further deepen bilateral cooperation under review. Home Minister Amit Shah calls for close watch on financial and property transactions along international borders. CBSE to close Class 12 re-evaluation application window tonight. National award-winning Malayalam actor Saleem Kumar passes away in Kochi. IMD forecasts widespread rainfall across the country in next 2 to 3 days. And in cricket, India declare first innings at 564 for 8 against Afghanistan in one-off test in New Chandigarh. And with that, we end the midday news.
7: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी। व्यापक रणनीतिक साझेदारी और द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय और संपत्ति संबंधी लेन देन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 12 के पुनर्मूल्यांकन आवेदन पोर्टल को आज रात बंद कर देगा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कोच्चि में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देशभर में तेज बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच में पहली पारी 564 रन पर घोषित की। और अब समाचार विस्तार से। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 साल के अंतराल के बाद हो रही है और ये मानना होगा कि इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने पिछले वर्ष द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के 75 साल पूरा करने का उत्सव मनाया है।
8: मैं आप सभी के साथ व्यापक और सार्थक चर्चा की अपेक्षा करता हूं। हमारी बातचीत द्विपक्षीय सहयोग के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगी, जिनमें राजनीतिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार तथा निवेश, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग जैसे विषय शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि हम सहमति से तय किए गए एजेंडा के अनुसार आगे बढ़ते हुए इन सभी विषयों पर सकारात्मक और रचनात्मक विचार विमर्श करेंगे।
7: हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक में दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की जाएगी और द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी।
9: भारत और इंडोनेशिया के बीच सांस्कृतिक संबंध, औपनिवेशिक शासन का साझा अनुभव और स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक संप्रभुता, आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा स्वतंत्र विदेश नीति जैसे समान लक्ष्य रहे हैं। समय के साथ दोनों देशों के संबंध राजनीति, अर्थव्यवस्था, रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में और मजबूत हुए हैं। जनवरी 2001 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के स्तर पर संयुक्त आयोग की स्थापना हुई। वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जकार्ता यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। दोनों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग पर साझा दृष्टिकोण को भी अपनाया, जिससे विशेष रूप से रक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को अधिक मजबूती मिली है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
7: गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद फरोख्त पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया।
10: गृहमंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वास्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा, मुख्य सचिव जेके सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
7: सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं और अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम है।
11: पश्चिम एशिया में हाल के संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए सरकार ने कहा है कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल रहा जिसने समुद्री यातायात में गंभीर बाधाओं के बावजूद होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखा। सरकार के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं हुई और एलपीजी की वितरण व्यवस्था भी सामान्य रूप से चलती रही। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी को 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर पर विशेष राहत मिल रही है। योजना के अंतर्गत लाभार्थी पहले 4 रिफिल पर प्रतिवर्ष 300 रुपए की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी सहायता प्राप्त करते हैं। इसके बाद उन्हें एक सिलेंडर के लिए प्रभावी रूप से 642 रुपए का भुगतान करना पड़ता है, जबकि दिल्ली में सामान्य उपभोक्ताओं के लिए इसी सिलेंडर की खुदरा कीमत 942 रुपए है। मंत्रालय के अनुसार आपूर्ति में व्यवधान की अवधि के दौरान घरेलू एलपीजी उत्पादन में 60% से अधिक की वृद्धि की गई। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
7: वहीं आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई। दिल्ली में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी ने 18 जून

0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन जमा कर दें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्रों के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू फाइनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 6 परिसरों पर छापे मारे। ये मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी क्रेस्ट के 2 विभागों में 661 करोड़ रुपए के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम में गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स को शामिल किया गया है। अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक नए व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनन में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है।
1: संघर्ष के 100वें दिन भी होर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव बना हुआ है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के अनुसार सेना ने ईरान के 2 हमलावर ड्रोन मार गिराए हैं। शुक्रवार को अमरीका ने ईरान के 4 ड्रोन नष्ट कर दिए थे और ईरान के गोरुक तथा केश्म द्वीप स्थित रडार और निगरानी ठिकानों पर हमले किए थे, जिसके जवाब में ईरान ने शनिवार को कुवैत और बहरीन में अमरीकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए। अमरीकी अधिकारियों ने कहा कि अधिकांश मिसाइलों को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दिया गया। इस संकट का असर पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों में भी दिखाई दे रहा है। दक्षिणी लेबनान के नबातियह क्षेत्र के पास इसराइल के एक सैन्य अभियान के दौरान लेबनानी सेना के एक वाहन को निशाना बनाया गया, जिसमें सेना के कुछ जवान घायल हो गए। वहीं दूसरी ओर क्षेत्र में संघर्ष रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास लगातार जारी हैं, लेकिन अभी भी कई बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कल रात कोच्चि में निधन हो गया। वे 57 वर्ष के थे। उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। सलीम कुमार ने शुरू में मिमिक्री स्टेज और टेलीविजन कॉमेडी शो से अपनी पहचान बनाई और 1996 में सिद्दीक शमीर के निर्देशन में फिल्म इष्टमानु नूरुवट्टम से सिने जगत में प्रवेश किया। 3 दशक के करियर में उन्होंने करीब 350 फिल्मों में काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिनेता सलीम कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं अभिनेता के परिवार और उनके अनगिनत प्रशंसकों के साथ हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 77वें संस्करण में भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि साइकिल चलाने से पर्यावरण स्वच्छ रहता है और यातायात जाम की समस्या से भी छुटकारा मिलता है। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इस वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय है समस्या से समाधान तक हर जगह सुरक्षित भोजन। यह दिवस खाद्य सुरक्षा को एक अधिकार और सामूहिक जिम्मेदारी

0: शक्ति के रूप में एक सशक्त अवसर प्रदान करता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। इस अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने नागरिकों से स्वस्थ खान पान की आदतें अपनाने और स्वस्थ तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान का आग्रह किया। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिमी मॉनसून आगे बढ़ रहा है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश भर में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति भी बनी हुई है। विभाग के अनुसार मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु के शेष हिस्सों, दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, उत्तर बंगाल की खाड़ी और कुछ अन्य इलाकों में अगले 2-3 दिनों के दौरान मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। ये मैच कल गोवा के मडगांव में खेला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला फुटबॉल टीम को सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 जीतने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत से आने वाले समय में युवाओं को फुटबॉल खेलने की प्रेरणा मिलेगी। क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे अपने एकमात्र टेस्ट मैच के आज दूसरे दिन 8 विकेट के नुकसान पर 564 रन बनाकर अपनी पारी घोषित कर दी। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने पहली पारी में 6 ओवर में 1 विकेट खोकर 28 रन बना लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक अधिवक्ता पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय और संपत्ति संबंधी लेन देन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 12 के पुनर्मूल्यांकन आवेदन पोर्टल को आज रात बंद कर देगा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कोच्ची में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश भर में तेज वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे अपने एकमात्र टेस्ट मैच में अपनी पहली पारी 564 रन पर घोषित कर दी है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कला और कलाकार।
2: दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा

0: जाकी और सामान किन मोलवेंट कम मत्ता जानवर किन इलाज तगवेंट राहत दरकनद उम्मीद मिंदे यू पूना मोलते ग्राहक लोर्क और व्यापारी लोर्क फायदा दोरकिता जीएसटी तक कोंडे पूना मोला 22 सितंबर 2025 तीना लागू आयनद मिंदे
1: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाड एदाए रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 बजे ले 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने ले जुड़ लो सपाय समस्या चो समाधान बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे और हाँ ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होय से रोजे मंगलवार अड़ौ पहार 3:30 बजे ले 4 बजे तक तो आपन मन सपाय सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा आमचो फोन नंबर आय 07782226666 फोन इन किसानवाणी आपन मंचो सवाल आपन मंचो कहानी खेती बाड़ी चो जुबानी आकाशवाणी जगदलपुर ने
2: क्या बात है उमेश आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ
3: हाँ यार पत्रकार जो हूँ
2: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो
3: सुधीर मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ
2: उमेश स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम पता फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो
3: क्यों
2: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है
4: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है
5: जीएसटी चो दर के कम करलो ने सोझे मनुख जीव चो इलाज खंडिक सस्ता नहीं होली से बल्कि जानवर मन चो इलाज बोले सस्ता हो तो भरसा आसे जीएसटी ले वेटनरी सर्जिकल चो सामान सस्ता होली से नुआ कीमत ले सामान बना तो लोग और घेन तो लोग दोनों के लाभ मिरे दे ये नुआ जीएसटी दर 22 सितंबर 2025 ले लागू हो दे
6: झाड़ा
7: हाँ ना
6: अले दग तो जहाला के अम्बल सुन लू आराम जो दादा दे दी मन सुन ला ने उसने आज आम चो लग गोटो कलाकार मन आसो एक कलाकार मन चो नाम आए है लक्ष्मा गौड़
7: गौड़ अच्छा ये मन कहाँ चो रोला ना
6: लक्ष्मा गौड़ मन
7: हाँ
6: ये मन चो जो नाई नहीं ये मन चो जन्म हो रही 21 अगस्त 1940 ने ये मन तेलंगाना चो निजामपुर ने मन चो जन्म हो रही
7: अच्छा
6: और हुन मन चो जोन पढ़ाई होली ये हैदराबाद चो गोड़ सरकारी कॉलेज ने ये मन आर्ट्स विषय धरुन बातिले ये मन स्नातक करला
7: अच्छा
6: और ये मन चो पढ़ाई फुरलो पाटकुती ये मन गोड़ प्रसिद्ध कलाकार रला केपी सुब्रमण्यम चो ये मन पाटलागा हुन मन चो गोट के मानुन बाती ये मन बदोड़ा MMS ले कॉलेज मतलब करला
7: एक तो 2016 ने भारत सरकार द्वारा पद्मश्री ले बोले सम्मानित पुरस्कार ले बोले सम्मानित करला से और हाँ। ये खूबे मतलब आम से जो भारत देश ने जो कला और जो संस्कृति है जो आम चो जो ग्रामीण क्षेत्र चो हूँ चो खूबे ये जानकार पर रहो तुतला ने खूबे हूँ कला और संस्कृति के मतलब खूबे मतलब असन टाइप चे पेश कर रहा कि मैं होता है चो मैं साक्षात रूप ले आसे अहन टाइप चे मन चो कला रहे मन लगे
6: अच्छा ये मन चो जो मुख्य कला च रले जो ग्रामीण मतलब जो गांव देहात ने आम चो दादा दीदी मनासोत
7: हाँ।
6: उन मन चो जो लोक संस्कृति आए और उन मन चो जो प्रकृति संग जो जुड़लो बीती आए
7: हाँ।
6: ये सब चीज ने ये मन चो जो कला रहे ये चीज ने ये मन चो लिखोत ने
7: हाँ। उतलन एमन के जो जोन कला के दकुन बाती जतन की बाहरी बले जोन संग्रहालय मन ने एमन चो जोन कला के जोन बाहर चो जोन देश मन बला सोत नहीं हुन मन ने बले एमन चो जोन कला के संगान बर रोला जतन की न्यूयॉर्क होली यूरोप होली हुन मन चो थान बल संगाला से
6: यमन के अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिरलीस ना
7: कौन कौन मितिया है ना
6: यमन के जो पेंटिंग्स के बारे में बोल मिरलीस है
7: अच्छा
6: विशिष्ट जानकारी का जे यमन के कलाकृति ने नीलामी मूल्य के बारे में बोले यमन की मिरु रैली
7: हाँ उत्तलन यमन रोला शिक्षा सरकार करी कॉलेज लेत कर ला मात्र होता यमन का आर्किटेक्चर चित्रकला ने यमन बल डिप्लोमा कर रहा धुनि कारण ने यमन चो जोन पहचान होली ना पूरा देश ने होली है चो उतला ने भी दक आम चो कला के जोन और ग्रामीण मतलब आम चो देहात अनुसार जोन चित्र बनान बाती जोन देश और विदेश ने असन टाइप चो ये बना लो कि आम चो जोन जतन की माटी होली नाल पकनाल होली नाल उन चमड़ा होली नाल रूख होली असन पारंपरिक जोन कला बना लो तो हुनी का जे सरकार जोन 2016 ने जोन मैं सांगले की पद्म श्री ले पुरस्कार बोल दिला असन एक कलाकार दादा मन रोला उतलन यमन हैदराबाद ने ची यमन काय करला कला महाविद्यालय ने नहीं और फिर चित्रकला चो डिप्लोमा बल धरला जोन बड़ोदरा ने एमएस विश्वविद्यालय ने एक खूबे मतलब जन की केजी सुब्रमण्यम जो जोन मार्गदर्शन है जो जोन गुरु रोला होता जाऊन बाती एमन भित्ति कला चित्रकला और मुद्रा कला जो बोले एमन शिक्षा प्राप्त करला से
6: देख तो झाड़ा कि तू लो अच्छा गोट के तू सांगलीस ने कलाकार भाई मन जो गोट के मैं बोलता रहा ले खूबे अच्छा गोट के ने सुन ले गीत गोविंद बोल सुनुक भाव है
7: आले ढाक
6: तो मैं बोलते रहे जो अले इतलो अच्छा गोट के तो अम्बल सुन लो दादा दीदी उन सुन ला
7: और
6: गोटो गीत बोल सुनू ना
7: आले सुनू ना और गीत कुरिया ना पाते जीता

0: ना गबरू दादा
1: ओय ना झाडा
0: गीत कुरी 41 कर ना
1: ताले ना द कितलो अच्छा गीत के गाव तर गीत कुरी 41 काय
0: काल कोण मनात
1: ये गीत कुरी अमन रला शिवराम ना गारुंचो संगवारी मन
0: तो दक ना गबरू दादा
1: ओय ना झाडा
0: मोच मोटा बोल गोटो कास्ता ना
1: द गीत सुन ले गीते सुन भाई ने मोकी बोल सुनु भाई ना अले गीत के बोल सुनु ने
0: हां वाले
1: पाच गीत कुरिया मन जनो पाच सांग
0: आले सुनु ता तबे

अभी कार्यक्रम कला और कलाकार का प्रसारण हो रहा था। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 3 बजे हैं। हमारी ये सभा संपन्न होती है। सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक आप विविध भारती के कार्यक्रम सुन सकते हैं। अब दीजिए अनुमति। नमस्कार।

मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 5 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। रात 9:30 पर रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शाम 5:05 पर होगा देशभक्ति गीत। युवाओं का कार्यक्रम युववाणी शाम 5:10 पर। शाम 6:05 पर जिले की चिट्ठी हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। गोंडी समाचार बुलेटिन का प्रसारण समय होगा शाम 6:30। शाम 7 बजे होगा कार्यक्रम बस्तर के स्वर। आमचो गांव का प्रसारण समय होगा शाम 7:21। 8 बजे लोकगीतों के कार्यक्रम बालीफुल में हम आपको सुनवाएंगे शिवराम नाग और साथियों के गाए हल्बी गीत। पीलामन का जे गोट ये कार्यक्रम होगा रात 8:30 पर, जो केंद्रित होगा स्वामी दयानंद सरस्वती पर। प्रस्तुति होगी पीलूराम बघेल की पुरानी फिल्मों से रात 9:15 पर। रात 10 बजे लोकगीतों के कार्यक्रम दौना में हम आपको सुनवाएंगे मधुराम और साथियों के गाए हल्बी गीत। ये थी आज के शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा और अब एक नजर कल के कार्यक्रमों पर। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना सुबह 6:05 पर, चिंतन 6:20 पर, श्री राम चरित मानस का गायन 6:25 पर, गायक स्वर महेंद्र कपूर का, संगीत निर्देशक होंगे सतीश भाटिया। बेड़ा खड़ा चो गोट का प्रसारण समय सुबह 6:35। सुबह सात बजकर पांच मिनट समय होता है कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर का। इसमें आप सुनेंगे आज के अतिथि क्रम में डॉक्टर राशि जैन से ली गई भेंट वार्ता। इनसे बातचीत करेंगी चंद्र ऋषि ठाकुर और सजेगी मधुर गीतों की मधुरिमा। सुबह 8:30 पर कार्यक्रम लोक मंजरी में हम आपको सुनवाएंगे विभिन्न बोलियों के लोकगीत। सुबह नौ बजे होगा मोचो माटी लोक साहित्य पत्रिका। 9:30 पर कार्यक्रम एक ही फिल्म से गुलशन कार्यक्रम में सुबह 10 बजे सुनिएगा नए फिल्मी तराने। गुड़दुम कार्यक्रम में होगा गोंडी लोकगीत, कलाकार होंगे सुकुला और साथी। प्रसारण समय 10:30, एक ही कलाकार 11 बजे। 11:30 पर कार्यक्रम पाटा केंजा में आप सुनेंगे सैनी राम और साथियों के गाए गोंडी गीत। ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम माफ कीजिएगा दोपहर 12 बजे होगा कार्यक्रम कला और कलाकार। ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार दोपहर 12:30 पर। फरमाइशी फिल्मी नगमों का कार्यक्रम श्रोता सुमन दोपहर 1:10 पर। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का प्रसारण समय होगा दोपहर 2:30। हमारी सांध्यकालीन सभा की शुरुआत होगी शाम 5 बजे। 5:05 पर होगा समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार हल्बी बोली में। युवाओं का कार्यक्रम युवाणी शाम 5:10 पर। शाम 6:30 पर गोंडी लोकगीत सुना जा सकेगा, कलाकार होंगे सत्तूलाल और साथी। बस्तर के स्वर शाम 7 बजे। शाम 7:21 पर होगा ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम आमचो गांव। रात 8 बजे लोकगीतों के कार्यक्रम नानोली में होगा गोंडी गीत, कलाकार होंगे रामेश्वर और साथी। पीलामन का जे गोट ये कार्यक्रम होगा 8:30 पर, जो केंद्रित होगा कल्पना चावला पर। प्रस्तुति होगी फूल सिंह कश्यप की। रात 9:15 पर जीवना चो सोर के अंतर्गत साई महिला स्व सहायता समूह बड़ेगुड़ा की अध्यक्षा सोनमती से ली गई भेंट वार्ता। इनसे बातचीत करेंगे बलवीर सिंह कच्छ।
भेंटघाट कार्यक्रम रात 9:30 पर। इसमें राजूराम बघेल से ली गई भेंटवार्ता आप सुनेंगे। इनसे भेंट करेंगे बलवीर सिंह कच्छ। लोकगीतों के कार्यक्रम कोदोमालू में कहरू राम और साथियों के गाए गोंड लोकगीत सुना जा सकेगा रात 10:00। ये थी हमारे केंद्र से प्रसारित कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 5:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए देशभक्ति गीत समूह स्वर में।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत समूह स्वर में। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 5:10 हुए हैं, लीजिए सुनिए। युवाओं का कार्यक्रम युववाणी।

0: टेंशन को थोड़ा साइड में रखिए और मुस्कान को ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी अब शुरू हो चुका है, जहां आज हम हैं आपके युववाणी दोस्त। मैं पराग चंदेल
1: और मैं सिद्धार्थ जोशी। स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा अभिवादन। नमस्कार।
0: अरे सिद्धार्थ, क्या बात है, तुम काफी थके हुए लग रहे हो और आजकल दोस्तों के साथ चाय पीने भी नहीं आते, सब ठीक ठाक तो है ना?
1: अरे पराग, क्या बताऊं, ऑफिस में एक काम का इतना प्रेशर है कि सांस लेने तक की फुर्सत नहीं मिल रही। सुबह 9 बजे लैपटॉप खुलता है तो रात के 10 कब बज जाते हैं पता ही नहीं चलता।
0: अरे ये तो सरासर नाइंसाफी है अपने साथ।
1: हाँ वही ना।
0: तुम काम कर रहे हो या अपनी जिंदगी कंपनी के नाम गिरवी रख दी है? वर्क लाइफ बैलेंस नाम की भी कोई चीज होती है या नहीं?
1: अरे पराग, प्रैक्टिकली सोचो तो आजकल कंपटीशन इतना है कि अगर थोड़ा सा भी ढीला पड़ जाओ तो लगता है कि रेस में पीछे छूट जाएंगे। प्रमोशन चाहिए या इंक्रीमेंट चाहिए तो ये सब तो करना ही पड़ेगा ना।
0: हाँ पर देखो सिद्धार्थ, तुम्हारी बात अपनी जगह सही है। करियर में आगे बढ़ना तो हर कोई चाहता है।
1: हाँ।
0: लेकिन एक बात समझो, तुम पहले, तुम काम करने के लिए जीते हो या जीने के लिए काम करते हो?
1: जाहिर है जीने के लिए।
0: हाँ तो फिर तुम्हारी जिंदगी कहाँ है? वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब भी पता है तुम्हें या नहीं?
1: नहीं।
0: अरे मेरे प्यारे मित्र, इसका मतलब है कि ऑफिस के बाद तुम्हारी एक पर्सनल लाइफ भी है जिसके लिए तुम्हें वक्त निकालना होगा।
1: हाँ पर इसका महत्व तो क्या है पराग? मैं मेहनत कर रहा हूँ और पैसे भी कमा रहा हूँ और फैमिली भी खुश है।
0: फैमिली सच में खुश है? तुम खुद सोचो कि लास्ट टाइम तुमने कब अपने मम्मी पापा के साथ बैठकर तसल्ली से बात की थी या कब तुमने दोस्तों के साथ बाहर घूमने गए थे? देखो, जब तक तुम अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बीच एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री नहीं बनाओगे ना, तब तक तुम मानसिक रूप से कभी भी शांत नहीं रह पाओगे।
1: हाँ पराग, पिछले कुछ दिनों से मुझे चिड़चिड़ापन सा महसूस हो रहा है।
0: हाँ अब तुम्हें समझ में आ रहा है
1: हाँ।
0: वर्क लाइफ बैलेंस का महत्व।
1: हाँ हाँ
0: देखो, अगर तुम 12-12 घंटे लगातार काम करोगे तो स्ट्रेस, एंग्जाइटी और स्लीप एप्रिया जैसी बीमारियां हो सकते हैं। और परिवार को केवल पैसा ही नहीं, तुम्हारा वक्त भी चाहिए। और तुम्हें सोचो, तुम्हारे पास यही नहीं रहेगा तो तुम पैसे और प्रमोशन का क्या करोगे भला?
1: हाँ पराग, पर बात तो तुम्हारी सही है, पर मैं अब अपनी वर्क लाइफ को कैसे बैलेंस करूं? काम तो कम होने से रहा।
0: तुम ना इसकी शुरुआत छोटी छोटी चीजों से कर सकते हो, जैसे न कहना सीखो, मतलब हर एक्स्ट्रा काम को स्वीकार मत करो।
1: हाँ।
0: और एक निश्चित समय के बाद ऑफिस के ईमेल्स और मैसेजेस को देखना बंद कर दो। और दिन में कम से कम आधा घंटा के लिए अपने पसंद का कोई भी काम करो, जैसे कि म्यूजिक सुनना, बुक रीड करना या फिर जो भी तुम्हें अच्छा लगता हो।
1: हाँ पराग, सच कहूँ तो मुझे लग रहा था कि मैं काफी जिम्मेदार इंसान हूँ, पर मुझे अब समझ आ रहा है कि मैं अपने खुद के लाइफ के प्रति कितना गैर जिम्मेदार हूँ।
0: बिल्कुल। और याद रखो, नौकरी बदली जा सकती है लेकिन सेहत और खोया हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। समझ में आया या नहीं?
1: हाँ हाँ थैंक्स पराग। अब फिर आज शाम 7 बजे का चाय आप तुम्हारे नाम से।
0: चलो ठीक है, वर्क लाइफ बैलेंस की खुशी में ये भी मंजूर है। दोस्तों, ये तो थी वर्क लाइफ बैलेंस का महत्व विषय पर हमारी बातचीत। आशा है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी।
1: दोस्तों अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
2: मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: तुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला, क्या प्लान है?
5: सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर।
6: बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है।
5: पर कैसे?
6: RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपकी पूंजी पर मिलेगी रिटर्न्स। RBI पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए, सुरक्षित आसान।
5: रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूँ।
6: बहुत सही कह रहे हैं आप। RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: यदि आप अब कोई नई कार या बाइक लेने की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको काफी किफायती दामों पर उपलब्ध होगी। GST परिषद ने छोटी कारों 350 cc तक की बाइक और तिपहिया वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया है। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाला ये त्योहारी तोहफा एंट्री लेवल गाड़ियों को और भी किफायती बना देगा, जबकि लग्जरी कारें और बड़ी बाइक 40% के नए स्लैब में आ गई हैं, लेकिन फिर भी उन पर कम टैक्स लगेगा।
1: पराग, अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, अपने प्यारे दोस्तों को बताते हैं कि हम उनके लिए आज क्या क्या लेकर आए हैं।
0: हाँ सिद्धार्थ, आज हम अपने प्यारे दोस्तों के लिए लेकर आए हैं कुछ बेहतरीन और दिल को छू जाने वाली गैर फिल्मी गीत और चुनिंदा गजल, जिसमें होगी शायरी की मिठास, संगीत की नरमी और गायकी की गहराई।
1: हाँ दोस्तों, साथ ही जानेंगे विज्ञान पत्रिका में विज्ञान और तकनीकी से जुड़ी जानकारी, साथ ही होगी सामान्य ज्ञान की बातें और होगी कविता पाठ।
0: अरे क्या बात है सिद्धार्थ, मतलब आज हमारे दोस्तों की शाम और भी खुशनुमा हो जाएगी।
1: हाँ हाँ बिल्कुल पराग, हमारे दोस्तों को और ना इंतजार कराते हुए कार्यक्रम का आगाज करते हैं और सुनवाते हैं ये पहला गीत, जिसे लिखा है जानी ने, संगीत से पिरोया है बी प्राग ने, अपने मधुर स्वर दिए हैं सचेत टंडन और परंपरा टंडन ने।

0: दोस्तों, अब हम आपको सामान्य ज्ञान से जुड़ी कुछ बातें बताएंगे जो न केवल ज्ञान वर्धक है बल्कि इन्हें जानकर आपको दुनिया की अद्भुत चीजों के बारे में पता चलेगा। दोस्तों, दरियाई घोड़ा, ये एक ऐसा अनोखा जीव है जिसका पसीना गुलाबी रंग का होता है।
1: जी हाँ, और ऑक्टोपस एक ऐसा जलीय जीव है जिसका खून नीले रंग का होता है। इसका कारण उसके खून में हीमोसाइनिन नामक तांबायुक्त प्रोटीन का होना है।
0: और दोस्तों, नॉर्वे जिसे लैंड ऑफ द मिडनाइट सन कहा जाता है क्योंकि यहाँ गर्मियों के मौसम में लगभग 76 दिनों तक आधी रात को भी सूरज चमकता है।
1: दोस्तों, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर भारत के श्रीनगर डल झील में स्थित है।
0: जी हाँ दोस्तों, और क्या आपको पता है कि छींकते समय आंखें खुली रखना लगभग असंभव है? ऐसा हमारे मस्तिष्क की तंत्रिकाओं के रिफ्लेक्स एक्शन के कारण होता है।
1: दोस्तों

0: पराग, तुम्हें पता है विज्ञान हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है,
1: हाँ
0: जिसके बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल है।
1: हाँ सिद्धार्थ, और विज्ञान ने हमें न केवल सोचने का नया तरीका दिया है, बल्कि हमारे जीवन को आसान, सुरक्षित और सुखद भी बनाया है।
0: हाँ, विज्ञान ने हमारे सोचने का नजरिया ही बदल दिया है।
1: हाँ तो फिर चलो, आज हम हमारे प्यारे दोस्तों को ले चलते हैं विज्ञान पत्रिका की ओर और उन्हें बताते हैं विज्ञान और तकनीकी से जुड़ी जानकारियों के बारे में।
0: दोस्तों, पहली विज्ञान पत्रिका है, नासा ने मावेन मंगल मिशन समाप्त किया। मावेन को नवंबर 2013 में लॉन्च किया गया था और इसे मंगल ग्रह की कक्षा में 11 वर्षों से अधिक समय तक कार्य किया।
1: दोस्तों, माविन का पूरा नाम मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल इवोल्यूशन है। ये नासा का एक ऑर्बिटर था जिसे मंगल ग्रह के ऊपरी वायुमंडल और ग्रह की वायुमंडलीय वाष्पीकरण प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया था।
0: इस अंतरिक्ष यान ने अपने प्राथमिक एक वर्षीय मिशन को पूरा किया और एक दशक से अधिक समय तक वैज्ञानिक कार्यों को जारी रखा।
1: दोस्तों, विज्ञान पत्रिका में अगली सूचना है, नासा ने अंतर तारकीय धूमकेतु 3IATLAS पर मीथेन का पता लगाया है। यह अवलोकन किसी अंतर तारकीय पिंड में मीथेन का पहला प्रत्यक्ष पता लगाने और ऐसे पिंड के पहले मध्य अवरक्त रासायनिक फिंगरप्रिंट को दर्शाता है।
0: जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप नासा द्वारा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी की भागीदारी से लॉन्च की गई एक अंतरिक्ष वेधशाला है।
1: दोस्तों, इसका मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट MIRI अवरक्त तरंग को रिकॉर्ड करता है जो अंतरिक्ष में ठंडी धूल, गैसों और बर्फीले पिंडों के अध्ययन के लिए उपयोगी है।
0: दोस्ततों, अगली विज्ञान पत्रिका है, DRDO और IAF ने रुद्र M11 मिसाइल का परीक्षण पूरा किया। अनुसंधान एवं विज्ञान संगठन और भारतीय वायु सेना ने स्वदेशी रुद्र M11 वायु से सतह मिसाइल का उड़ान परीक्षण पूरा किया।
1: मिसाइल को भारतीय वायुसेना के SU-30 MKI

0: लड़ाकू विमान से लॉन्च किया गया और लॉन्च होने के बाद इसमें पूर्व निर्धारित लक्ष्य को भेद दिया।
1: दोस्तों आज के विज्ञान पत्रिका में बस इतना ही। आपको फिर से ले चलते हैं तरन्नुम की ओर, सुनवाते हैं ये गजल जिसे अपने मधुर स्वर दिया है उस्ताद अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन ने।

0: दोस्तों तरन्नुम में हम आपको और भी गीत सुनवाएंगे। फिलहाल अभी आपको ले चलते हैं कविता पाठ की ओर और सुनवाते हैं कविता पाठ मंजू मेहरा से।
1: आज मैं आप लोगों के समक्ष कुछ कविताएं एवं कहानियां प्रस्तुत कर रही हूं। मुझे आशा है कि आप लोग मेरी कहानियों और कविताओं की शिक्षाओं को ग्रहण करेंगे। मेरी पहली कविता है माँ। माँ वो दुआ है जो कभी खाली नहीं जाती, जो हर दर्द को खुद सहकर हमें हंसते देखती है और कभी कुछ नहीं कहती। उनके हाथों की वो लकीरें हमारी खुशियों की दुआएं हैं। उसकी दुआओं में ही छुपी हमारी हर सफलता की वजह है। ना रात की परवाह ना दिन की थकान, सिर्फ हमारे लिए जीती है वो हमारी माँ महान। कभी डांटती है, कभी समझाती है, कभी चुप रहकर सब सह जाती है। माँ की ममता का कोई मोल नहीं, वह हर पल साथ निभाती है। माँ वह पहली ताकत और पहली शिक्षक होती है जो हमें चलना सिखाती है, गिरकर संभलना सिखाती है और खुद से पहले हम पर विश्वास करना भी। जब तक हम अपने घर में होते हैं, माँ की ममता और सेक्रीफाइस हमें बस आदत सी लगने लगती है, लेकिन जब हम ससुराल जाते हैं तभी समझ आता है कि माँ का त्याग, हर चिंता, हर दुआ हमारे लिए कितनी अनमोल थी। माँ हमें खुद से पहले हमें रखती है, कभी हमारे सपनों के लिए जागती है, कभी हमारी खुशियों के लिए मुस्कुराती है और कभी हमारी दुआओं को खुद छुपा लेती है। माँ खुद माँ होती है तो घर होता है, माँ होती है तो हम होते हैं। ससुराल जाने के बाद समझ आता है माँ की डांट में भी प्यार थी, माँ की बातों में भी फिक्र थी, माँ की हर त्याग हमारी खुशियों की वजह थी, माँ की दुआओं ने ही हमें हर मुश्किलों में संभलना सिखाता है। मेरी दूसरी कविता है नीड़ का निर्माण फिर फिर। नीड़ का निर्माण फिर फिर, नेहा का आह्वान फिर फिर, वह उठी आंधी की नभ में छा गया साहस अंधेरा। धली धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। रात सा दिन हो गया फिर, रात आ गया फिर काली, लग रहा था अब ना होगा इस निशा का फिर सवेरा। रात के उत्पात भय से भीत जन जन जग भीत कण कण, किंतु प्राचीन से उषा की मोहनी मुस्कान फिर फिर। नीड़ का निर्माण फिर फिर, नेहा का आह्वान फिर फिर। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, प्रलय की निस्तब बद्धता से सृष्टि का नभ गान फिर फिर। नीड़ का निर्माण फिर फिर, नेहा का आह्वान फिर फिर। मेरी तीसरी कविता है सावन बदल रहा है। सावन बदल रहा है, मौसम से लग रहा है, पवन का शोर शांत है, घटा घनघोर शांत है, मेघों का अवधो शांत है, नदियों का तट छोर शांत है। सावन बदल रहा है, मौसम से लग रहा है, वृक्षों में काही रंग नहीं, कलख करते खग वृद्ध नहीं, वन में दिखते मृग झुंड नहीं, मिट्टी में सोंधी गंध नहीं। सावन बदल रहा है, मौसम से लग रहा है, रिमझिम आती बोछार नहीं, जल की बहती कल नाद नहीं, छत से बहती धार नहीं, पशुओं के भीगे पोसार नहीं। सावन बदल रहा है, मौसम से लग रहा है, पेड़ों पर झूले डर नहीं, गजरी बिहरा भार नहीं। रमणीय देख तृण घास नहीं, जो देख चुका वह हास नहीं। सावन बदल रहा है, मौसम से लग रहा है। शिव वाहन भस्म श्रृंगार नहीं, भवामीन झुंड अभिसार नहीं। झूलों पे पेग बयार नहीं, कुश्ती मिट्टी संग प्यार नहीं। सावन बदल रहा है, मौसम से लग रहा है।
2: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कविता पाठ मंजू मेहरा से।
0: दोस्तों आपको फिर से ले चलते हैं तरन्नुम की ओर और सुनवाते हैं ये अगला गीत, जिसे लिखा है गुरप्रीत सैनी और नुसरत फतेह अली खान ने। संगीत से सजाया है रोचक कोहली और नुसरत फतेह अली खान ने। अपनी मधुर स्वर दिए है जुबिन नौटियाल ने।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: तुम साथ हो तो हर कमी पूरी लगती है, तुम साथ हो तो हर कमी पूरी लगती है, तुम्हारी बातों में ही मेरी दुनिया सिमटती है। लोग इश्क को लफ्ज़ों में ढूंढते रह जाते हैं, लोग इश्क को लफ्ज़ों में ढूंढते रह जाते हैं, मुझे तो बस तुम्हारी मौजूद

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे प्यारा सा गीत जिसे लिखा था शब्बीर अहमद और अंजन सागरी ने, संगीत से सजाया था शब्बीर अहमद और मधुर स्वर दिए थे ऐश शुभम और सलोनी ठक्कर ने।
3: दोस्तों, अब आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत जिसे हमारे युवा साथी मन ही मन गुनगुनाते रहते हैं, या यूं कहें कि ये गीत युवाओं के दिल को छू जाती है। तो लीजिए सुनिए दोस्तों ये प्यारा सा गीत जिसे लिखा है सुनील थरियानी ने, संगीत से पिरोया है शिवम बागची ने और अपनी मधुर स्वर दी है मंगल दुबे ने।

बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है तेरे एहसास की खुशबू। जितना भी सोचते हैं उतना ही महक जाते हैं, जितना भी सोचते हैं उतना ही महक जाते हैं।

0: तो सो अभी आपने सुना ये खूबसूरत सा गीत, जिसे लिखा था A.M. दुराज ने, संगीत से सजाया था पायल देव ने और स्वर था जुबिन नौटियाल और पायल देव का।
1: दोस्तों, आज के कार्यक्रम की ये थी हमारी अंतिम प्रस्तुति। आशा है कि आपने इसका आनंद लिया होगा। अब वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे
0: एक नए विषय, नई ऊर्जा और कुछ लफ्जों, धुनों और एहसासों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।
1: हम हैं आपके रेडियो साथी, मैं सिद्धार्थ जोशी
0: और मैं यानी पराग चंदेल।
1: नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत और इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक आज नई दिल्ली में संपन्न हुई। बैठक की सहअध्यक्षता विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ने की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के समस्त पहलुओं की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने राजनीतिक मामलों, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार सहयोग, व्यापार और निवेश, औषधि निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, डिजिटल प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्रों तथा दोनों देशों के बीच लोगों के संबंधों के जैसे मुद्दों पर बातचीत की। डॉ. जयशंकर और सुगियानो ने द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति का स्वागत किया। इससे पहले सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेनदेन, भवन निर्माण और संपत्तियों के क्रय विक्रय पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में त्रिपुरा के सीमावर्ती क्षेत्रों में संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। इस बीच आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 29 रूपए प्रति सिलेंडर की वृद्धि की गई है। दिल्ली में अब 14 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की नई कीमत 942 रूपए है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। महाराष्ट्र में राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोना तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। ऑपरेशन गोल्डन नेक्सस के अंतर्गत निदेशालय ने करीब 5 करोड़ रुपए मूल्य का 3 किलो 200 ग्राम विदेशी सोना जब्त किया है। मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें हवाई अड्डे के 3 कर्मचारी भी शामिल हैं। पश्चिम बंगाल की महिला बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने आज सिलीगुड़ी में उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा की बैठक की। अध्यक्षता करते हुए पदभार ग्रहण करने के बाद यह उत्तर बंगाल क्षेत्र की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। उपभोक्ता कार्य विभाग ने ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समर्थन पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान मेजर बराक

की अनुकरणीय सेवा और संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में भारत के दीर्घकालिक योगदान की पहचान है। मेजर बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में एंगेजमेंट टीम कमांडर और लैंगिक मामलों की प्रमुख अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। न्यू चंडीगढ़ में एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में अफगानिस्तान ने भारत के पहली पारी में 564 रन के जवाब में 5 विकेट पर 113 रन बना लिए थे। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक रहमत शाह 43 रन बनाकर क्रीज पर थे। भारत की ओर से मानव सुथार ने 3 विकेट लिए। इससे पहले भारत ने 8 विकेट पर 564 रन बनाकर पहली पारी समाप्त घोषित कर दी थी। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान देश के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कारण महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश हो सकती है। हालांकि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी राजस्थान और तटीय आंध्र प्रदेश में गर्मी का प्रकोप जारी है। इन स्थानों पर अगले 4 दिनों तक लू चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी रायपुर है। कार्यक्रम जिले की चिट्ठी में सुनिए बिलासपुर जिले की चिट्ठी।
1: श्रोताओं नमस्कार। जिले की चिट्ठी के आज के अंक में हम लेकर आए हैं बिलासपुर जिले की चिट्ठी। इसके जरिए हम आपको अगले पांच मिनट में जिले में चल रही विभिन्न गतिविधियों से रूबरू कराएंगे। श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 31 मई को आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में बिलासपुर जिले के मल्हार में ज्ञान भारतम अभियान के तहत प्राप्त दुर्लभ ताम्र पट्टिकाओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि मल्हार में 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। ये पट्टिकाएं पांडुवंशी वंश के महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये शिलालेख 6वीं-7वीं सदी के हैं और प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात कार्यक्रम में ताम्र पट्टिकाओं का उल्लेख किए जाने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे प्रदेश के लिए गौरव का विषय बताया। उन्होंने कहा कि लगभग 1400 से 1500 वर्ष पुरानी मानी जा रही ये ताम्र पट्टिकाएं तत्कालीन शासन व्यवस्था, सामाजिक जीवन, धार्मिक परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों की अमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। श्रोताओं, सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीते 4 जून को बिलासपुर में मुंगेली, गौरेला पेंड्रा मरवाही, बिलासपुर, सक्ति और सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के अधिकारियों की संयुक्त समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने विकास कार्यों, राजस्व प्रकरणों, पेयजल व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं और खरीफ सीजन की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन की योजनाओं का वास्तविक लाभ आम जनता तक पहुंचना चाहिए और प्रशासन को जवाबदेही के साथ कार्य करना चाहिए। उन्होंने लंबित राजस्व मामलों के त्वरित निराकरण के लिए विशेष अभियान चलाने, पेयजल व्यवस्था पर लगातार निगरानी रखने और किसानों को समय पर खाद तथा बीज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने महिलाओं की कृषि क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाने और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी जोर दिया। इसी दिन मुख्यमंत्री ने बिलासपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में महतारी वंदन योजना की 28वीं किस्त जारी करते हुए प्रदेश की 68,54,000 महिलाओं के बैंक खातों में 642,27,00,000 रूपये से अधिक की राशि अंतरित की। अपने बिलासपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने मधुबन जूना क्षेत्र में निर्माणाधीन नालंदा परिसर और एजुकेशन हब का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्माणाधीन कार्यों को गुणवत्ता और समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। श्रोताओं, खेत बचाओ अभियान के तहत तकतपुर विकास खंड के ग्राम पंचायत खजूरी में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में किसानों को प्राकृतिक खेती, मृदा स्वास्थ्य संरक्षण, उर्वरक का संतुलित उपयोग और टिकाऊ कृषि पद्धतियों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में कृषि विभाग के संयुक्त संचालक आर के राठौर ने किसानों को नील हरितकाई के उत्पादन और उपयोग के संबंध में प्रशिक्षण दिया। कार्यक्रम में किसानों की जिज्ञासाओं का समाधान कर उन्हें प्राकृतिक खेती के विभिन्न मॉडल अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। श्रोताओं, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की राज्य सलाहकार मोनिका सिंह ने पिछले दिनों तखतपुर जनपद पंचायत के अंतर्गत निगारबंद, राजाकापा, बहुरता और हरदी ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय और ठोस तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्वच्छाग्राहियों द्वारा किए जा रहे श्रमदान और स्वच्छता गतिविधियों की जानकारी ली। उन्होंने घर घर कचरा संग्रहण कार्य में लगे स्वच्छाग्राही समूह के सदस्यों से भी बातचीत की। उन्होंने ग्राम सरपंचों से कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने वाले व्यक्तियों को समझाइश दी जाए। श्रोताओं, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग CGPSC द्वारा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 की लिखित परीक्षा शनिवार 6 जून से आयोजित की जा रही है। ये परीक्षा 9 जून तक हर दिन 2 पालियों में हो रही है। 6 जून को भाषा और निबंध तथा 7 जून को सामान्य अध्ययन प्रथम और द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा हुई। वहीं कल 8 जून को सामान्य अध्ययन तृतीय और चतुर्थ प्रश्न पत्र तथा 9 जून को सामान्य अध्ययन पंचम प्रश्न पत्र की परीक्षा ली जाएगी। मुख्य परीक्षा बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर, दुर्ग और रायपुर स्थित परीक्षा केंद्रों में हो रही है। श्रोताओं, राज्य की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI में रिक्त सीटों के लिए 29 मई से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिलासपुर के कोने स्थित आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में कोपा, विद्युतकार, फिटर, शीट मेटल वर्कर, स्टेनो हिंदी अंग्रेजी, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल व्हीकल सहित 32 व्यवसायों में प्रवेश दिया जाएगा। वहीं बिल्हा स्थित ITI में व्यवसाय, कोपा, स्टेनोग्राफी, हिंदी, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक और वेल्डर जैसे व्यवसायों में प्रवेश दिया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी 15 जून तक विभागीय वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ जिले की चिट्ठी का ये अंक समाप्त हुआ। अगले रविवार एक नए अंक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
0: जिले की चिट्ठी में अभी आप सुन रहे थे बिलासपुर जिले की चिट्ठी। ये आकाशवाणी रायपुर है। अब आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग अनुरीमा शर्मा की जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योतिहा आज अपन छत्तीसगढ़ दौरा बेरा पिछड़ा वर्ग ले जुड़े आने आने समाज के प्रतिनिधि मन ले करीन गोठ बात। घरेलू रसोई गैस के कीमत मा 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपया बढ़ाएगी। उन्हें केंद्र सरकार हा कहे है कि भारतीय सिलेंडर के कीमत कोनो भी पड़ोसी देश के तुलना में अभी भी सस्ता और कमती है। और देश भर के चार्टर्ड अकाउंटेंट मन के 2 दिनी राष्ट्रीय सम्मेलन आज ले रायपुर में शुरू। राज्यपाल रमेन डेका हा ए सम्मेलन के करीन उद्घाटन। अब समाचार विस्तार ले। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योतिहा आज अपन छत्तीसगढ़ दौरा बेरा राजधानी के राज अतिथि गृह पहुना में पिछड़ा वर्ग ले जुड़े आने आने समाज के प्रतिनिधि मन ले भेंट करीन। ए दौरान साध्वी निरंजन ज्योतिहा प्रतिनिधि मंडार ने बताए गए समस्या के संगे उखर मांग और सलाह बारे में जरूरी कदम उठाए के भरोसा देवाइन। ए मौका में राज्य पिछड़ा वर्ग के आयोग के अध्यक्ष नेहरू राम निषाद, उपाध्यक्ष चंद्रकांत वर्मा, पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष RS विश्वकर्मा और लौह शिल्पकार विकास बोर्ड के अध्यक्ष प्रफुल्ल विश्वकर्मा समेत पिछड़ा वर्ग में अवैया कई ठिन समाज मन के प्रतिनिधि उपस्थित है। अपन दौरा बेरा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष राज्यपाल रमेन डेका ले लोक भवन में सौजन्य मुलाकात करीन। उन्हें साध्वी निरंजन ज्योतिहा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ले घलो आज रायपुर स्थित उखर निवास कार्यालय में भेंट करीन। ए दौरान इखरवन बीच पिछड़ा वर्ग के कल्याण, सामाजिक न्याय, शिक्षा में विकास और सामाजिक आर्थिक विकास ले जुड़े कतकोन विषय में गोट बात हुई। घरेलू रसोई गैस के कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपया बढ़ाएगी। नवा रेट रतिहा 12 बजे ले लागू हो गए है। दिल्ली में आज ले घरेलू रसोई गैस के कीमत 913 रुपया ले बाढ़ के 942 रुपया हो जही। इही बीच केंद्र सरकार हा कहे है कि अंतर्राष्ट्रीय LPG के कीमत में बहुत ज्यादा बाढ़े के बावजूद भारतीय घर मन में रांधे पसाए वाले गैस हा विश्व स्तर में सबले कम कीमत में मिलत है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय हा एक ठिन बयान में कहे है कि भारतीय सिलेंडर की कीमत कोनो भी पड़ोसी देश के तुलना में सस्ता है और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा असन विकसित अर्थव्यवस्था की तुलना में बहुत कमती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA हा सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर NEET UG के पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बेचे के दावा बारे में खंडन करी है। NTA हा कहे कि यह हर विद्यार्थी उनकर परिवार वाले मन के संसो के फायदा उठैया नकल गिरोह के काम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 जून के दुसरैया नागरिक अलंकरण समारोह में ए बछर के 65 झीन मनखे मन ला पद्म पुरस्कार देही। एकर पहली पाछू महीना श्रीमती मुर्मू राष्ट्रपति भवन में होय पहलैया नागरिक अलंकरण समारोह में 66 झीन प्रतिष्ठित मनखे मन ला पद्म पुरस्कार दे रही। यहाँ बता दें कि ये पुरस्कार ला हर बछर गणतंत्र दिवस के मौका में घोषित करे जाते। केंद्र सरकार हा कानूनी माप सिस्टम के चलत खाद्य तेल पर मानक पैकिंग लागू करे है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय हा कहे है कि

0: संशोधित नियमन ले प्रमुख खाए के तेलमन बर मानक पैक आकार तय करेगी ही। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम 500 ग्राम 1 से 5 किलोग्राम 15 किलोग्राम और 20 किलोग्राम है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर संभाग के समीक्षा बैठक में कहीन है कि किसान मन ला खाद और बीज मिले बारे में कोनो प्रकार के हलाकानी नहीं होना चाहिए। उमन निर्देश दे है कि छोटे और सीमांत किसान मन ला प्राथमिकता के आधार में खातू और बीजा दे जाए और एक जवाबदेही संबंधित कलेक्टर के हुई। मुख्यमंत्री है नैनो उर्वरक के बउरई ल बढ़ावा दे बर और गैर कानूनी ढंग ले रेती खनई पर कड़ा कार्रवाई के निर्देश घलो दे है। छत्तीसगढ़ सरकार है अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के ग्रामीण प्रतिभावान पढ़िया लेका मन बर मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना के तहत एडमिशन के काम शुरू कर दी है। योजना के माध्यम ले चुने गए पढ़िया लेका मन ला प्रतिष्ठित निजी आवासीय विद्यालय मन में कक्षा छठवीं ले बारहवीं तक निःशुल्क शिक्षा दी जाही। आवेदन जमा करे की आखिरी तारीख 15 जून रखी गई है। एक हर बार चयन परीक्षा 5 जुलाई की हुई। ए बछर विशेष पिछड़ी जनजाति मन के लैका मन बर पहली बेर 2% आरक्षण घलो रखे गए है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुना था।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपकी वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमारे फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारे यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगु बाढ़ बांचे समाचार डहार। देश भर के सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट मन के 2 दिनी राष्ट्रीय सम्मेलन आज ले रायपुर में शुरू हो गए है। राज्यपाल रमन डे कहा पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में इस सम्मेलन के उद्घाटन करीन। एमा बोला तो मन कहीन की चार्टर्ड अकाउंटेंट मन के काम न केवल वित्तीय सलाह है भल्लू को मन कई ठिन व्यवसाय के सफलता में एक ठिन सुग्घर मार्गदर्शक के भूमिका घलो निभाते। उमन यहू कहीन की आम लोगन के सहूलियत ला ध्यान में रखत टैक्स सिस्टम ला और ज्यादा सरल बनाए जाना चाहिए। विश्व साइकिल दिवस के उपलक्ष्य में आज प्रदेश के कई ठिन जिला मन में फिट इंडिया मूवमेंट के तहत संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम रखे गए रही। एक हर चलत उप मुख्यमंत्री अरुण सावहा जगदलपुर में रखे गए कार्यक्रम में शामिल हुई। ए मौका में श्री सावहा खुदे साइकिल चला के पर्यावरण संरक्षण और खुद के फिट रहे बर आरो दिन। ए कार्यक्रम में सांसद महेश कश्यप महापौर संजय पांडे और कलेक्टर आकाश शिकारा घलो शामिल हुई। उन्हें कोंडागांव जिला में संडे ऑन साइकिल के तहत रैली निकालेगी। ये कार्यक्रम में कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना समेत अन्य अन्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी विद्यार्थी खिलाड़ी और आम लोगन मन घलो शामिल हुई। यही कड़ी में मुंगेली पुलिस डहर ने जिला मुख्यालय और लोरमी में साइकिल रैली रखे गई रही। उन्हें कोरिया के जिला मुख्यालय बैकुंठपुर में साइकिल रैली निकालेगी जेमा कलेक्टर रोकतिमा यादव समेत जिला प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी शामिल हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में केंद्र में एनडीए सरकार के 12 बछर पूरा होए के मौका में देशभर में कई ठिन कार्यक्रम हुआ थे। यही कड़ी में मुंगेली स्थित जिला अस्पताल में साफ सफाई के अभियान चलाएगी। ए मौका में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मन अस्पताल कैंपस के साफ सफाई करके स्वच्छता के आरो दिन। आकाशवाणी के 90 बछर पूरा होए के उपलक्ष्य में आकाशवाणी केंद्र रायपुर ढाले काली 8 जून के विशेष कार्यक्रम प्रसारित होही। प्रादेशिक समाचार एकांश ढाले बनाए गए एक कार्यक्रम के प्रसारण बिहनिया 8:30 बजे ले 9 बजे तक होही। छत्तीसगढ़ के सबो आकाशवाणी केंद्र एक कार्यक्रम ला एक ही संग्रह प्रसारित करही। छत्तीसगढ़ के क्रिकेट खिलाड़ी आयुष पांडे के चयन भारत ए टीम में श्रीलंका दौरा पर करेंगे ही। एक संगे उमन सीनियर इंडिया ए टीम में जगह बनिया छत्तीसगढ़ के पहले या क्रिकेटर बन गए हैं। आयुष पिछला रणजी ट्रॉफी सीजन में छत्तीसगढ़ बस 60 मैच के 13 पारी में 57.3 के औसत ले 573 रन बनाए हमें जेमा 2 शतक और 2 अर्धशतक शामिल है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल के रसमड़ा स्टेशन में माल गोदाम लाइन के कमिश्निंग काम पर 9 जून ले 12 जून तक प्री नॉन इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग काम हुई। ए पाए के कई ठिन यात्री गाड़ी प्रभावित रही जेमा रायपुर डोंगरगढ़ डोंगरगढ़ रायपुर समेत 8 ठिन डेमू और मेमू गाड़ी मन 10 और 11 जून के कैंसिल रही। अब थोरकुन समाचार सारमा। राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा ला संसद के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी विभागीय संसदीय स्थायी समिति के सदस्य नामित करे गए हैं।

राज्यपाल रमन डे कहा, रायपुर में छत्रपति शिवाजी महाराज राजाभिषेक समारोह दिवस में उनकर मूर्ति के अनावरण करीन। ए मौका में ओमन महाराष्ट्र मंडल ला एम्बुलेंस दे के घोषणा घलो करीन। और आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हरे। ए बछर विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के विषय है समस्या ले समाधान तक हर जगह सुरक्षित भोजन। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फेर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति हा आज अपन छत्तीसगढ़ दौरा बेरा पिछड़ा वर्ग ले जुड़े आने आने समाज के प्रतिनिधिमन ले करीन गोठबात। घरेलू रसोई गैस के कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपया बढ़ाएगी। उन्हें केंद्र सरकार हा कहे है कि भारतीय सिलेंडर के कीमत कोनो भी पड़ोसी देश के तुलना में अभी भी सस्ता और कमती है। और देश भर के चार्टर्ड अकाउंटेंट मन के 2 दिनी राष्ट्रीय सम्मेलन आज ले रायपुर में शुरू। राज्यपाल रमन डे कहा ये सम्मेलन के करीन उद्घाटन। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।

0: तत्र अठ अथ न्यूज ऑन एआईआर चल दूरभाषीय तंत्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। द्वादशी कक्षायाः परीक्षा परिणामस्य प्रकाशनानन्तरं संबंधित विषयाणां परीक्षणाय उत्तरपुस्तिकानां पुनर्मूल्यांकनाय च अन्तर्जालीय माध्यमेन आवेदन पत्राणां प्रेषणस्य अद्य अन्तिमा तिथिः अस्ति। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद सामाजिक माध्यमेषु प्रकाशिते एकस्मिन् सन्देशे उक्तवान् यत् वेब फलकं मध्यरात्रि पर्यन्तं उद्घाटितः भविष्यति। परिषदा छात्रेभ्यः अनुरोधः कृतः यत् ते अन्तिमतिथेः पूर्वमेव स्व आवेदनपत्राणि पूरयित्वा प्रेषयेयुः। राष्ट्रिय पुरस्कार विजेता मलयालम चलचित्राभिनेता सलीम कुमारः ह्यः कोच्चीनगरे दिवंगतः। तस्य एकस्मिन् निजी चिकित्सालये उपचारः प्रचलति स्म। सः 57 वर्षीयः आसीत्। श्रीकुमारः गतरात्रौ प्रायः पादोन 11 दिवंगतः। प्रारम्भे दूरदर्शन हास्य कार्यक्रमेण अवधानं प्राप्तः श्री सलीम कुमारः 96.1 शततमे वर्षे सिद्दीकी शमीर इत्यनेन निर्दिष्टं ईष्टमानु नूरुवट्टम् इति चलचित्रस्य माध्यमेन चलचित्र जगति प्रविष्टवान्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना अभिनेतुः सलीम कुमारस्य निधने दुःखं प्रकटितम्। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन दक्षिण पश्चिम प्रावृट कालस्य आगमनेन अग्रिमे द्वित्रिषु दिनेषु सम्पूर्णे देशे तीव्रवृष्टेः पूर्वानुमानं प्रकटितम्। उत्तर मध्य भारतस्य केषुचित् भागेषु उष्णतरङ्गस्य स्थितिः अपि अनुवर्तते। एतदतिरिच्य आगामिषु चतुर्षु दिनेषु दिल्ली पंजाब हरियाणा चण्डीगढ़ पश्चिम राजस्थान तटीय आंध्र प्रदेश इत्येतेषु प्रदेशेषु उष्णतरङ्गस्य स्थितिः भविष्यति इति ऋतुविज्ञान विभागेन पूर्वानुमानितम्। उत्तरपश्चिम भारते मध्य भारते च आगामिषु त्रिषु दिनेषु अधिकतमं तापमानं 2-6 डिग्री सेल्सियस पर्यन्तं भवितुं शक्नोति। तेलुगुदेशं पार्टीति दलस्य राष्ट्रियाध्यक्षेण एन चन्द्रबाबू नायडूवर्येण आगामि जून मासस्य 18 दिनांके राज्यसभा निर्वाचनाय स्वकीयस्य दलस्य 3 प्रत्याशिनः घोषिताः। तेषु उद्योगपतिः सना सतीशः, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्णः तथा टीडीपी सामाजिक माध्यम प्रकोष्ठस्य प्रमुखः चिंतकयाला विजयः च सन्ति। अमेरिका ईरान देशयोः मध्ये संघर्षस्य शतदिनानि जातानि। फरवरी मासस्य अन्ते ईरान देशे अमेरिका इजराइल देशाभ्यां कृतैः आक्रमणैः आरब्धः अयं संघर्षः अधुना विस्तृत क्षेत्रीय संकटे परिणतः जातः। अस्मात् संघर्षात् होर्मुज्जल सन्धि मध्ये सुरक्षित समुद्रयान परिवहनाय संकटम् उत्पन्नम्। अधुना लेबनान देशे पुनः संघर्षयुता स्थिति उत्पन्ना जाता। केन्द्रीय युव कार्याणां क्रीडा मन्त्री डॉ मनसुख मांडवीय अद्य प्रातःकाले नवदिल्ली नगरे आयोजितस्य फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल इति अभियानस्य 77वें संस्करणे सहभागित्वं कृतवान्। वार्ताहरैः सह वार्तालापं कुर्वन् असौ अवदत् यत् साइकिल इति द्विचक्रिकायानस्य संचालनात् पृथ्वी स्वच्छा भवति तथा च यातायात सम्बद्धस्य अवरोधस्य गंभीर समस्यायाः समाधानम् अपि प्राप्यते।
1: साइकिलिंग करने से आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। साइकिलिंग से फ्यूल का बचत होता है। वर्तमान में ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है, उसका भी समाधान है, तो क्यों न हम साइकिलिंग करें। देश के नागरिकों में अपने हेल्थ के प्रति अवेयरनेस बढ़ी है। मोदी जी ने आधा घंटा रोज फिटनेस देने के लिए कहा है, तो ये फिटनेस का डोज आधा घंटा के लिए हम हमेशा साइकिलिंग करेंगे तो मैं मानता हूँ कि हमारी कई समस्या का समाधान होगा।
0: अभिनेता विक्रांत मैसी अपि फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल इति कार्यक्रमे सम्मिलितवान्। एतदभियानम् अद्वितीयम् इति वर्णितवान्। सः अवदत् यत् एषः उपक्रमः अधुना जनान्दोलन रूपं धारयति। अद्य विश्व खाद्य सुरक्षा दिवसः आचर्यते। अस्य वर्षस्य विश्व खाद्य सुरक्षा दिवसस्य विषयः अस्ति समाह्वानात् समाधान पर्यन्तम् सर्वत्र सुरक्षितं भोजनम्। अयं दिवसः खाद्य सुरक्षायाः अधिकाररूपेण तथा सामूहिक दायित्वरूपेण जागरूकतां वर्धयितुं सशक्तम् अवसरं प्रददाति। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा स्वस्थ भविष्याय सुरक्षित स्वच्छ भोजनाय च भारत प्रशासनिक प्रतिबद्धतां पुनरुच्चारितवान्। अस्मिन् अवसरे असौ सामाजिक माध्यमेषु प्रकाशिते सन्देशे उत्तमम् आहारं स्वीकर्तुं तथा च आत्मनिर्भर भारतस्य

0: ಪ್ರಾಣಿ ಯೋಗದಾನ ದಾತುಂ ಜನೇಭ್ಯ ಆಹುತವಾನ್. ನವಚಂಡೀಗಢ ನಗರೆ ಆಯೋಕ್ಷ್ಯಮಾಣೆ ನಿಕಷ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಯಃ ದ್ವಿತೀಯ ದಿನೆ ಭಾರತೀಯ ದಲೇನ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ದಲಸ್ಯ ಸಮ್ಮುಖೆ ಅಷ್ಟ ಕ್ರೀಡಕಾನಾಂ ಹಾನಿ ಪುರಸ್ಸರಂ ಚತುಷ್ಟ್ಯಧಿಕ ಪಂಚಶತ ಧಾವನಾಂಕಾನ್ ಸಮರ್ಜ್ಯ ಪ್ರಥಮ ಚಕ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಘೋಷಿತ. ಭಾರತೀಯ ಮಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಕಾಃ ಮಂಗೋಲಿಯಾಯಃ ಉಲಾನ್ ಬಟಾರ್ ಓಪನ್ ಕ್ರೀಡಾಯಾಂ ಭಾರತಸ್ಯ ಕೃತೆ ದ್ವೇ ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕೆ ದ್ವೇ ಕಾಂಸ್ಯ ಪದಕೆ ಚ ವಿಜಿತವಂತಃ. ಇತಿ ವಾರ್ತಾಃ.
1: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है. शाम के 6:30 हुए हैं. प्रस्तुत है गोंडी समाचार बुलेटिन.
2: इद आकाशवाणी जगदलपुर गोंडी समाचार बुलेटिन तरसंग नन सावित्री नाग नेट मूल समाचार. विश्व पर्यावरण दिवस ते प्रदेश तक अत्ता और कार्यक्रम. प्रधानमंत्री एक पेड़ माँ के नाम अभियान तक कित्तूर मूल. सुशासन तिहार ते मुख्यमंत्री बीजापुर बस्तर और कांकेर जिला तक दौरा कित्तूर. नगरीय निकाय चुनाव त अध्यक्षता एंग तीना मुंड पदीनक भाजपा और रण पदीनक कांग्रेस जिड़दुर कित्ता. सीजीपीएस ताकेट राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 त लिखित परीक्षा 6 जून तीना आयोजित किया दायमुतुर. इताय समाचार कुंडे. विश्व पर्यावरण दिवस तक एंग जून ते बस्तर संभाग संघ प्रदेश तक और कार्यक्रम आयोजित कित्तूर. राज्यपाल रेमंड डेका रायपुर स्थित लोक भवन और नवा रायपुर स्थित निर्माणाधीन लोक भवन परिसर तक पोदला उर्कतुर. इद अवसर ते और माने किन दिबे त दिबे माड़ा उर्कना और पर्यावरण तीन सुरक्षित तासना अपील कित्तूर. अगय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वन और जलवायु परिवर्तन विभाग ताके रायपुर तक प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए टीम तक आयोजित कार्यक्रम तक शामिल अत्तुर. इद अवसर ते प्रदेशवासी किन यायो न पेदे ते उंडमाड़ा उर्कना आग्रह कित्तुर. इदे नर्मा वन मंत्री केदार कश्यप कित्तुर की छत्तीसगढ़ अपना समृद्ध वन संपदा जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधन ही कारण ते देश त समृद्ध राज्य में दे. राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण और हरित विकास तीन सर्वोच्च प्राथमिकता ईसो बुतो की मुता. श्री कश्यप कित्तूर की राज्य तग एक पेड़ माँ के नाम अभियान ते अत्ता ऋण वर्षा नग करोड़ों माड़क उस्कतुर. इद अभियान ओंड बिड़िया जन आंदोलन तरूप पुता. विश्व पर्यावरण दिवस तक कोंडागांव जिला त बेलगांव ग्राम पंचायत स्थित DSP स्कूल परिसर एक पेड़ माँ के नाम अभियान ते वृक्षारोपण कार्यक्रम ता आयोजन कित्तूर. इचुटेन विद्यालय परिसर तग और प्रजाति त पोदला वेंडे उर्कतुर. इद अवसर ते कोंडागांव विधायक लता उसेंडी कित्ता की इद विधानसभा क्षेत्र त अंतर्गत उमके शासकीय संस्थानी नग ग्रीन बाउंड्री वाल पाड़नाव. कार्यक्रम तचुड़ जन प्रतिनिधि लोर गुर्जीलोर छात्र छात्रा और नाटेनोर पर्यावरण संरक्षण त शपथ पैतुर. अगाय कांकेर तो राम प्रसाद पोटाई कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र वेंडे पर्यावरण दिवस तग कार्यक्रम त आयोजन कित्तूर. कार्यक्रम तग प्राध्यापक वैज्ञानिक और छात्र छात्रा लोर पर्यावरण तीन स्वच्छ वलवल और सुरक्षित तासना शपथ पैतुर. अगय एक पेड़ माँ के नाम अभियान तहत महाविद्यालय परिसर तग वृक्षारोपण कित्तूर. इदिना अलावा जगदलपुर तहसेड़वा स्थित 141वीं बसरिया बटालियन त मुख्यालय परिसर तक वेंडे वृक्षारोपण कार्यक्रम त आयोजन कित्तूर. इचुटेन जवानीर कैंप परिसर तग पोदला उर्कतुर. विश्व पर्यावरण दिवस उपलक्ष्य तग अत्ता 8 जून ते देहरादून तक आयोजित समारोह तक नारायणपुर लिंगो मुद्याल कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र तीन पर्यावरण चैंपियन अवार्ड ते सम्मानित कित्तूर. इत कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र ताकेट अत्तवर्षनग जैविक खेती तीन प्रसितिनग वृक्षारोपण अभियान जल संरक्षण गतिविधि नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम किसानी और विद्यार्थी लोरा प्रशिक्षण और जैव विविधता संरक्षण तथा क्षेत्र तक उल्लेखनीय भूतो कित्तूर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अत्ता 4 जून ते अहमदाबाद तक विश्व योगासन चैंपियनशिप त उद्घाटन कित्तूर. इद मौका ते श्री मोदी कित्तूर की इद चैंपियनशिप तग हिस्सा पैतनोर खिलाड़ी किन अपना अपना देश नग आयुष मंत्रालय त योग 365 अभियान त वैश्विक राजदूत पाड़ना आह्वान कित्तूर. और कित्तूर की योग ते जुड़े मत के और स्वस्थ जीवन शैली तीन प्रसिद्धिलय आयुष मंत्रालय योग 365 अभियान त मूर कित्तूर. 8 जून एवना आयोजित पहल विश्व योगासन चैंपियनशिप तग 60 दिब्बे देशी और 400 दिब्बे खिलाड़ी हिस्सा पैतुर. श्री मोदी कित्तूर की योग स्वास्थ्य मंत्रालय और व्यावहारिक दृष्टिकोण में दे. प्रधानमंत्री कित्तूर की चैंपियनशिप वायनद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ते मुने स्तर तक योग संदेश तीन चीताकिना अवसर में दे. वायनद 21 जून ते दुनिया भर तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पाड़नोर. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अत्ता एंग जून ते श्रम विभाग ताकेट रायपुर तग आयोजित मेधावी छात्र छात्रा लोरा सम्मान समारोह तग शामिल अत्तुर. इद अवसर ते मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल त 10वीं और 12वीं बोर्ड

आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:43 होने को है। विज्ञापनों के बाद 6:48 पर प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
4: बंधु, नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
5: रुक जा बुद्धू।
6: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
4: तो समझ गई ना, रिलैक्स।
5: पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
6: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
7: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
8: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
7: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
8: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
7: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
8: क्यों?
7: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
9: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
10: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
11: हाँ हाँ, जरूर। आपको किसने बताया?
10: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
9: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
12: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति ने आज रायपुर में पिछड़ा वर्ग के विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों से की चर्चा। रायपुर में आज से शुरू हुआ चार्टर्ड अकाउंटेंट का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन राज्यपाल रमेन डेका ने किया उद्घाटन। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में संडे ऑन साइकिल का हुआ आयोजन। और महासमुंद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से जब्त किया करीब 63 लाख रूपये का गांजा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति ने आज अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान राजधानी रायपुर में पिछड़े वर्ग से संबंधित विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस दौरान साध्वी निरंजन ज्योति ने इन प्रतिनिधियों द्वारा बताई गई समस्याओं के अलावा उनकी मांगों और सुझावों पर आवश्यक कदम उठाने का भरोसा दिलाया। अपने प्रवास के दौरान राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष ने राज्यपाल रमेन डेका से लोकभवन में सौजन्य मुलाकात की। वहीं साध्वी निरंजन ज्योति ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से भी आज रायपुर स्थित उनके निवास कार्यालय में मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच पिछड़ा वर्ग के कल्याण, सामाजिक न्याय, शैक्षणिक उन्नयन तथा सामाजिक आर्थिक विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रूपये की बढ़ोतरी की गई है। नई दरें आज रात 12 बजे से लागू हो गई हैं। नई दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस की कीमत 913 रूपये से बढ़कर 942 रूपये हो जाएगी। इस बीच केंद्र सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी बढ़ोतरी के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों में मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि भारतीय सिलेंडर की कीमत किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ती है और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। खाद्य मंत्रालय ने कहा है कि संशोधित नियमों के अंतर्गत प्रमुख खाद्य तेलों के लिए मानक पैक आकार निर्धारित किए गए हैं। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलोग्राम, 15 किलोग्राम और 20 किलोग्राम हैं। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या को कम करना है। इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतों की तुलना और सोच समझकर खरीदारी करना आसान हो जाएगा। देशभर के चार्टर्ड अकाउंटेंट का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आज से रायपुर में शुरू हो गया है। राज्यपाल रमेन डेका ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का कार्य केवल वित्तीय सलाह तक सीमित नहीं है, बल्कि वे विभिन्न व्यवसायों की सफलता में एक भरोसेमंद मार्गदर्शक की भूमिका भी निभाते हैं। इस सम्मेलन में चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई कर रहे 1,000 से अधिक विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। विश्व साइकिल दिवस के उपलक्ष्य में आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में फिट इंडिया मूवमेंट के तहत संडे ऑन साइकिल का आयोजन किया गया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव जगदलपुर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर श्री साव ने स्वयं साइकिल चलाकर पर्यावरण संरक्षण और फिट रहने का संदेश दिया। कार्यक्रम में सांसद महेश कश्यप, महापौर संजय पांडे और कलेक्टर आकाश छिकारा भी शामिल हुए। वहीं राज्य के विभिन्न जिलों में संडे ऑन साइकिल के तहत रैली निकाली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र ने एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मुंगेली स्थित जिला अस्पताल में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अस्पताल परिसर की साफ सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा कल 8 जून को विशेष कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा बनाए गए इस कार्यक्रम का प्रसारण सुबह 8:30 बजे से 9 बजे तक किया जाएगा। छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र इस कार्यक्रम को एक साथ प्रसारित करेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
0: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारे यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
12: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने बस्तर क्षेत्र में 3 विधानसभा प्रभारियों की नियुक्ति की है। वहीं प्रदेश कार्य समिति में भी एक नए सदस्य को शामिल किया गया है। पार्टी ने दिनेश कश्यप को बीजापुर और रूप सिंह मंडावी को कोंटा विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी बनाया है। वहीं श्रीनिवास राव मद्दी को बस्तर विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी और श्रीनिवास मिश्रा को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा माया झाड़ी को भाजपा की प्रदेश कार्य समिति में शामिल किया गया है। वहीं पार्टी ने उर्मिला तोकल को बीजापुर जिला भाजपा अध्यक्ष का दायित्व सौंपा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के ग्रामीण प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना के तहत प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। योजना के माध्यम से चयनित विद्यार्थियों को प्रतिष्ठित निजी आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6वीं से 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 जून निर्धारित की गई है। चयन परीक्षा 5 जुलाई को होगी। इस वर्ष विशेष पिछड़ी जनजातियों के बच्चों के लिए पहली बार 2% आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है। महासमुंद जिले के रेहटी खोल नाके पर पुलिस ने तलाशी के दौरान करीब 125 किलो अवैध गांजा जब्त किया है। इसकी कीमत लगभग 63 लाख रुपए बताई गई है। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने ओडिशा से उत्तर प्रदेश जा रहे एक वाहन को तलाशी के लिए रोका। इसमें कटहल की सब्जियों की बोरियों के नीचे छिपाकर गांजा रखा गया था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दंतेवाड़ा जिले के बारसूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत तोड़मा के घने जंगलों में सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान के दौरान विस्फोटक बरामद किए हैं। इसके अलावा माओवादियों की वर्दी और अन्य सामान भी जब्त किए गए हैं। अभियान के बाद सुरक्षा बल के जवान सुरक्षित रूप से अपने शिविर स्थल लौट गए हैं। दुर्ग जिले के रौंदा स्थित सेवा सहकारी समिति के धान खरीदी केंद्र में गड़बड़ी पाए जाने पर समिति प्रभारी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार जांच में 560 क्विंटल धान कम पाया गया, वहीं करीब 2100 वारदाने भी कम थे। शिकायत मिलने पर दुर्ग जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के प्रबंधक ने समिति प्रभारी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। छत्तीसगढ़ के क्रिकेट खिलाड़ी आयुष पांडे का चयन भारत ए टीम में श्रीलंका दौरे के लिए किया गया है। इसी के साथ वे सीनियर इंडिया ए टीम के लिए जगह बनाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले क्रिकेट खिलाड़ी बन गए हैं। आयुष ने पिछले रणजी ट्रॉफी मौसम में छत्तीसगढ़ के लिए 7 मैचों के 13 पारियों में 57.3 की औसत से 573 रन बनाए थे। इनमें 2 शतक और 2 अर्धशतक भी शामिल हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल के रसमड़ा स्टेशन पर माल गोदाम लाइन के कमिश्निंग कार्य के लिए 9 से 12 जून तक प्री नॉन इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किए जाएंगे। इसके कारण कई यात्री गाड़ियां प्रभावित रहेंगी। रायपुर डोंगरगढ़, डोंगरगढ़ रायपुर सहित 8 डेमू और मेमू गाड़ियां 10 और 11 जून को रद्द रहेंगी। वहीं रायपुर डोंगरगढ़ और डोंगरगढ़ बिलासपुर पैसेंजर गाड़ियां दुर्ग स्टेशन तक ही संचालित होंगी। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले गाड़ियों की परिचालन स्थिति की जानकारी लेने की अपील की है। इस बीच बिलासपुर से बेंगलुरु तक एक समर स्पेशल ट्रेन शुरू किया गया है। यह ट्रेन बिलासपुर से 12 जून को चलेगी। इस ट्रेन का ठहराव बिलासपुर, भाटापारा, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, डोंगरगढ़ और गोंदिया स्टेशनों में दिया गया है। और अब पेश मौसम का हाल। दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। इसके अगले 3 से 4 दिनों में छत्तीसगढ़ सहित कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा के कुछ भाग में पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई है। वहीं कुछ स्थानों पर अंधड़ चढ़ने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने आगामी 12 जून से वर्षा की गतिविधि में वृद्धि होने के आसार जताए हैं। अब कुछ खबरें संक्षेप में सुन लीजिए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र की कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि घोषित की है। सीबीएसई ने बताया है कि छात्र आज मध्य रात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इस वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय है समस्या से समाधान तक, हर जगह सुरक्षित भोजन। गौरेला पेंडा मरवाही जिले में बचे हुए किसानों के एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीयन के लिए कल पंचायत स्तर पर शिविर लगाया जाएगा। सक्ती जिले के लक्ष्मण भाटा गांव में ट्रैक्टर की चपेट में आने से 2 व्यक्तियों की मौत हो गई, वहीं एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। और कोरबा जिले में अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ खनिज विभाग की विशेष उड़न दस्ता टीम ने 15 स्थानों पर छापा मारकर 14 गाड़ियां और मशीनें जब्त की हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति ने आज रायपुर में पिछड़ा वर्ग के विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों से की चर्चा। रायपुर में आज से शुरू हुआ चार्टर्ड अकाउंटेंट का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन राज्यपाल रमन डेका ने किया उद्घाटन। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में संडे ऑन साइकिल का हुआ आयोजन। और महासमुंद पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, उनके पास से जब्त किया करीब 63 लाख रुपए का गांजा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
4: नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
13: रुक जा बुद्धू।
6: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
4: तू समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
6: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
14: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 7 बजे हैं, माफ कीजिएगा, शाम के 7 बजने को है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम बस्तर के स्वर।

0: राम राम ना
1: राम राम ना झाड़ा राम राम अमर लीस
0: अमर ले काएगा
1: ये ना हमी तो दोनों भेट घाट हो लुने मानता रामचो दादा दीदी मन बोले आमचो पाठ दखते रहे सोत
0: हम तो आ चीज जानो किधर लाए अमरु आद बे बोलत ने
1: हम फिर काय के काई ना काई ज्ञान दियान जो गोड धरु अमरु दादा दीदी
0: ने हां
1: अल मैं दादा दीदी भेट करने
0: हाल कर कर कर
1: बस्तर के शोर कार्यक्रम सुन तो सप्पाए गांव करिया दादा दीदी सिंहान सजन माए माता बाप भाई और संग झोरिया संगवारी मन के मैं गबरू
0: और मैं झाड़ा
1: हमी दोनों करूं से
0: राम राम, राम। मातर दख ना आजकल परीक्षा बोल थरली मातर स्कूल बोल खुल तो बेरा होते थे ने
1: हो।
0: मातर तक काम चो रेडियो कटा कटा ढंडने ने नोनी बाबू मन बोल सुन सोत होती
1: आए ना झाड़ा
0: ने तो हुन मन बोल खुबे खुबे माया और चुमा बोल ने
1: हो आजी काली ती गोट के अच्छा बोले आजी काली ना झाड़ा गांव मन के लिए लोग दका नहीं देवता कहाँ जा रहे सो चाल
0: दक आजकल काय हुए थे खेती बाड़ी लोग भाग बुरा लात कहन बोले एक तिरुआ बोल पानी मार ली जा लोग भाग काय हुए थे नहीं ना मखिन खापू रहे थे बोल सत ने
1: सत्य बोलिस ना झाड़ा आजी कली दख तो सब पाए गांव गबार मन ने बोले लोग मन के दुख खोए हुनी बाटे पूरा गांव छ गांव खेती बाड़ी भीड़ लात
0: हां भीड़ लात कोनी खत ने तो नाल कोनी खत बल भी कर तो उ तो नतन बल होय थे गबरू दादा जतन की हम दुख थे बड़े बड़े मुंडा भी तमन काय करत ताके खत ने उन बाती का रहते उनके बिक्रुन बल दे तो ने
1: आओ ना झाड़ा दख हमचो जीवन आज माई मुर बोले खेती बाड़ी
0: खेती बाड़ी
1: राम चो दादा पुरखा लोग मुनामचो का जीवन भूई बाड़ी बचान संग उनके खेती करू तो लागे थे
0: हम तो आए हैं जानो हां
1: आजी काली काए होय से खेती बाड़ी कर तो हिसाब ने हमचो दादा दीदी मन सब बेड़ा काड़ा बाट कोन तो पोला पकाए सोत कोन तो भुने सोत कोन तो बेड़ा खापे सोत कोन तो खत बिक रहे तो बोलू बे हमचो माई मुर बुता ने भीड़ लास हमचो दादा दीदी मन
0: हुन मन भीड़ लास उतन मातर काय बोलो जतन के हमचो जोन परंपरा बेराल खेती बाड़ी होय नहीं हुन के बोला हम भूलक तरु जतन की नागर होली फार होली जन की आगे खाप तो बीती हुआ है तो उतन जतन के बे तू बलत रोहित खत भी करतर जतन के आम से जन गोबर खत हुआ है नहीं तो हुन काय हुआ था हम जैविक खेती हुआ थे जतन के भी हम कंपोस्ट खाद बोल बोनो नहीं हुनी गोबर खाद भी तिक बोनो सामी
1: अच्छा तू जो बोल तो गोट असन है झाड़ा तू ये बोल सी थे हम जो बोरा खाद बाट ध्यान नहीं देत रहा है
0: नहीं देत रहा हूँ नहीं हम जो गोबर खाद हाट ध्यान देत रहा का
1: हम जो जोन पानापोती बोले घर मन ने रुक रहा है झड़ू रहे से ने उन मन जोन झड़े से फिर कुए से उसन मन के आम के कूड़ा करत रहे बेड़ा ने उन भी करत रहे उसन खात मन के दिले आम चुकाए हो से शरीर ने कई रोग राई बोल नी झोंटे से आम चो देह पाए बोल अच्छा रहे से
0: अच्छा रहे तुतलन काय हुन हुन जतन का खाउस नहीं हुन भी तिचो जतन की जैविक बनु थे ऑर्गेनिक बनु थे तो हुन जो धान हुए थे तो हुनका जाम के नहीं सब चल ज्यादा आम के खेतियार दादा दीदी मन के आम के जैविक खेती चो कृषि बल करते रहते उतना ने जतन के अभी बांगा कमाऊ चाहे टमाटर कमाऊ चाहे कहीं बल कमाऊ जीत लो अधिक ले अधिक आम के गोबर खत देते रहते
1: और शहर इन खात मन तो दख सी तो उनमन तो ने हम जो खेती बाड़ी लस लसान दे समान तर उतली रोग राई बल झोंटा आए
0: झोंटा आए हूं तो आज जतन के अभी बांगा बल दखवा जित लो अच्छा सुंदर बांगा दके थे उतलो होता रासायनिक खाद बन लगू रहे थे और जित लो कीड़ा भी त्या बोले उतलो आम से जैविक खाद लगू रहे थे हुनिका जाम के भले किन कीड़ा होत लेकिन काय आम से जो जैविक खाद होते जो गोबर खाद होते उसन भी तिमन काम कमाते रहते
1: अच्छा गोट के सांगलीस ना झाड़ा दख तो आजी काली आम को दादा दीदी मन बोले आम चो ये गोबर खत जे भी मतलब केचुआ खाद मन के भूलकत जेलो सन झवाई जत
0: हाँ,
1: लेकिन
0: हाँ।
1: आम चो दादा दीदी मन के एक खत मन के नी भूलकत रा एक खत मन के लगा ले आम चो शरीर आम चो देह पाए अच्छा रहे से आम के रोग राई नहीं हो से आम ही अच्छा रहो से आम चो परिवार अच्छा रहे सो आम चो पीला जिला बल अच्छा रहे सो उन्हीं का जे आम चो खेती बाड़ी ने आम के ये गोबर खत केचुआ खत मन के लगात रहा है और खेती बाड़ी कर तो रहा है झाड़ा
0: हाँ।
1: मैं बोलते रहे गोट मन तो खूबी अच्छा अच्छा
0: गोठिया लेन तो दिन बाड़ूची आए
1: अले आम चो लगे है
0: गोटक जहाला बोला ताले जहाला बोला सुनो
1: आले ते
2: यदि आप अब कोई नई कार या बाइक लेने की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको काफी किफायती दामों पर उपलब्ध होगी। जीएसटी परिषद ने छोटी कारों 350 सीसी तक की बाइक और तिपहिया वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया है। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाला ये त्योहारी तोहफा एंट्री लेवल गाड़ियों को और भी किफायती बना देगा, जबकि लग्जरी कारें और बड़ी बाइक 40% के नए स्लैब में आ गई हैं, लेकिन फिर भी उन पर कम टैक्स लगेगा।
3: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
4: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रेड सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
5: मुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला, क्या प्लान है?
6: सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर।
7: बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है।
6: पर कैसे?
7: RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपकी पूंजी पर मिलेगी रिटर्न्स। RBI पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए। सुरक्षित, आसान।
5: रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूंगा।
7: बहुत सही कह रहे हैं आप। RBI कहता है
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: झाड़ा दंग इन्हें जहा लाग बोल सुन लो। और राम चो लगे
0: दिन अनुसार एतवार दिन है मात्र राम चले गोटो कानून चो बात आते मानता रहता काय हो था। हम चो जन जमीन बाड़ी बोले संपत्ति विवाद चो जोन गोट मन के हम चलो अमरा लाते भेंट कर अमरा लाते आसो तिवारी एक के भेंट कर लाते चंद्र रिथि ठाकुर
1: अले गोट के हम बोल सुनो दादा दिन सुनो
0: आले

0: आकाशवाणी के आप सभी श्रोताओं को चंद्र ऋषि ठाकुर का नमस्कार। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे संपत्ति विवाद से संबंधित सभी कानूनी मामलों के बारे में। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है श्री आशुतोष द्विवेदी जी को। आप जिला एवं सत्र न्यायालय जगदलपुर में अधिवक्ता के पद पर कार्यरत हैं, तो आइए सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। आपका स्वागत है द्विवेदी जी आकाशवाणी जगदलपुर के स्टूडियो में।
1: धन्यवाद।
0: आपसे हम पहले जानना चाहेंगे कि आखिर ये संपत्ति विवाद क्या होते हैं, और भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ किस प्रकार के विवाद ज्यादातर देखने को मिलते हैं?
1: बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। देखिए, संपत्ति विवाद में चल अचल संपत्ति शामिल है। चल संपत्ति से मतलब यह है जिनको इधर से उधर किया जा सकता है, और अचल संपत्ति में स्थायी संपत्ति जो जल जंगल जमीन ये सारी। तो अब चल और अचल संपत्ति के विवाद के विषय में जहां तक प्रश्न है, प्रमुखतः विवाद मालिकाना हक से होता है, वसीयती अधिकार के संबंध में होता है, वारिसों के संबंध में होता है। ये प्रमुख तीन प्रकार के विवाद होते हैं। संपत्ति के अधिकार को लेकर के लोगों के बीच में जहां असहमति बनती है वहां पर ये विवाद शुरू होते हैं, और चल संपत्ति के संबंध में वारिसों के बात को, विरासत हक को लेकर के, मालिकाना हक को लेकर के, उसके उपयोग को लेकर के, उसकी सीमा को लेकर के जहां पर विवाद उत्पन्न होते हैं उसे संपत्ति विवाद कहा जाता है। भारत देश में जैसा कि आपने पूछा कि बहुतायत कौन से विवाद ज्यादा आते हैं, हमारे देश में अज्ञानता है, अशिक्षा है। भारत देश के सारे प्रदेशों में भूमि से संबंधित कानून बने हुए हैं जो कि प्रादेशिक कानून होते हैं, और कुछ सेंट्रल लॉ हुआ करता है जो कि राष्ट्रीय स्तर पर है। उसमें कई तरीके के प्रावधान दिए गए हैं, जैसे संपत्ति अंतरण अधिनियम बनाया गया है, उसमें इन सी चीजों का उल्लेख किया गया है कि एक संपत्ति दूसरे के पास किस तरीके से जा सकती है। लोगों को इसका ज्ञान कम है, वो समझ नहीं पाते हैं। हमने कोई प्रॉपर्टी परचेज किया, परचेज करने के बाद पता चला कि म्यूटेशन की एक कार्रवाई होती है, जमीन पे अपना नाम दर्ज कराना। जो रेवेन्यू पेपर्स होते हैं हमारे, जो छत्तीसगढ़ के कंसर्न में अगर बात करें तो किस्तबंदी खतौनी B1 होता है, खसरा होता है। जब कोई व्यक्ति रजिस्ट्री करवाता है या जमीन को किसी अधिकार के तहत प्राप्त करता है तो उस बारे में राजस्व अधिकारी को सूचना दी जानी होती है। राजस्व अधिकारी का मतलब है तहसीलदार हो गया, इनको सूचना देनी होती है। गांव में पटवारी होता है, राजस्व निरीक्षक होता है, इन लोगों को सूचना देने की जरूरत पड़ती है। सूचना देते हैं तो बाकायदा उस सूचना को दर्ज किया जाता है, तहसीलदार के पास ले जाया जाता है कि पहले इस संपत्ति के ये मालिक थे। इस मोड से हमने बताया आपको, संपत्ति अंतरण अधिनियम दान के माध्यम से, वसीयत के माध्यम से, बिक्री के माध्यम से, गिरवी के माध्यम से, इन माध्यमों से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास अधिकार चला गया है तो जो जिस व्यक्ति के पास अधिकार चला गया है उसको आप B1 में दर्ज करो, उसके स्वामित्व में दर्ज करो, खसरा में दर्ज करो।
0: ज्यादातर जब ऐसे जमीन के या फिर प्रॉपर्टी के मामले आते हैं तो पैतृक संपत्ति, पिता की संपत्ति और स्वयं की संपत्ति की बात भी आती है। लोगों को जानकारी होती है कि पैतृक संपत्ति क्या है, पिता की संपत्ति क्या है, मेरी संपत्ति क्या है, लेकिन कई लोगों को जानकारी नहीं भी होती है। तो इन तीनों संपत्तियों में क्या अंतर है, और इन मामलों को, जैसे अगर कोई संपत्ति का विवाद आ भी जाता है तो ऐसे मामलों को सुलझाने में वसीयत क्या भूमिका निभा सकती है?
1: देखिए, प्रॉपर्टी दो तीन प्रकार की होती है। एक तो पैतृक संपत्ति, पैतृक संपत्ति माने अपने पूर्वजों से जो संपत्ति प्राप्त होती है वो तो पैतृक संपत्ति होती। दूसरी संपत्ति होती है सेल्फ एक्वायर्ड, स्वार्जित संपत्ति। स्वार्जित संपत्ति से आशय है जैसे किसी व्यक्ति ने कोई प्रॉपर्टी को स्वतः परचेज किया या अपने मेहनत से, अपने पैसे से, अपने परिश्रम से उसने कोई प्रॉपर्टी खरीदा, वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? ज्वाइंट प्रॉपर्टी। ज्वाइंट प्रॉपर्टी से मतलब है पिता, बेटा, बेटी, भाई, इन लोगों ने सामूहिक धन से अगर कोई उस प्रॉपर्टी को परचेज किया तो ये संयुक्त संपत्ति होती। पैतृक संपत्ति में क्या होता है कि सारे वारिसों को, यानी तीन पीढ़ी मान लीजिए, अगर ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी है तो उसके बेटे को और उसके नाती को उसमें बराबर का अधिकार होता है। यहां तक है कि अगर बच्चा गर्भ में आ गया तो भी उसका अधिकार बन जाता है। इसमें महिलाओं को लेकर के पहले कानून थोड़ा संकीर्ण था। संकीर्ण से आशय यह था कि पैटर्नल प्रॉपर्टी में बच्चियों को हक नहीं हुआ करता था। अभी 2005 में केंद्र सरकार के द्वारा कानून लाया गया और उसमें बच्चियों को भी, महिलाओं को भी, पुत्रियों को भी बाई बर्थ यानी जन्म से ही उनका पैटर्नल प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति से अधिकार दे दिया गया है। अब आया सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, जो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को बनाता है। इसमें जिस व्यक्ति की प्रॉपर्टी है जब तक वो जीवित है उसमें किसी तीसरे व्यक्ति का अधिकार नहीं होता।
0: तो उसमें वसीयत की बात आ जाती होगी।
1: हाँ, उसमें यह होता है कि उसका बेटा, उसकी बेटी, उसकी पत्नी उसके जीवन काल में उस प्रॉपर्टी दावा नहीं कर सकता। अब होता क्या है कि जो सेल्फ एक्वायर्ड स्वार्जित संपत्ति होती है उसका वो व्यक्ति किसी भी तरीके से उसका उपयोग कर सकता है, उसका उपभोग कर सकता है, उसको बयानित कर सकता है, मतलब कहीं भी किसी भी जगह ट्रांसफर कर सकता है, दान कर सकता है, वसीयत कर सकता है, गिरवी कर सकता है।
0: और वसीयत अगर वो बना दे तो ये जरूरी नहीं कि उसके बच्चों को ही वो प्रॉपर्टी मिलेगी, वो किसी अन्य व्यक्ति को भी वसीयत के माध्यम से अपनी स्वार्जित प्रॉपर्टी को दे सकता है।
1: हाँ, मैंने बताया ना कि अपने मर्जी से उस प्रॉपर्टी को व्ययनित कर सकता है, उसको किसी को भी दे सकता है, और उसने अगर वसीयत कर दिया किसी तीसरे के पक्ष में तो जो उसके वारिस होते हैं वो दावा नहीं कर सकते
0: जी। और जब हम संपत्ति खरीदने के लिए जाते हैं, कोई संपत्ति हम अक्वायर कर रहे हैं, तो ऐसे कौन कौन से जरूरी दस्तावेज हैं जिनका ध्यान हमें रखना चाहिए?
1: संपत्ति खरीदते समय सबसे पहले तो जिससे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उस व्यक्ति का संपत्ति में मालिकाना हक आत्यंतिक है, एब्सोल्यूट है, किसी दूसरे का यानी संपत्ति के बारे में कोई विवाद नहीं है, उसकी तस्दीक सबसे पहले कर लेना चाहिए। अभी तो काफी सुधार हो गया है लेकिन पहले क्या हुआ करता था, जो व्यक्ति जमीन को बेच रहा है उसकी फोटो भी नहीं लगती थी, उसका आधार कार्ड की कोई परिकल्पना नहीं थी, कोई आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट नहीं लगते थे, नक्शे नहीं लगते थे, यहां तक कि वो डॉक्यूमेंट जो रजिस्ट्री की जा रही उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट भी नहीं लगते थे, बहुत सारी इररेगुलरिटी हुआ करती थी। तो ये सारी चीजें, कौन व्यक्ति रजिस्ट्री करने आ रहा है, जो व्यक्ति रजिस्ट्री करने आ रहा है कहीं ऐसा तो नहीं, जैसा एक चीज बताया, उसके पूर्वजों की संपत्ति तो नहीं है, यदि उसके पूर्वजों की संपत्ति है तो उसकी जांच करें और उनके कौन कौन वारिस हैं उसकी भी जांच कर लें, पुराने रिकॉर्ड की भी जांच कर लें
0: जी।
1: कैसे, एक छोटे से उदाहरण से बताऊंगा, जैसे जमीन, जनजाति समुदाय के व्यक्तियों की जमीन कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उस समुदाय का ना हो नहीं खरीद सकता। दूसरी चीजें हैं जो हमको खरीदी में ध्यान देना चाहिए, कुछ अलॉटेड जमीनें हैं, जो जमीनें गवर्नमेंट ने आवंटित कर दी है, पट्टे पर दी है, लीज पर दी है, उसके लिए भी कानून बने हुए हैं कि गवर्नमेंट ने अगर कोई प्रॉपर्टी आपको दी है तो विदाउट परमिशन आप गवर्नमेंट आप उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते। तो हमको ये भी देखना है कि कहीं आवंटित जमीन तो नहीं है, अगर आवंटित जमीन है तो इस जमीन के लिए कलेक्टर से परमिशन ली गई है सेल आउट करने के लिए कि नहीं ली गई है। बस्तर के परिप्रेक्ष्य में इन सारी चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा, इन सारी चीजों को बारीकी से जांच करने के बाद जो है प्रॉपर्टी को खरीदना चाहिए। उससे फायदा यह होगा कि भविष्य में विवाद नहीं होगा, मुकदमेबाजी में नहीं फंसोगे
0: जी। आपने तो बहुत सारी जानकारियां दे दी हमारे श्रोताओं को संपत्ति विवाद से संबंधित, लेकिन फिर भी अगर कोई जानकारी रह गई हो और आप हमारे श्रोताओं से साझा करना चाहते हो तो जरूर कहें।
1: देखिए, अभी जो स्थितियां बनी हैं हमारे देश में, जमीनों की कीमतें बहुत बढ़ी हैं और बढ़ने के पीछे कारण यह है जिन व्यक्तियों को जमीनों की जरूरत है उनके वश के बाहर हो रही है। उसका कारण यह है जमीनों का जो खरीद फरोख्त हो रहा है, जो मीडिएटर लोग हैं, जो व्यवसायी लोग हैं, वो जमीनें उनके पास जा रही है। ऐसी स्थिति में हमको सबसे पहला तो यह करना चाहिए कि जमीनों के संबंध में जांच पूरी तरीके से करिए, जमीनों की जांच करने के बाद उसमें आप आगे बढ़िए। दूसरी चीज़, अभी नालसा, सालसा और डालसा। नालसा का मतलब यह है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा अथॉरिटी है जो राष्ट्रीय स्तर पे चल रही है। स्टेट स्तर पे भी विधिक सेवाएं चल रही हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी विधिक सेवा दी जा रही है। इसमें क्या है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जानकारियां दी जाती है और गांव गांव में कैंप लगाए जाते हैं और जिला विधिक सहायता की ओर से एक वकीलों का पैनल है जो बिना कोई शुल्क के आपको हमेशा जानकारी देने के लिए तैयार है। तो संपत्ति के मामले में यदि आपको कोई जानकारी लेना है, परचेजिंग करना है या कहीं कोई आपको समस्या आ रही तो आप उनसे सलाह ले सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है और तमाम प्रकार की सुविधाएं दी गई है। विधिक सेवा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम हो रहा है। अब उसके परिप्रेक्ष्य में बताऊं आपको, लोक अदालतों का आयोजन। लोक अदालत का मतलब यह है कि आपसी झगड़े को आपसी समझौते के आधार पर निपटाया जाना। लोक अदालत में क्या होता है, किसी की जीत नहीं होती, किसी की हार नहीं होती,
0: आपसी समझौता हो जाता है।
1: अदालत में फैसला होगा, एक पक्ष नाराज होगा, एक पक्ष खुश होगा। उसमें क्या है, वो जो सामाजिक सद्भाव है वो जो है नहीं दोबारा वापस आएगा। लोक अदालत के माध्यम से आप निपटारा करो, आपके केस का जल्दी निपटारा हो जाएगा, आपको तमाम सुविधाएं मिलेंगी।
0: आगामी लोक अदालत कब है?
1: आगामी लोक अदालत अभी 12 सितंबर महीने में लगभग नेशनल लोक अदालत तीन होती हैं, कम से कम तीन से चार, तो 12 सितंबर 2026 को नेशनल लोक अदालत है और इसके बारे में खूब सारा प्रचार प्रसार किया जाता है, चाहे आपराधिक मामले हों, चाहे राजस्व के मामले हों, चाहे संपत्ति के मामले हों, सारे मामले एक ही छत के नीचे देन एंड देयर तुरंत जो है निपटाया जा सकता है। नालसा का हेल्पलाइन नंबर है, अगर किसी को जरूरत है तो 15100 इस नंबर पे फोन करके वो पूरी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। हमारे स्टेट लेवल की जो विधिक सेवा है उसके भी नंबर्स हैं, हर जगह आज ऑनलाइन मिल जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हमारे नंबर है, यहाँ पर एक एडवोकेट की हमेशा नियुक्ति रहती है, उनका अलग से विभाग है, उनका अलग से चैम्बर है, उनसे जाकर के कोई भी जानकारी आप ले सकते हैं। विधिक सहायता उन मामलों में भी मिलती है अगर आप पैसे नहीं लगा सकते हैं, कोर्ट फीस नहीं जमा कर सकते हैं, तो वैसी स्थिति में भी हमारा विधिक सहायता मिलता है। तो कानून के प्रति लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, हमारी सरकार के द्वारा, हमारे जो अदालतें हैं इनके द्वारा जो सुविधाएं लीगल एड की दी जा रही हैं, जिला विधिक सहायता के माध्यम से, राज्य विधिक सहायता के माध्यम से, राष्ट्रीय स्तर पे विधिक सहायता के अथॉरिटी के माध्यम से जो सुविधाएं दी जा रही है उसको लेना चाहिए हर व्यक्ति को, और लोग ले भी रहे हैं।
0: जी आशुतोष द्विवेदी जी, आपने संपत्ति से संबंधित विवाद के मामलों में जितनी भी सारी जानकारी आज हमारे श्रोताओं को दी है, हमें उम्मीद है कि इससे उन्हें जरूर लाभ पहुंचेगा। आपने अपना समय दिया और हमसे बातें की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद आपका भी।

0: झाड़ा
1: हाँ ना
0: अले तुई मुंडरा गडरा सकल बे मैं दादा दीदी मन के बीदा धारे दे
1: आले आले
0: समया होली
1: हाँ
0: जातो पूरे बस्तर के शोर कार्यक्रम सुन तोर सपाए गांव करिया दादा दीदी सिंहन सजन माए माता बाप भाई संग जोरिया संगवारी मन के मैं गबरू
1: और मैं झाड़ा
0: हम दोनों करो से राम राम, राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बस्तर के स्वर। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 7:22 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम आमचो गांव।

0: बल्ली थे बे कि गोट ने कि जन पानापति सड़े थे उन सड़ लेन का होता हम खेती काज बल काम दे थे उन पानी बल जहाज नहीं कि नगद बल जन काम चो धान बल हो रही चाहे कहीं बल कोदाओ कोतराओ को मंडिया मंडी बल हम बुनु रो नहीं हूं चो जोन पाना चो रस ने जोन कूल बीती होता बल हम चो नगद बल उत्पादन बल हुए थे उपज बल हुए थे उतला ने जतन की हम चो जन जंगल ले आमी ये पीपल हम निर्भर रो से पान होली दातन होली छाती बोड़ा ना जाने हम कितलो चीज हम जंगल ले निर्भर रहा तू ने
1: दाग उन्हीं बोलते भी थी गोटी आए आम के जंगल ले इतलो आम के जीनिस मन मीरे से
0: हाँ हाँ
1: जो पाक फल हो चाहे मेंढात का दारू हो किटका हो ने
0: हाँ
1: और आम चो जोन बरन बरन चो जड़ी बूटी मन बोले आम चो ये जंगल ने मीरे से बोलतो भी थी गोटे आए झाड़ा आम के जंगल के बचान बाती संगात राय उनके नुकसान नहीं करतो राय आम के जितलो हो सके आम के रूक राय के रोप तो राय उनके गोन तोरनो आए
0: सत्य बोल लेना गबरू दादा जैसन कि जितलो आम के जंगल के बचामा और हुंचो जो रक्षा करवाने जितलो बोले पे देखो साबी आजकल नहीं 45 डिग्री 46 डिग्री बल तो नहीं जैसन कि बाहरी शहर मन ने बोल होते तो जो घाम बनू से तो हुनिका जाम के जितलो जंगल के हमें रुक रही के बचामा तो घाम के बल आम के सहायता दे दे कि नहीं हम चु क्षेत्र किनिक रुक रही या से बोलून बात कम बल छाए बल मिरे थे और की दकमा तो खूबे मतलब डिग्री ले हमके जो घाम आए जो धूप बुनू से उन खूबे ये थे
1: सत्य बोलिस ना झाड़ा दक ये सोचो जो ढहा पोल्डी
0: हाँ
1: इतलो आदमी के दक तो रही नहीं होते रहे
0: हाँ।
1: वो लगे जाऊं मत पानी के रखाए हो या लागत रहे बोलतो भी ती गोटे ही आए कि हम के जो हम जंगल के नुकसान करूं हूं से रुक राई के गोंदू हूं से ऊंची परिणाम के हम ये बे दकू हूं से उन्हीं का जे आम के रुक राई के जितलो हो सके आम के रोप तो राय उनके गोंद तोड़ नो आए झाड़ा मैं बोलते रहे गोट मन तो आम जो लगे खूबे आसे मान तर आम चो लग जहाला बोले आसे अले जहाला के हम बोल सुनु और आम चो दादा दीदी मन बोल सुनो
0: आले
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: जीएसटी काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रावर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही रेत चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
5: जीएसटी काउंसिल बुधवार नेट इन घोषणा की तकी सरकार सीमेंट तपोर्रो जीएसटी मोला 28% तुन कम कीस इंजे 18% की सिप्ता टैक्स तगा कमी कित्ता आवासीय आड़ व्यवसायिक प्रोजेक्ट तगा लागत दबाव कम मायना दुमिद मिंदे ई लेकिन संगमरमर इंदनद और ट्रेवकिन ट्रेवटीन ब्लॉक इतके ओंडलेकटा बंडकल तगवेन टैक्स दर 12% से गटे मास 5% की सित्तोड़ ग्रेनाइट ब्लॉक तगवेन मुन्ने 12% मत्ता आदिंजे 5% जीएसटी लगे माता इदेन संगेन उसका चुन्नाम ताव ईटा और बंडाकल तीन जोड़ाई की अनबूता तेवेन मोला 12% से कम मास 5% की सित्तोड़।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
1: तो झाड़ा
0: हाँ
1: दगा जहला के अम्बल सुन लू और हम जो दादा दी सुन ला
0: सुन ला
1: मानतर हम जो मुंडरा ने गोटो काजी चो हम चो लग नाटक आसे और उन नाटक चो नाव आए रुक राय संगे जीवना और इके लिखला से रोहित कुमार सरोज और एक आमचूल

0: जमराला से बलबीर सिंह कच अरे ता आम्ही भाग धरलो दादा दीदी काय लोक की आम्ही पाच सांगवा आले ई हल भी नाटक है आम्ही बोले सुनू और आमचो दादा दीदी बोल सुनोत
1: आले
2: लक्ष्मी ए लक्ष्मी लक्ष्मी ए लक्ष्मी कौन बाटे गेली जाले बायले बले आले ये गोड़ के धोएन ता ये कहाँ गेली सरे
3: ए, ए इलासो भीतरे रह ना मंडालस जानू होनी बाटे रहे हाँ ये जाले काय होली हुन बस काने
2: आले खिंडी कस्तीर ने बसुक तो देश फेर सांगे दे आले उन कुर्चिक देश से बाटे हाँ हाँ हाँ इधर सांग हाँ ये काय बोलती रहीस
3: बस का बाटे जाऊन रलास काय
2: हो
3: हुन के ही तो बोलते रहे काय होली बोलून
2: ये अच्छा बस का रहे शहर बाटले बले नहीं उन साहब मने उन रोत रान बन मोहकमा चो बड़े जनाब मन यू रला
3: हाँ
2: गांव चो स्कूल चो मास्टर ये सरपंच पटेल कोटवार पंच सब पाए रला
3: जाले का हिसाब ने ए बस का के संगाउन रला हो मैं बोले तो एन दे बोलून रहे मानतर रान बाटे नी गेले तो आमचो जीवना नी चले ए काजे नी अमरले काय
2: हुनी रानचो गोट काजे तो बस का हाक देव रहोत
3: हाँ हाँ।
2: रानचो राखा काजे रान बन राखा समिति बनली से
3: हुन समिति तो आगत ले बनु रहे काय हो
2: ए, बन तो काज तो बनु रहे काय मानतर आजी फेर उता सांगला कि रान बनचो कितरो मोला से मोचो बोले मन के भेदली रे
3: असन
2: हो
3: जाले काय काय गोट के सांगला गुन फुन थाने
2: होता सांगला कि धखा आमचो जीवना ने रान कितरो काम दे से रान रले बरसा होए से बरसा होले बेड़ा खाड़ा चो कमानी होए से
3: असन आए ने
2: हो
3: रान रलो ने तो बरसा होए से ए गोट के आज ही जान ले
2: ओए रे मैं बोले तो मैं बोले आज ही जान ले और बरसा तो होए से चे संगे संगे नहीं नीनास धर तो काजे नगत लेहरा बले रुख राई ले मिरे से मने ओ
3: ये रुख राई ले लेहरा बल मिरे से
2: हो
3: जाले रुख राई मन आमचो खूब बे काम चो जिनी साथ
2: हो रुख राई ले नहीं लेहरा मिरे से तेबे आमी नीनास धर रुक सकू से
3: हाँ।
2: और आमी रान बन के धीरे धीरे सारते जाऊं से
3: हो, हो।
2: रान बन कोनी दिने सरुन गेले सब पाए मनुक मांदी मरुन और सरुन जादे रे
3: ये गोट के तो सत्य बल्ला सो जाले रान बन के बचाव लागे दे रान बन ले आम के मोहू टोरा सरगी चारपाक कएक ओसो जिनिस बले मिरे से रान बन नी रहले तो खूब बे मुश्किल होए दे
2: तेबे तो बोले से मैं आजी चो गोट मोचो जीव के भेदुन गेली
3: आले आले होली बे एबर ये सांगा राखा जगा काजे कसन कर सो थुन के
2: ये पारी हिसाब ने जातो राय मने काय आमचो पारी होले आमी बल जावा दक ये दे हुन बाटे तुचो रांदा काय होली जाले ये बाटे भोरल लीसे जे
3: ये हो जाय से
4: एना कोटू कहाँ जासिस ना
2: ये नड़गुआ का इनो यदि सरपंच लगे जाते रहे ना ये काचो काचो पारी लगली से जाले खमन बाटे राखा करुक जातो रहे मने काय
4: हाँ असन जाले मैं बोले आई देना मानतर ये गोट तो पंचायत भवन बाटे गेलो ने आम के सांगुन दे दे
2: हैं असन आए ने आले ते बे ये पंचायत भवन चे बाटे जाऊं नहीं ये सरपंच घर बाटे फिर काय का जावा था ने
4: हो ये ना
2: हाँ
4: राम साई लेका ना बया होलो स्मने
2: ये राम साई बया होलो एक फिर कसन बया होलो ना
4: असन बड़े बया नो आए ना काके मार पेट नी करे
2: नी करे ने
4: मानतर असनी बया बुद्धि महा गोटो काम करे से हो नीन मैं बोले से ना
2: बया बुद्धि महा काम करे से
4: हो
2: ये तो परले होली ना काय काम करे से गुनोक
4: हुन काय के सांगुआस ना हो नहीं डोरी के धरलो से
2: डोरी के ने
4: पूजा पष्टा ने हाथे बांधुनुआत होनी डोरी चो गोचा के घेनुन आनलो से और बूटा मन ने बांधे से बांधुन बांधुन
2: बोलते जाए से जाले हुन असन काय काज करे से ना
4: होन बले से ना रुख रही मन आम चो संग संग वारिया यही काजे ये मन के मैं मीत बांधे से असन बले से ना
2: और काय करे से ना
4: और काई नहीं करे असने बुलुन बुलुन रहे से मचो मित मन के कोनी काई नहीं करा बले से दिन ने बुले से और सांझ बेरा घर ही ऐसे
2: और को कई कहीं नुकसान तो नहीं करे
4: नहीं नहीं नहीं नहीं को कई कहीं नुकसान नहीं करे ना
2: नहीं करे ने अरे दक ये गोठियाओ गोठियाओ आमी फिर ये अमरलू पंचायत भवन लगे ने आले आले जाऊं देखो ना
4: आले जाऊं जाऊं आले
2: ये केबे केबे आम के राखा काजे जातो राय जाले ने
4: आले जाऊं जाऊं जाऊं जाऊं जाऊं जाऊं

0: देखना दादा मन और दीदी मन, ये रुख नहीं मचो मीतात, देखा एक एक कोनी नी लागा, नहाले हाँ नहाले मैं पखना ने मारे दे, हाँ मचो मीत के कोनी नी लागा।
1: एना राम साहे
0: आए
1: तू काय करसीस बाबू, ये रुख राई सप्पायचो संग देवात ना, ये तुझे ही नहीं आमी सप्पायचो संगवारी आत ना बाबू, हो तू सत्य बोलसीस हो।
0: आए सप्पायचो संगवारी हे, अच्छा तो आए दादा सप्पायचो संगवारी यार, मचो मीत सप्पायचो संगवारी, मचो मीत सप्पायचो संगवारी, हाँ हाँ मचो मीत सप्पायचो संगवारी, हाँ अब और मैं दूसर रुख लगे जाए देता। हो हो मीत बांधो रुख राई के, मीत बांधो रुख राई के, हम के मया करुआ।
2: बया तो होलो से मानतर बया होन बले सोरचो गोट के गोठे आए।
1: हाँ तू सत्य बल सिस रे, राम साहे सोरा आना सत्य गोट के बले से, रुख राई नीरलो ने आमचो जीवना काय होती, रुख राई आसे तेवे तो आमचो जीवना आसे।
3: मैं तो गोटक विचार करे से ना,
1: हाँ
3: टू
1: हाँ
3: मोचो बाड़ीन जित्रो बर ठाना से ना,
1: हाँ हाँ
3: होता भीने भीने किसम चो गोटोक गोटोक बुटामन आए दे।
1: हाँ
3: आरु होन बुटामन के मैं नगद जतन दखा राका करें दे।
1: हाँ
3: बुटा रले जीवना आए ए गोट के, आजी मैं रामसाय बयाली समझ लेना।
1: हाँ तू सत्य गोट के बलसीस नानड़गु।
3: हाँ
1: हाँ ये रामसाय बया बुद्धि ने आसे मानतर सोरचो गोट के सिखाए से। आम के सप्पाय लोग के गोट के सांग तो राय सिखा तो राय कि रुख रही रले जीवन आए। आम के तो जसन रान बनासोत एके बले जित्रो होक सके जतन कर तो राय और उवाट कर तो राय।
3: हो ना
2: आले आले करा से जतन, मानतर ये बे घरे जाओ खूब बेबूता से।
1: हो आले जाओ तेबे आल जो।
3: जाओ जाओ जाओ जाओ।
2: सो राम साहे उजरलो मने।
1: राम साहे उजरलो जाले सुनू तो रहे, उनके कोचो लगाया जाले दखाउक लाई नीला सोत बोलून, जाले सुधरलो ने।
2: हो कौन डॉक्टर के दखाला जाले, एबे नंगत होन बहरलो मने।
1: मानतर गोटो गोट तो आए रे, बया बया कितरो बया दखले, मानतर असन गियांचो गोट सांगू बया मैं पहिल हार दखले।
2: गोड तो तुम्ही सत्य बल सास, बया होन बले कसन नंगत नंगत सोरसो तुरचो गोट मन के सांगते रहे ने।
0: काका कहाँ गेलिस ना?
1: ए राम साया आए, आओ बाबू आओ आओ भीतरे आओ, ये कुर्ची ने बस ये भई आमी तुचे ही गोट के गोठे आते रहूं।
0: हो ना काका।
1: हाँ
0: कसन हो रहे जाले। हाँ। मंतरे बे उजर ले जानू।
2: ए दे बाबू ए दे पानी ए दे।
0: हाँ मैं यही बाटले जाते रहे, डंडी काका लगे ओलून दखें दे बल्ले का।
1: अच्छा कर लीस बाबू, ये मंत्र नहीं बाबू तू के मैं गोटो गोट के सांगे से सुन है।
0: काय गोट आए गुनु काका?
1: तू ही नहीं बाबू, खूबी अच्छा अच्छा गोट के सांगीस, रुख राई रले जीवना आए, रुख राई रले सप्पाए चो भले आए, असन सांगीस ना दखनु। ये तुच्चे लागुन मोचो बाड़ी ने रेटे रेटे धाड़ी ले मैं बूटा मन के मंडाले से।
0: असन आ जाले अच्छा थोली काका, एबे मैं विचार करें से जे काम के बया होन बया बुद्धि ने कर ले, हुनके असनी बले तो सबके समझाऊन करी होय देच।
1: हो असनी बले समझालो ने नंगत गोट तो आए छे बाबू।
0: दखा काका और काकी।
1: हाँ
0: रुख राई रले लेहरा पानी नगत रहे से, बरसा नगत होई से, बरसा नगत होले हमचो बेड़ा खड़ा ने उपजन बले नगत होई से।
1: हाँ।
0: बेड़ा खड़ा धान पान नगत रले हमचो जीवना नगत चले से, ये हिसाब ले दखले रुख राई हमचो जीवना चो मूरात आत कसन।
2: गोट तो सत्य आए बाबू, मानतर यही गोट के गुलाय दुनिया चो लोग बले समझ ले नगत होती।
0: समझ दे काकी समझ दे, रान बन सर तो के हमी गुलाय मनुख मांदी काजे गोटोक दिने मस्कुल होन जाए दे।
2: ऐ
0: लागुन हमके सफाय लोग के ये गोट के समझुक लागे दे।
2: ऐ
0: काजे तो मैं गीत ने बले लोग मन के सांगे दे बले से।
1: हाँ तू तो आगत ले फिर गीत गोविंचो जान का रास का बाबू आले खिंडी गाँव दखनू
0: दख काका ये भैया मेरा तो मैं एकला है गाँव ते रहे का मांतर
1: मांतर ये मांतर काय
0: मांतर एदाय तुम्ही बले मके संग दिया।
1: हाँ अच्छा गोट के बले आले संग देवा का संग
3: देवा
1: देवा आले आले आले ते आले गाँव को रिया
0: हो हो हो हो हो हो हो हो हो हो हो हो रुख राई रले नगत जीवनाय
4: रुख राई

0: तो गबरू दादा
1: रंझाड़ा
0: तो ये गीत के गाउर शिवराम ना गाउर मन चे संगवारी मन ने
1: मातर
0: मच गोटुक मंडरान बल गोट गीत आते ना तो ये गीत के बल सुन और गीत को रचना पाथे थांगवाना
1: आले ना मौके बल गीत सुनु भाई ना झाड़ा
0: आले सुनु ताते

0: ना झाड़ा
1: हाँ ना
0: देखी आम चो लगे वे जल रहे नाट गीत है ने
1: हाँ ये गीत के अमरा ललित नंदोराम भारती अरुण मंच संगवारी मन मातर दख ना गबरू दादा समयान ने उन बाते समयान जाग बोल पड़े ने
0: आए का है ना पर समयान ने रोल समयान जातो भी तो लो ऐसे
1: तो मैं मंडरा गढ़ रखता करे तो अल विदा मांगते ना
0: हाँ आम चो गांव कार्यक्रम सुनतो सब पाए गांव करिया दादा दीदी सिंहन सजन माए माता बाप भाई और संग जोहरिया संगवारी मन के मैं गबरू
1: और मैं झाड़ा
0: हम दोनों करूं से
1: जुहा।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आम जो गांव, आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। 8 बजे हैं, लोकगीतों के कार्यक्रम बालीफुल में सुनिए शिवराम नाग और साथियों के गाए हल्बी गीत।

लोकगीतों के कार्यक्रम बालीफुल में आज आप सुन रहे हैं शिवराम नाग और साथियों के गाए हल्बी गीत।

लोकगीतों के कार्यक्रम बालीफुल में अभी आप सुन रहे थे शिवराम नाग और साथियों के गाए हल्बी गीत। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम पीला मन का जे गोट। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है स्वामी विवेकानंद पर। प्रस्तुति है भरत कुमार गंगादित्य की।

पीला मन काजे गोट। ये कार्यक्रम सुनतो जम्माय पीला मन के मचो बाटले खुबे खुबे मया आहुर लाड। पीला मन ये कार्यक्रम ने आमी तुमचो काजे खुबे नंगत नंगत गोट और आमचो देश चो महापुरुष मन चो गोट मन के सांगू से। असन बड़े लोग महापुरुष मन चो जीवना ले आम के जीवना चो बाट मिरे से, जीवना काजे नंगत सोर मिरे से। असन तो आमचो देश ने कएक झान बड़े बड़े महापुरुष मन होला से। मांतराजी में जे महापुरुष चो गोट के तुम के सांगे दे हुनात स्वामी विवेकानंद। आजी मैं तुमके स्वामी विवेकानंद चो जीवना चो घटलो नानी नानी गोट के सांगू आए। असन गोट मन के सांगू आए जे थाले तुमके कहीं नहाले कहीं बाट मिले दे। पीला मन स्वामी विवेकानंद हुनमन चो संन्यास धरलो पाछे चो नाव आए। आगे चो हुनमन चो नाव रहे नरेंद्र। स्वामी विवेकानंद चो पीला बेरा चो गोठ आए। गोटोक दिने स्कूल ने पड़तो बेरा चो गोठ आए। स्वामी विवेकानंद बल्ले नरेंद्र पीला बेरा ले होशियार रला। गोटोक दिने स्कूल ने पढ़ा तो बीता गुरुजी कक्षा ने नी रहे। उदलदाय नरेंद्र आपलो संगवारी मन के कहनी सांगुक धरलो। हुन काई बले गोट के असन सुंदर हिसाब ने सांगे कि सब पाय संगवारी मन ध्यान दे उन बाती सुनोत। असनी हुन दिन बले कहनी सांग तो बेरा कक्षा ने गुरुजी अमरलो। गुरुजी अमरुन भाती पढ़ाउक मुरियालो। मांतर जे पीला मन कहनी सुनते रला हुनमन गुरुजी चो एतो के जानुक नहीं सकला। पीला मन चो खुसखुसा गोठ्या तो के सुनुन भाती गुरुजी दखलो और कचकाउन बोललो कोन आए पढ़ई के छांडुन गोठ्याय से। तेबे पीला मन कोना बाटे बसलो नरेंद्र बल्ले विवेकानंद और हुनचो संगवारी मन बाटे दखाला। गुरुजी हुन मन के हाक दे उन भाती जे विषय के पढ़ाते रहे हुन विषय चो सवाल के करलो। हुन सवाल चो जवाब कहनी सुन तो पीला मन तो कोनी देउक नहीं सकला। मांतर नरेंद्र बल्लो ने विवेकानंद हुनचो जवाब के सांगलो। तेबे गुरुजी हुन पीला मन के बल्लो जहा तुम्हें आप लो टेबुल उपरे उबा हुआ तुम चो यही सजा आए। तेबे हुन पीला मन आप लो टेबुल उपरे उबा होला। तेबे हुन मन संगे नरेंद्र बोले उबा होलो। तेबे गुरुजी बोललो नरेंद्र तुई बस तुई काय काजे उबा होसिस। तेबे नरेंद्र बोललो गुरुजी मैं चे ये मन संगे गोठियाते रहे यही काजे मौके बोले बिल्कुल सजा दिया। असन बोलतो के गुरुजी के खूबे नंगत लागली कि नरेंद्र आपने सत्य बोले से। सपाय लोग एक गोट के दखुन भाती खूबे अचरी झोला। जाले असन रहोत स्वामी विवेकानंद। पीला बेराले फंद चो गोठले लाफी रला हुनमन। नरेंद्र स्वामी विवेकानंद जी चो आगे चो नाव रहे। संन्यास धर तो पाछे हुनमन चो नाव होली स्वामी विवेकानंद। गोटोक आउर गोट हुनमन चो आम के सुनुक मिरे से। गोटोक हार काय होली कि बनारस ने गोटोक मंदिर ले प्रसाद धरुन भाती स्वामी विवेकानंद बाहरे निकरते रला। तेबे होनी लगे चो बेंद्रा मन हुनमन चो पाट पाट एउग धरला। बेंद्रा मन पाट पाट एतो के स्वामी जी बेंद्रा मन ले बाजतो काजे ए बाटे हुन बाटे जाउग धरला। जितरो ए बाटे हुन बाटे जाओत पराओत बेंद्रा मन आउर पाट पाट एउन भाती हुनमन के डराओत। हुदली दाय हुन बाटले गोटोक सियान माने एते रहे। हुन सियान माने स्वामी विवेकानंद के बल्लो तुई काय काजे डरसीस नी डर नी पराव हुन मन के उल्टा डराव। तेबे हुन मन चो गोट के सुनुन भाती स्वामी विवेकानंद उलटला और बेंद्रा मन बाटे जाउग धरला। तेबे फिर काय के सांगुआ हस्ता बेंद्रा मन उल्टा पराउग धरला। तेबे हुन दिन ले विवेकानंद जानला कि आमी परालो ने चीपा मन आम चो जीवना ने उल्टा आम के डरवात। यही काजे हुन मन पाछे बले सपाय लोग के ये आपलो जीवना चो गोट के सांगुन भाती बलोत कि जीवना ने कितरही चीपाए हो अड़ना पे हो आम के नी डर तो राय पहार ले चीपा के डरा तो राय। जाले पीला मन
स्वामी विवेकानंद असन कैक सोच गोठमन के आम के सांगला से आजीबले कैक नानी पिलामन स्कूल ने पढ़ाई कर सोत, बड़े पिलामन कॉलेज ने पढ़ाई कर सोत, हुनमन आप लो जीवना ने कहीं बले बनतोर कहीं बले नगत बड़े काम करतोर वार्ड बनाला सोत होती असन पिलामन काजे बले स्वामी विवेकानंद चो सांगलो कैक नगद गोठमन आसे जे चोले हुनमन के नंगत बाट में रुक सके दे। ये गोठमन के मैं सांगे से कि स्वामी विवेकानंद बलू रला संगति तुम के ऊपरे बले ने उग सके खाले बले घसरा उग सके यही काजे के भाई बले नंगत लोग चो संगे संगत ने रतो राय। स्वामी विवेकानंद और बले नंगत गोठमन के बल्ला से कि उठा चेता और उदल दायले तुम्हें नीत है बा जेबतले तुमके सोर मिरु नी जाओ तुमके कोनी दूसर पढ़ाऊक सिखाऊक नी सके तुमके जमाए के भीतर ले सिखुक लागे दे आप लहान आत्मा ले बड़े कोनी गुरु निहात काचोई जमाए जाए से ये तो अडराए मांतर एचोले बले अडराए आप लो मंचो भरोसा चो जातोर जेचो सहाले आमी गेलो जमाए जमक के फेर पाऊ सकूं। तो असन कैक नगद गोठमन स्वामी विवेकानंद बल्ला से आगे जमाए नगद गोठ के लोग मन हासी समझुआत। स्वामी विवेकानंद दखा कितरो सुंदर गोठ के बल्ला से कि आगे कोनी बोले नगद गोठ होए से उनके लोग मन हासी समझुआत हासी उड़ावात फिर खिलाप ने हुआत फिर पाछे सरासरी ने उनके फिर मानून बले जाऊआत। और गोटो गोट बल्ला से जसन गोट की बीचा गुलाय रान ने अखर तो काजे खूबे आए उसने गोट की नगत मनुक बले जमाए मनुक मादी के उजरा उग सके और गोटो गोठाए आमचो भीतरे खूबे अवगुण रलो ने बले आमी आपन के खूबे मया करूं से जाले दूसर ने गोटोक बले अवगुण होलो ने आमी हुनके बैरी कसन मानुक सकूं। और गोटोक नगत गोठाए भूई नंगत आसे खद भात नंगत आसे मांतर पानी खारा बोले नोन छोराए जाले होन बूटा ने फूल फुटुक नहीं सके हुसनी मनुक चो भावना नंगता से कर्म नंगता से मांतर बोली बचन गोठिया तोर नगत निहाय जाले हुंचो संगे नाता गोता नगत रहुक नहीं सके। तो पिलामन स्वामी विवेकानंद बल्ला सोत कि जुआन हुनी आए जेचो हाथ ने सखत आसे पाय ने हिंडतो उवाट बल्ले गति आसे हृदय ने ऊर्जा आसे और आंख ने सपना आसे असन नंगत विचार मन स्वामी विवेकानंद चो रहे जाले पिलामन आमी बले आपलो जीवना ने स्वामी विवेकानंद चो सांगलो हिसाब ने नगत वाट के आनू आले सुनू असनी ये गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम
1: नमस्कार आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। पश्चिम बंगाल सरकार पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ा। उलानबटोर ओपन में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन। पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। और क्रिकेट में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान पहली पारी में 451 रन से पीछे। अब समाचार विस्तार से। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सहअध्यक्षता की। बैठक में दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल, ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। डॉक्टर जयशंकर और श्री सुगियोनो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल की महिला, बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में आज एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। एक रिपोर्ट।
3: सुश्री पॉल ने कहा कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने इन शहरों के विकास के लिए समर्थन व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन, व्यापार, चाय उद्योग और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। सुश्री पॉल ने कहा कि राज्य में शहरी बुनियादी ढांचे और स्वच्छता में सुधार के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। 1 जुलाई से पार्किंग की अनुमति केवल निर्धारित क्षेत्रों में ही होगी और अवैध पार्किंग पर जुर्माना लगेगा। पदभार ग्रहण करने के बाद सुश्री पॉल की ये उत्तर बंगाल क्षेत्र की पहली आधिकारिक यात्रा है। बैठक में नगरपालिका मामलों, महिला, बाल विकास, सामाजिक कल्याण, स्वच्छता, यातायात नियमन और विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा हुई। कुर्सियोंग से अशोक चौरसिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बन जाएगा। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच कल नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी उपस्थित रहेंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। योजना के लागू होने से राज्य के लाखों लोगों को बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या वर्ष 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य सरकार की वर्षा की स्थिति पर नजर है और किसानों के हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। नागपुर में उन्होंने कहा कि इस वर्ष सामान्य वर्षा का अनुमान है, लेकिन एलनीनो के प्रभाव के कारण मराठवाड़ा, पश्चिम विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में कम वर्षा हो सकती है। उन्होंने कहा कि किसानों को समय समय पर आवश्यक सलाह दी जा रही है और फसल नुकसान को कम करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोना तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। ऑपरेशन गोल्डन नेक्सस के अंतर्गत निदेशालय ने करीब 5 करोड़ रुपए मूल्य का 3 किलो 200 ग्राम विदेशी सोना जब्त किया है। मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें हवाई अड्डे के 3 कर्मचारी भी शामिल हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने आज योगांध्र 2026 अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। 14 दिवसीय इस अभियान का समापन 21 जून को अमरावती में भव्य आयोजन के साथ होगा। इस अभियान के दौरान विभिन्न योग गतिविधियों के माध्यम से 1 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए गांव, मंडल और जिला योग सत्र तथा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने लोगों से योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने और इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देने का आह्वान किया है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल शामिल हैं। इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में आज गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। एक हमलावर को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमरीका की केंद्रीय कमान ने आज कहा कि अमरीकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कल ईरान ने बहरीन और कुवैत की और बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की। इस बीच सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर LPG की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में LPG सिलेंडर का मूल्य अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मानसून आज पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी से कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया। मानसून उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों तथा नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भी दस्तक दे चुका है। इसके अलावा त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी मानसून पहुंच गया है। एक रिपोर्ट।
3: मौसम विभाग ने कल तटीय और आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माही, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड में अगले 4 से 5 दिन बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने दक्षिण कोंकण क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के कुछ हिस्सों में मानसून की बारिश शुरू हो गई है। मंगलवार तक रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों के कुछ हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में आज शाम बारिश हुई। समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
4: न्यू चंडीगढ़ में खेले जा रहे एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने अफगानिस्तान पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। भारत के 564 रन के जवाब में मेहमान टीम ने दिन की समाप्ति तक 5 विकेट खोकर 113 रन बना लिए थे। रहमत शाह 43 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। भारत के लिए अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू कर रहे मानव सुथार ने 3 विकेट जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट लिए। अफगानिस्तान अब भी भारत से 451 रन पीछे है। वहीं कुश्ती में मंगोलिया के उलान बटोर ओपन कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। आज पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक भारत ने अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के आसिल एथकिन को 6-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के येदिगे कासिम बेग को 2-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उधर न्यू ताइपे सिटी एथलेटिक्स ओपन 2026 में आज भारतीय धावक और राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी अनिमेश कुजूर ने पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में 20.47 सेकंड का समय निकालते हुए रजत पदक अपने नाम किया। ये समय उनके करियर का 4th सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।
1: उधर फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव का सामना इटली के फ्लेवियो कोबोली से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक ज्वेरेव और कोबोली ने 1-1 सेट जीत लिया है। इससे पहले कल रूस की मीरा एंड्रीवा ने माया चालेंस्का को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान मेजर बराक की अनुकरणीय सेवा और संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में भारत के दीर्घकालिक योगदान की पहचान है। मेजर बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में एंगेजमेंट टीम कमांडर और लैंगिक मामलों की प्रमुख अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉ JPS डबास के साथ खेत बचाव अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए नंबर है 0112331081। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। #AskAIR के साथ एक्स पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। पश्चिम बंगाल सरकार पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ा। उलान बटोर ओपन में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन। पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। और क्रिकेट में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान पहली पारी में 451 रन से पीछे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: Good evening, this is Akashwani and I'm VC Pramod with the news at 9. The headlines. India and Indonesia held joint commission meeting in New Delhi. Discuss comprehensive strategic partnership across key sectors including defence, trade, energy and connectivity. West Bengal government to develop Darjeeling, Mirik, Karsiong, Kalimpong and Siliguri as Himalayan cities to boost tourism and regional economy. Southwest monsoon further advances into west central and entire northeast Bay of Bengal. Indian wrestlers win 2 gold and 2 bronze in men's freestyle category at Ulaanbaatar Open in Mongolia. And in cricket, Afghanistan trails against India by 451 runs in first innings at stumps on second day of one-off test in New Chandigarh. The 8th India-Indonesia Joint Commission meeting was held in New Delhi today. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar and his Indonesian counterpart Sugiono co-chaired the meeting. During the meeting, the two leaders reviewed the entire spectrum of bilateral relations under their comprehensive strategic partnership. More from our correspondent.
6: During the meeting, India and Indonesia discussed avenues for further strengthening cooperation in various fields including political, defence and security, maritime, trade and investment, pharma and healthcare, digital, energy, connectivity, space, education, consular and cultural domains and people-to-people exchanges. Both leaders also exchanged views on regional and global developments of mutual interest. They also reaffirmed their commitment to closer cooperation and coordination in regional and multilateral forums. Dr. Jayashankar and Mr. Sugiono welcomed the upward and growing trajectory of bilateral relations. In his opening remarks, Dr. Jayashankar said that the joint commission between both nations is convening after a gap of 4 years and it is essential to acknowledge that significant advancements in bilateral relations have been made during this time. He said India-Indonesia celebrated the 75 years of establishment of bilateral ties last year. Saklayan Akhtar for Akashwani News, Delhi.
5: West Bengal Women and Child Development and Social Welfare Minister Agnimitra Paul today chaired a high-level administrative review meeting at Siliguri. Discussions focused on municipal affairs, women and child development, social welfare, disaster management, sanitation, drainage, waste management, traffic regulation and the implementation of various government schemes. Later addressing the media, Mr. Paul said, Darjeeling, Mirik, Karsiong, Kalimpong and Siliguri will soon be developed as 5 Himalayan cities. She said Union Housing and Urban Affairs Minister Manohar Lal has expressed support for developing these towns, which is expected to boost tourism, trade, the tea industry and the regional economy as well as generate employment opportunities. Ms. Paul said strict measures will be taken to improve urban infrastructure and cleanliness. West Bengal is set to become the 36th state to implement Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, which is the world's largest publicly funded health insurance scheme. The National Health Authority and the government of West Bengal will sign a memorandum of understanding tomorrow for the implementation of the ABPMJ in the state. The MOU will be signed in New Delhi in presence of Union Minister for Health and Family Welfare, J.P. Nadda, and West Bengal Chief Minister, Suvendu Adhikari. Union Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh has said the Narendra Modi government has transformed India in the past 12 years into an aspirational nation driven by opportunity, innovation and self-belief. Speaking to media, Dr. Singh said governance reforms, technological democratization and citizen-centric policies have fundamentally changed the way people of the country view their future prospects. He said India's space economy, currently valued at nearly $9 billion, is expected to grow to about $45 billion over the next 7 to 8 years. He added that the startup ecosystem has expanded from around 400 startups in 2014 to more than 2.3 lakh at present, generating nearly 25 lakh jobs. Lok Sabha Speaker Om Birla today asserted that the vision of Viksit Bharat 2047 can only be realized through public participation, innovation, entrepreneurship and collective resolve. Addressing a conclave in New Delhi, Mr. Birla emphasized that entrepreneurship and nation-building must progress hand-in-hand to ensure that the benefits of development reach every section of society. He noted that India's journey towards becoming a developed nation must be guided by inclusive growth, social responsibility and active citizen engagement. Highlighting the role of the youth in shaping the future, Mr. Birla stated that educated, skilled and technologically enabled young people constitute the greatest strength of Viksit Bharat 2047. He urged the younger generation to embrace innovation, artificial intelligence and emerging technologies to position India as a global leader. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at the rate AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. The southwest monsoon has further advanced into some more parts of west central and entire northeast Bay of Bengal today. According to the India Meteorological Department, southwest monsoon also advanced into some more parts of northwest Bay of Bengal, entire Nagaland, Manipur, Mizoram and some parts of Tripura, Assam and Arunachal Pradesh today. It predicted heavy to very heavy rainfall with isolated at places over coastal Karnataka, interior Karnataka, Kerala, Mahi, Sub-Himalayan West Bengal and Sikkim tomorrow. Meanwhile, various parts of the national capital received light to moderate rainfall this evening. The rainfall brought relief to the residents of the city from the hot and humid weather. In Maharashtra, monsoon showers reached parts of Ratnagiri district today. Heavy rain accompanied by thunder and lightning was reported in Rajapur Taluka of the district this afternoon, while light showers were also recorded in Ratnagiri town and nearby areas. Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis today said that the state government is closely monitoring rainfall patterns and taking all necessary steps to safeguard farmers' interests. Speaking to media in Nagpur, Mr. Fadnavis said, despite an overall forecast of 92% of normal rainfall this year, some districts in Marathwada, West Vidarbha, North Maharashtra and other drought-prone regions are also likely to receive deficient rainfall due to the impact of El Nino. He said the state government has been issuing timely advisories to farmers to help them cope with the evolving weather situation. Foreign portfolio investors, FPIs, offloaded Indian equities worth 42,927 crore rupees in the first week of June and remained net sellers during all five trading sessions for the week. With this, the total FPI outflows from the equity market have crossed 2.67 lakh crore rupees so far this year, according to depository data. The continued selling by foreign investors is largely attributed to ongoing tensions in West Asia, which have now reached the 100-day mark as the United States and Iran have yet to reach a peace agreement despite multiple rounds of negotiations. Prime Minister Narendra Modi has congratulated Major Abhilasha Barak on being conferred the UN Military Gender Advocate of the Year award. In a social media post, he said the honour recognises Major Barak's exemplary service and India's long-standing contribution to United Nations peacekeeping efforts. Mr. Modi said her achievement is an inspiration to countless young Indians, especially the nation's daughters, who aspire to serve the country and humanity. Major Barak is currently serving with the UN peacekeeping mission in Lebanon as an engagement team commander and gender focal point. She received the award from UN Secretary General Antonio Guterres at a ceremony in New York on Friday. Today marks the 100th day of the conflict between the United States and Iran, a confrontation that has steadily expanded beyond its original front lines to affect key flashpoints across the Gulf and wider West Asia. What began with US and Israeli strikes on Iran in late February has evolved into a broader regional crisis involving missile exchanges, threats to maritime traffic in the Strait of Hormuz, and renewed tensions in Lebanon, placing increasing pressure on efforts to preserve a fragile ceasefire. The Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC Plus, has agreed to raise oil production in July as the United States and Iran struggle to reach an agreement to end the war. According to the cartel's statement released after its virtual meeting today, the seven OPEC Plus countries, which include Saudi Arabia, Russia, Algeria, Iraq, Kazakhstan, Kuwait and Oman, have agreed to increase oil output targets by about 1,88,000 barrels per day next month. This is the fourth increase amid the West Asia crisis. The war, which began after U.S.-Israeli strikes on Iran on the 28th of February this year, has cut oil flows through the Strait of Hormuz, creating the world's biggest ever supply crisis. U.S. President Donald Trump said he will not unfreeze Iranian assets or lift sanctions before a peace agreement is reached with Tehran. In an interview with a news channel, Mr. Trump said such measures would only be considered after a deal is finalized. Commenting on Iran's nuclear program, he said that if an agreement is reached with Iran, the United States would oversee the removal and destruction of Iran's nuclear-related equipment.
7: If we make a deal that now we're friendly, we'll all go together. It'll be our equipment. We'll take it out and destroy it, whether it's on site or whether we take it off site. Well, that will require we will have a deal. We'll be friendly. In other words, we will have made a deal and we will be at peace and we will go with them or without them, but we won't have people shooting at us. Okay. Now, if we don't make a deal, then we're going to take them out militarily very harshly.
5: Indian wrestlers continued their impressive run at the Ulaanbaatar Open in Mongolia today, winning 2 gold and 2 bronze medals in the men's freestyle category. Deepak clinched the gold medal in the 61-kilogram category, defeating Kazakhstan's Asil Aytekin 6-0 in the final. Dinesh struck gold, beating Kazakhstan's Yedige Kasimbev 2-0 in the 125-kilogram final. Meanwhile, Mohit Kumar secured a bronze medal in the 65-kilogram category after registering a commanding 17-6 victory over Kazakhstan's Ozimzan Dastanbek. In the 97-kilogram category, Vicky bagged bronze, defeating Mongolia's Ghangkhuya Ganbatar 4-0. In cricket, Afghanistan were 113 for 5 in their first innings at stumps on day 2 of the one-off test against India in New Chandigarh, trailing by 451 runs. Rehmat Shah remained unbeaten on 43 at the end of play. For India, debutant Manav Sutar picked up 3 wickets, while fast bowler Prasidh Krishna claimed 2. Earlier in the day, India declared their first innings at a commanding 564 for 8. Captain Shubman Gill led the charge with 126, while KL Rahul struck 100. Rishabh Pant and Sai Sudarshan contributed 81 runs each, and Washington Sundar remained unbeaten on 52. For Afghanistan, Salim Safi was the standout bowler, taking 6 wickets. In French Open tennis, men's single title clashes underway between Germany's Alexander Zverev and Italy's Flavio Cobolli at the Roland Garros Stadium. Second seed Zverev is playing 4th Grand Slam final of his career, while 10th seed Cobolli is featuring in his first Grand Slam final. Both players are chasing their maiden Grand Slam title. The Andhra Pradesh government is launched the Yogandhra 2026, a statewide campaign aimed at promoting yoga and healthy living ahead of the International Yoga Day. The 14-day program will culminate on 21st of June with a grand International Yoga Day celebration in Amravati, where thousands of participants are expected to perform yoga together. The campaign seeks to encourage widespread public participation and raise awareness about the benefits of yoga. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India and Indonesia hold joint commission meeting in New Delhi, discuss comprehensive strategic partnership across key sectors, including defense, trade, energy and connectivity. West Bengal government to develop Darjeeling, Mirik, Karsiong, Kalimpong and Siliguri as Himalayan cities to boost tourism and regional economy. Southwest monsoon further advances into west central and an entire northeast Bay of Bengal. Indian wrestlers win 2 gold and 2 bronze in men's freestyle category at Ulaanbaatar Open in Mongolia. And in cricket, Afghanistan trails against India by 451 runs in first innings at stumps on second day of one-off test in New Chandigarh. And that's all in the news at 9. Good night.
8: मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। रात के 9:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से।

कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन रहे थे अधूरा आदमी फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में, बोल योगेश के थे, संगीत आरडी बर्मन का था। अगला गीत अप्रैल फूल फिल्म से, मोहम्मद रफी के स्वर में, शब्द रचना शैलेंद्र की, धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रेड सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 9:30 होने को है। रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष में अप्रैल माह से प्रारंभ 3 कड़ियों की श्रृंखला में तीसरा और अंतिम रूपक आकाशवाणी, जहां खबर मिली और खेल खिला। आलेख आनंद श्रीवास्तव का है, प्रस्तुत करता है नवोदिता मिश्रा। आइए सुनते हैं रूपक आकाशवाणी, जहां खबर मिली और खेल खिला।

0: देश के सुदूर कोने में बैठा एक किसान, सीमा पर तैनात एक सैनिक और गली में दौड़ता एक बच्चा, सब एक साथ एक ही पल में एक ही धड़कन से जुड़े थे।
1: जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके पास आकाशवाणी थी। स्वतंत्रता के सपनों से लेकर नए भारत की उपलब्धियों तक आकाशवाणी ने हर महत्वपूर्ण पल को देश तक पहुंचाया है।
2: Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom.
0: दौर बदला, तकनीक बदली और बदल गया सूचनाओं का संसार, लेकिन इस बदलते हिंदुस्तान में जो नहीं बदला वो है देश की एक बुनियादी धड़कन, एक ऐसी आवाज जिसने सुबह की पहली चाय से लेकर रात के सन्नाटे तक हर भारतीय के घर में दस्तक दी।
3: ये आकाशवाणी है। अब आप रामानुज प्रसाद सिंह से समाचार सुनिए।
1: क्या आपने कभी सोचा है कि देश दुनिया के कोने कोने से आप तक पहुंचने वाले इन सटीक समाचारों के पीछे कितनी बड़ी तपस्या होती है? आकाशवाणी समाचार की रीढ़ हैं इसके दो सबसे बड़े पावर हाउस, जीएनआर यानी जनरल न्यूज रूम और एचएनआर यानी हिंदी न्यूज रूम।
0: सुबह का समाचार प्रभात हो, दोपहर समाचार हो या फिर दिन भर की खबरों को समेटे समाचार संध्या, इन तीन मेजर हिंदी और तीन मेजर अंग्रेजी बुलेटिन को तैयार करने के लिए 2400 घंटे डेस्क पर शब्दों को तराशा जाता है, तथ्यों को परखा जाता है, क्योंकि यहाँ रफ्तार से ज्यादा जिम्मेदारी मायने रखती है। आकाशवाणी समाचार के वरिष्ठ सलाहकार उमेश चतुर्वेदी,
4: आकाशवाणी चूंकि सार्वजनिक प्रसारक है तो किसी निजी मीडिया प्लेटफॉर्म, मीडिया आउटलेट्स या मीडिया संस्थान की तुलना में इसकी भूमिका कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण और कहीं ज़्यादा चुनौतीपूर्ण भी है। इसलिए यहाँ इस बात पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है कि जो भी हम सूचना दें वो सही हो और सटीक हो, उसकी तथ्यात्मकता पर, उसकी प्रामाणिकता पर कोई सवाल न उठे। तो इसलिए जब तक कोई न्यूज, कोई भी समाचार विश्वस्त सूत्रों से सही न साबित हो जाए या न मान लिया जाए कि ये बिल्कुल सही सूचना है, सही जानकारी है, सही समाचार है, तो उसे प्रसारित करने के लिए सिस्टम में नहीं डाला जाता। जैसे मैं हाल ही में अहमदाबाद में जो विमान दुर्घटना हुई उसका उदाहरण देते हुए कहूँगा, मैं उस समय हिंदी न्यूज रूम में खुद था तो उस समाचार को देने में हमने देर नहीं लगाई, लेकिन उस तेजी में भी हमने इस बात का ध्यान रखा कि हम जिस सूचना को देने जा रहे हैं अपने जो देश के, बल्कि अब तो इंटरनेट के मार्फत पूरी दुनिया में हमारे श्रोता हैं, एक भी गलत सूचना न जाए। 2400 घंटे यहाँ डेस्क काम करता रहता है, रिपोर्टर भी काम करते रहते हैं जो हमारे देश भर में संवाददाता फैले हुए हैं, और वो संवाददाता भी इस बात को ध्यान में रखते हैं कि किसी भी कीमत पर गलत या भ्रामक समाचार या सूचना किसी भी समाचार केंद्र पर न पहुंच पाए। और एक चीज और है कि सबसे पुराना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और भारत का सार्वजनिक प्रसारक होने के नाते आकाशवाणी ने एक व्यवस्था कर रखी है, बहुत सारे शब्दों को इसने डीबार मतलब उनसे परहेज किया है। एक शब्दों के लिए शब्दावली अलग से तैयार की गई है आकाशवाणी के लिए, और चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे देसी भाषाओं के प्रसारण के लिए जो शब्दावली है या बोलियों के लिए, सबके लिए डूज और डोंट मतलब क्या करें और क्या न करें, किसकी बाकायदा शब्दावली तैयार करके रखी गई है, सूची बना करके रखी गई है, और न्यूज में कुछ खास तरह से इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इसलिए कई बार जो बाहरी व्यक्ति, जो सामान्य पत्रकार हो, अगर आकाशवाणी के अंग्रेजी या हिंदी न्यूज रूम में आ जाए या किसी और भाषा के न्यूज रूम में आ जाए, समाचार कक्ष में आ जाए, तो उसको देख कर ताज्जुब भी होगा कि कई बार कुछ शब्दों पर बहस होती है, हो सकता है कि उसमें कुछ देर हो जाए प्रसारण में, लेकिन गलत शब्द, गलत तथ्य न जा सके इसका पूरा ख्याल रखा जाता है।
1: आज टेलीविजन और डिजिटल मीडिया के कई दिग्गज एंकर्स के अनुभव का खजाना इसी आकाशवाणी के स्टूडियोज में गढ़ा गया है। इन्हीं में से एक बेहद सम्मानित नाम है अंग्रेजी के मशहूर एंकर और न्यूज रीडर सुनीत टंडन। आइए सुनते हैं उनकी सफर की कुछ अनसुनी यादें।
5: As far as the news is concerned, the people who were in the greats who were
6: समाचारों की बात करें तो उस समय समाचार कक्ष में कई बड़े नाम मौजूद थे। इनमें सुरजीत सेन, बोरुल हालदार, मणिका रत्नम और पामेला सिंह काफी बड़े नाम थे। ये उस समय के सबसे बड़े न्यूज रीडर हुआ करते थे और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत अच्छे इंसान भी थे और दूसरों को बहुत प्रेरित किया करते थे। मैंने 1978-79 में समाचार कक्ष में समाचार पढ़ने की शुरुआत की। उस समय बोरुल हालदार हुआ करते थे, एक और न्यूज रीडर हुआ करते थे सुशील, जो काफी लोकप्रिय थे। वो अपनी स्क्रिप्ट में पंक्चुएशन की मार्किंग नहीं किया करते थे और जब लाइव पढ़ते थे तो जो लाइन पढ़ रहे हैं उसके नीचे की तीसरी लाइन में आकर वो मार्किंग किया करते थे। एक अनूठी शैली थी उनके पास। हिंदी समाचार कक्ष की बात करें तो महान देवकीनंदन पांडे जी हुआ करते थे, एक और सज्जन हुआ करते थे जो सफेद कुर्ते पजामे में आया करते थे, मिस्टर भादुड़ी। वो बहुत अच्छे उद्घोषक थे उस जमाने में।
1: वक्त के साथ आकाशवाणी समाचार ने सिर्फ बुलेटिन ही नहीं बदले बल्कि जनसंचार के स्वरूप को नया आयाम भी दिया। शुरुआत हुई न्यूज मैगजीन कार्यक्रमों की, सुबह की ताजगी के साथ आज सवेरे और शाम के ढलते सूरज के साथ परिक्रमा।
0: इन कार्यक्रमों ने देश के सुदूर इलाकों में बैठे क्षेत्रीय संवाददाताओं की ग्राउंड रिपोर्ट्स और संक्षिप्त रेडियो इंटरव्यूज के जरिए सीधे जनता की आवाज को स्टूडियो तक पहुंचाया, चाहे आम बजट हो या रेलवे बजट की पल पल की बारीकियां। लाइव डिस्कशन प्रोग्राम्स हो या फिर देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव यानी लोकसभा और विधानसभा चुनावों की मतगणना।
1: जब टीवी स्क्रीन्स नहीं थी तब देश का कोना कोना आकाशवाणी के साथ बैठकर चुनावी नतीजों के लाइव रुझान सुनता था। भरोसा ऐसा कि कोई उंगली नहीं उठा सकता था। इन कार्यक्रमों को शुरुआती दौर से अपनी आवाज से सजाने वाली और लंबे समय तक इनका संचालन करने वाली चंद्रिका जोशी इन ऐतिहासिक लाइव कवरेज के साथ उन रोमांचक क्षणों को याद करते हुए कहती हैं।
7: सबसे पहली चुनाव चर्चा रेडियो पर 1996 में हुई। बिल्कुल नया फॉर्मेट था, नया अंदाज, लोगों की और हमारे अधिकारियों की अपेक्षाएं थी तो डर तो बहुत लगता था, घबराहट भी होती थी। लेकिन हाँ, उस समय ईवीएम नहीं होती थी तो देश भर से चुनाव परिणाम मिलने में करीब 2-2.5 दिन का समय तो लगता ही था और बड़ा उत्सव का सा माहौल रहता था ऑफिस में। बजट की चर्चा भी उसी दौर में शुरू हुई। तब आम बजट और रेल बजट अलग अलग आते थे। एक दो बार तो मुझे अच्छी तरह याद है कि बजट के तुरंत बाद रेल मंत्री और वित्त मंत्री जी से पहला इंटरव्यू हमने लिया था आकाशवाणी ने। बजट के बाद रात को रेडियो ब्रिज कार्यक्रम में सभी सेक्रेटरीज और पत्रकारों के साथ चर्चा के वो पल कभी नहीं भूलने वाली यादें हैं। रेडियो की विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी, समाचारों का भरोसा, हमारी विश्वसनीयता बनाए रखते हुए श्रोताओं की मांग पर ये सब बदलाव हो रहे थे और आकाशवाणी ने हमें नया करने के लिए बहुत मौके भी दिए। तो हम नौकरी में आने के बाद भी बहुत पढ़ते थे क्योंकि श्रोताओं का विश्वास जीतने के लिए आवाज के साथ साथ आपके भीतर का आत्मविश्वास उसके लिए बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास तभी होगा जब आप हर वक्त हर समाचार से अपडेट रहेंगे, आपकी भाषा समृद्ध होगी और उच्चारण स्पष्ट होगा। तो हमने आकाशवाणी को आगे बढ़ते हुए, समृद्ध होते हुए देखा। पुरानी मशीनों और टेप में रिकॉर्डिंग और एडिटिंग, उसके बाद सीडी, फिर कंप्यूटर, ये सब दौर थे और सबका अपना अनुभव रोचक रहा। तो मैं कहूंगी कि 24 घंटे काम करने वाली इस जगह को अगर उस वक्त को समझना चाहें तो रुक कर कुछ पीछे तो देखना ही पड़ेगा। शायद 80 के दशक तक रेडियो में लोगों के सामने बहुत चुनौतियां रही होंगी। हम लोग 90 के दशक में काफी सुधार होने के बाद आए, लेकिन असल बात यह थी कि रेडियो की लोकप्रियता तब भी थी, आज भी है और आने वाले समय में भी हमेशा रहेगी क्योंकि रेडियो आपको अपना काम करने देता है।
0: जब बात राष्ट्रीय गौरव की हो, 15 अगस्त और 26 जनवरी के राष्ट्रीय कार्यक्रमों का वो आंखों देखा हाल, तो हमारे कानों में कई बुलंद जादुई और रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाजें गूंजती हैं।
1: उनकी कमेंट्री महज शब्दों का बयान नहीं थी, वो साक्षात दृश्य को श्रोताओं की आंखों के सामने जिंदा कर देती थी।
8: नमस्कार, राजपथ से मैं लक्ष्मी शंकर वाजपेयी, अपने साथी कमेंटेटर डॉक्टर ऋतु राजपूत, जैनेन्द्र कुमार सिंह और मीनू खरे के साथ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भारत के इतिहास का एक अनमोल दिन।
9: हर हंसी खाब की ताबीर हंसी लगने लगी, एक नई सुबह ने धरती को संवारा। ऐसे
8: दो मिनट के मौन के बाद राउत के धुन अर्थात पुनः आगे बढ़ चलने का संकल्प, अपने लक्ष्यों को हासिल करने का संकल्प।
9: दाहिनी ओर जो एक गेट बना हुआ है अर्धवृत्ताकार, उससे प्रवेश किया है प्रधानमंत्री जी ने।
10: और अब योग फॉर्मेशन का प्रदर्शन यहाँ पर 6 सदस्यीय टीम कर रही है, और गुलदस्ता खूबसूरत सा फूलों का, रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए ये जाबाज यहाँ से सलामी मंच से आगे निकलते हुए।
0: आकाशवाणी सिर्फ जश्न का साथी नहीं है, संकट की घड़ी में ये एक अपने की भूमिका निभाता है। जन संचार में इसकी भूमिका सिर्फ सूचना देने की नहीं, बल्कि एक मरहम लगाने वाले हमदर्द की भी रही है।
1: याद कीजिए बिहार की वो भयावह बाढ़, जब सब कुछ डूब चुका था, संचार के सारे साधन लगभग ठप थे, तब आकाशवाणी ने वहां एक ऐसा इंतजाम किया जिससे बाढ़ राहत, अपनों की तलाश और मदद की जानकारियां हर पीढ़ी तक पहुंचाई जा सके। इस मानवीय और रणनीतिक भूमिका पर रोशनी डाल रहे हैं आकाशवाणी के पूर्व अपर महानिदेशक आशीष भटनागर।
11: आईटी डिवीजन के अपने एक साथी वीआर हरी से हमने कहा, शायद गुरुवार या शुक्रवार था, कि हमें सोमवार को बिहार जाना है और हमें चाहिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा आईटी प्लेटफॉर्म जिसपे कि बहुत सारे लोग एसएमएस करें, वो सारे एसएमएस आए, वहाँ इकट्ठे हों, उसको फिल्टर हम अलग अलग ढंग से कर सकें और उसको हम फोन इन प्रोग्राम से जोड़ सकें और फोन इन प्रोग्राम के तहत हम जनता तक पहुंच सकें। एक तरीके से ये टेलीकॉम, आईटी और रेडियो ब्रॉडकास्टिंग तीनों की साझेदारी थी। इस दौरान हम अपने डायरेक्टर जनरल महोदय जय जी जयलाल जी के पास गए और उन्होंने बहुत उत्साहित होकर कहा कि तुम जाओ, मेरा पूरा सहयोग तुम्हारे साथ है, तुम जो चाहो वो करो। हम लोगों ने तय किया कि हम लोग 15 दिन वहां रहेंगे, आकाशवाणी पटना, आकाशवाणी भागलपुर और आकाशवाणी दरभंगा, इन तीन स्टेशन का कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे। उसके बाद तो पूरे स्टेशन के लोग, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे प्रोग्रामर हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के, सब साथ आके खड़े थे और वहां से शुरुआत हुई हमारी बात की। कैजुअल अनाउंसर्स की ताकत मैंने तब देखी। मुझे याद है मणिकांत झा नाम आज भी, हम लोग बोट्स के ऊपर, हर जगह पानी पानी था, दूर दूर जाते थे, कहीं थोड़ी सी जमीन दिखती थी वहां बहुत सारे लोग खड़े मिलते थे, और जैसे हम पास पहुंचते थे तो एकाएक वहां पे चीख चिल्लाहट, अरे मणिकांत झा आइल छ, मणिकांत बाबू आए हैं। हमको इतना गर्व हुआ अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, एक पेड़ के ऊपर एक बच्चा टंगा हुआ मिला और कितने दिन वो पेड़ पे रहा, वो उसको कुछ हौसला देकर उससे बात हुई, उसकी बात की और रेडियो पर उस फोन इन प्रोग्राम पे ब्रॉडकास्टिंग किया गया उसके बारे में, और उसके परिवार उसे मिल गया। इट वॉज एन इमोशनल अफेयर। एसएमएस का जो प्लेटफॉर्म, उस पर तमाम सारे लोग एसएमएस करते थे, मेरा बच्चा गुम गया है, मेरा पति गुम गया है, मेरी पत्नी नहीं है, बह गई है, उन सब एसएमएस को लेके हम लोग फोन इन प्रोग्राम पर बात करते थे और फिर लौट के हमारे पास एसएमएस या फोन आ जाते थे, अरे वो हमको वहां मिल गया। बाद में भारतवर्ष में 13 महत्वपूर्ण जो काम जो किए गए उस भारत सरकार के पब्लिकेशन में भी लाई गई, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया, इसके बारे में आर्टिकल्स लिखे गए, पर सच बताऊं तो इसका असली आनंद हम लोगों को मिला, वो फील्ड पे मिला। आकाशवाणी कितना मददगार है, जब कोई नहीं होता तो आकाशवाणी होता है।
1: नब्बे वर्षों का ये सफर गवाह है कि तकनीक के इस आधुनिक समंदर में, जहां आज सैकड़ों टीवी चैनल्स हैं, हजारों डिजिटल पोर्टल्स हैं और हर सेकंड खबरों के रील्स और शॉर्ट्स बदल रहे हैं। उस शोरगुल के बीच भी आकाशवाणी समाचार आज भी देश का सबसे शांत, सबसे गंभीर और विश्वसनीयता के शिखर पर बैठा अव्वल संस्थान है।
0: ये आज भी केवल एक ब्रॉडकास्टर नहीं बल्कि भारत की साख है। सोशल मीडिया के फेक न्यूज के दौर में भी देश इसी आवाज की तरफ देखता है, क्योंकि भारत जानता है कि अगर इस आवाज ने मुहर लगा दी तो वो सच है।

दौर की बात है जब भारत के घरों में लिविंग रूम नहीं हुआ करते थे और टीवी की चमचमाती स्क्रीन तो कल्पना से भी परे थी, लेकिन तब भी

0: आकाशवाणी एट 90
1: 90 वर्षों का गौरवमयी सफर। आकाशवाणी ने सिर्फ खबरें और सूचनाएं ही नहीं दी, बल्कि उसने आजाद होते भारत के सपनों को अपनी आवाज दी। और जब बात खेलों की आई तो एक नई सोच का जन्म हुआ,
2: एक ऐसी सोच जिससे खेल के मैदान को स्टेडियम की चार दीवारी से निकालकर भारत के हर घर हर चौपाल तक पहुंचाया, बिना तस्वीरों के, सिर्फ शब्दों के जादू से करोड़ों आंखों के सामने लाइव मैच का थिएटर रच देना। ये चमत्कार सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी ने किया।
1: 60, 70 और 80 का दशक, ये वो दौर था जब भारतीय हॉकी अपने चरम पर थी। आइए इतिहास के पन्नों को एक बार फिर पलटते हैं और चलते हैं साल 1975 के क्वालालंपुर में, जहां भारत ने हॉकी विश्व कप जीतकर इतिहास रचा था। सुनिए जसदेव सिंह की उस जादुई आवाज को।
3: और ये फ्री हिट 25 गज की लाइन पर दाएं फ्लैंक में मिला पाकिस्तान के इफ्तिखार को, जिन्होंने हिट लगाया पास अख्तर रसूल को। अख्तर रसूल ने और गेंद भारत के डी में बाईं तरफ, जहां पे चौकर ने वहां पे पहुंच गया अब्बास भारतीय डी में, और उन्होंने सेंटर की, लेकिन उससे पहले सुरजीत ने खूबसूरती से अजीत पाल ने गेंद अपने डी में से बाहर कर दी बाएं फ्लैंक में। और ये खेल खत्म, भारत 2-1 से जीत गया, भारत विश्व हॉकी चैंपियन है। ये समाचार मैं मेलविल डिमेलो के साथ आपको कुआलालंपुर से देता हूं।
2: हॉकी के मैदान से निकलकर जब ये रोमांच 22 गज की क्रिकेट पिच पर पहुंचा, तो आकाशवाणी ने एक और क्रांतिकारी कदम उठाया। वो दौर जब अंग्रेजी का बोलबाला था, आकाशवाणी ने देश की माटी की भाषा यानी हिंदी में क्रिकेट कमेंट्री की शुरुआत करने की नई सोच दिखाई।
1: और इस विधा के भीष्म पितामह बने सुशील दोषी।
4: बहुत ही मुश्किल काम था जो FPS सिस्टम का खेल क्रिकेट, जिसको 22 यार्ड से 22 गज से जो शुरू होता है, ऐसे खेल की हिंदी में कमेंट्री करना, लोग मान रहे थे कि ये तो हो ही नहीं सकता। लोग कह रहे थे कि पूरा हिंदी में करना हो तो अनुवाद करिए, स्क्वायर लेग को वर्गाकार पांव कहिए, या फिर मिड विकेट को मध्य विकेट कहिए, या फिर सिली मिडॉन को मूर्ख मिडॉन कहिए। इस तरह की बातें होती थी और लोग ग्रहण करना शुरू में नहीं चाहते थे। लेकिन मैं तो आकाशवाणी को बहुत ही मानता हूं कि उन्होंने खेलों को अपने प्रसारण के जरिए जिंदा रखा। दो काम किए, एक तो खेलों को गांव-गांव तक पहुंचाया, गृहिणियों तक पहुंचाया, खेत खेत में काम करने वाले जो खेतीहर किसान हैं उन तक पहुंचाया, मिल में मजदूर जो लोग काम करते हैं ना उन तक पहुंचाया, और सबसे बड़ी बात ऐसे लोगों को खेल को दिखाया अपनी आवाज के जरिए जो खेलों के बारे में जानते नहीं थे। तो खेल की शुरुआती क्रांति की शुरुआत मैं समझता हूँ आकाशवाणी के कारण हुई। और दो बातें हुई कि खेलों को तो पहुंचाया, पर साथ ही एक संस्कार, भाषा का संस्कार जो दिया आकाशवाणी ने, वो एक उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। देखिए आज तरह तरह की बातें हो रही है, इतने सारे टेलीविजन पर हम देखते हैं जिस तरह की भाषा तोड़ी जा रही है, उससे बड़ा दुख भी होता है, लेकिन आकाशवाणी ने इसके साथ कभी समझौता नहीं किया। क्रिकेट के अलावा बाकी खेलों के

0: चाहने वाले हैं वो भी आकाशवाणी का हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। और मैं तो समझता हूँ कि आकाशवाणी ने वो काम किया जो संजय ने महाभारत में जो काम किया था। रेडियो ही एकमात्र माध्यम था, मुझे याद है कि एक पान वाले की दुकान के आगे 500-500 लोग खड़े हो जाते थे और पूरी बातें सुनते थे। खेलों की जो क्रांति आकाशवाणी ने जो काम किया उसका ये देश शुक्रगुजार तो रहेगा ही, लेकिन उनका कर्तव्य भी था, उन्होंने अपने कर्तव्य को पूरे ढंग से निभाया।
1: आकाशवाणी की इस कमेंट्री की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि इसने सिर्फ खेल को घर घर पहुंचाया ही नहीं बल्कि देश में खेल के प्रति एक ऐसी दीवानगी पैदा की जिसने नए टैलेंट को जन्म देना शुरू किया।
2: कुछ ऐसे दीवाने श्रोता भी थे जो रेडियो सुनते सुनते खुद इस विधा के उस्ताद बन गए। ऐसा ही एक नाम है कुलविंदर सिंह कंग।
3: मैं 1980 में आकाशवाणी में आया, उससे पहले मुझे याद है सन 1976 का मॉन्ट्रियल ओलंपिक जो कि कनाडा में था, उसका फाइनल मुकाबला रात के तकरीबन 2:30 बजे मैंने आकाशवाणी पर सुना। उस वक्त मैं श्रीगंगानगर में था क्योंकि कनाडा में उस वक्त दिन था, भारत में रात थी और फाइनल मुकाबला न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था और पहली बार और एकमात्र बार न्यूजीलैंड ने उस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। तो ये जो ऐतिहासिक पल आकाशवाणी ने दिए हैं मैंने भी उसको जिया है और उसके बाद मुझे भी आकाशवाणी की तरफ से उन ऐतिहासिक पलों की कमेंट्री करने का मौका मिला जो कि आज इतिहास में दर्ज है, चाहे वो मुल्तान में वीरेंद्र सहवाग के 300 रन बने हों, पहले भारतीय बैटर बने और वो 300 रन उन्होंने मेरी कमेंट्री में ही सकलन मुश्ताक को मिड विकेट पर छक्का मारकर पूरे किए थे। मुझे याद है 13 जुलाई 2002 नटवेस्ट ट्रॉफी का फाइनल लॉर्ड्स के मैदान पर जब भारत ने 326 रन बनाए थे, युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ की साझेदारी के बाद भारत वो जीता था। मुझे अंग्रेजी कमेंटेटर सुरेश सरैया जी के साथ उस मैच का लॉर्ड्स के मैदान से आंखों देखा हाल सुनाने का मौका मिला था। ये वो बातें हैं, वो पल हैं जिसका कि मैं हिस्सा बना।
2: आकाशवाणी का योगदान सिर्फ लाइव मैचों तक सीमित नहीं रहा। खेल खिलाड़ी, खेल सेवा, स्पोर्ट्स स्कैन या 5 मिनट के खेल बुलेटिन, ये वो कार्यक्रम रहे जिन्होंने खेल जगत की हर छोटी बड़ी खबर को देश के कोने कोने तक पहुंचाया।
1: इन कार्यक्रमों में बतौर प्रेजेंटर और एक्सपर्ट जुड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ा मेडल जीतने जैसा था। स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग के जाने माने नाम मलय नीरव अपना अनुभव कुछ यूं साझा करते हैं।
4: अगर मैं याद करूं कुछ चीजें तो जिस आकाशवाणी को सुनते हम बड़े हुए थे, जिन जो बड़े नाम हमारे सामने थे, जसदेव सिंह, रवि चतुर्वेदी, मनीष देव, सुशील दोषी, सुरजीत सेन, सुरेश सुरैया, ये वो लोग थे जिनसे मुझे मिलने की बचपन से ही बड़ी तमन्ना थी और बाद में मुझे कहते हुए बहुत हर्ष और गर्व का अनुभव हो रहा है कि जसदेव सिंह के साथ जैसे कि मैंने कार्यक्रम पेश किया, रवि चतुर्वेदी के साथ मैंने एक्सपर्ट कमेंट्स में कई बार हिस्सा लिया। तो मैं अगर आकाशवाणी की यात्रा, खेल यात्रा पर नजर डालूं तो 1964 में पहली बार जब हॉकी ओलंपिक्स में हॉकी की कमेंट्री हुई जिसमें डिमेलो और जसदेव सिंह थे, उसके बाद क्रिकेट कमेंट्री आई और फिर नरोत्तम पुरी का जमाना आया, डिकी रत्नागर और सबसे पहले तो तलियार खान साहब थे जिन्होंने कमेंट्री की परंपरा शुरू की। तो इन सब से मैंने बहुत कुछ सीखा। आकाशवाणी के जो खेल कार्यक्रम होते थे, खासकर स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम जिसमें दिन भर के खेल खबरों का लिखा जोखा रहता था, तो ये आकाशवाणी का एक ऐसा योगदान है जो मुझे कहते हुए बिल्कुल कोई हिचकिचाहट नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां और अंतर्राष्ट्रीय समाचार संस्थान, मैं सबका नाम तो नहीं लूंगा लेकिन मैं अपने समाचार संस्थान का नाम ले सकता हूँ, बीबीसी में भी हम लोग हमेशा आकाशवाणी के खेल कार्यक्रम पर नजर रखा करते थे।
1: सिर्फ क्रिकेट या हॉकी ही क्यों, एशियन गेम्स का रोमांच हो, राष्ट्रमंडल खेलों में तिरंगे का शान से लहराना हो या फिर खेलों का महाकुंभ ओलंपिक, आकाशवाणी ने हर पल को देश के साथ जिया है।
2: निशानेबाजी जैसे खेल जिन्हें लंबे समय तक आम दर्शकों से दूर माना जाता था, उसकी बारीकियों को, उसके नियमों को और खिलाड़ियों के संघर्ष को आकाशवाणी ने सीधे श्रोताओं के दिलों तक उतारा। पूर्व ओलंपियन और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता अंजलि भागवत यादों को कुछ इस तरह साझा करती हैं।
5: आकाशवाणी बचपन से हमारा रूटीन का एक हिस्सा रहा है। मेरी माँ पहले आकाशवाणी सांगली केंद्र में गाया करती थी, तो सुबह उठते ही पहले ही सारे गाने हम सुनते थे, बहुत अच्छा लगता था वो माहौल घर का सुबह का बनना। 88 वॉज माई फर्स्ट नेशनल, तो तब तो ऐसे कोई इतने सारे चैनल्स और वो कुछ नहीं था, तो आकाशवाणी यही हमारे प्रोमिनेंट चैनल्स थे। तो तब बहुत सारी मेरी इंटरव्यूज आकाशवाणी में हुई है, मैं आकाशवाणी केंद्र वर्ली में बहुत बार जा चुकी हूँ। आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली वहाँ जाने की और जो भी मेरे एक्सपीरियंस है वो शेयर करने की, क्योंकि आकाशवाणी ऐसा माध्यम था उस वक्त जो हर घर तक पहुँचता था। जो भी मेरा शुरुआत का जो अचीवमेंट्स है वो लोगों तक पहुंचने में या लोगों तक पहुंचने के बाद शूटिंग लोगों को पता चलने में आकाशवाणी में, मतलब मैं उनको क्रेडिट देती हूँ या उनका बहुत उसमें कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये खेल बहुत नया था हमारे वक्त।
2: आज का दौर खेलो इंडिया गेम्स का है, नेशनल गेम्स का है। आज भी जब देश का कोई खिलाड़ी मैदान पर पसीना बहाता है तो आकाशवाणी अपनी रेडियो रिपोर्ट्स, पल पल की अपडेट और पॉडकास्ट के माध्यम से देश के करोड़ों खेल प्रेमियों को उस रोमांच से जोड़े रखता है।
1: समय आगे बढ़ता है, पीढ़ियां बदलती हैं, तकनीक नए रास्ते बनाती है, लेकिन कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो समय के साथ और गहरी होती जाती है। आकाशवाणी की आवाज भी एक ऐसी ही विरासत है जिसने देश को खबरों से जोड़ा और खेलों के रोमांच को घर घर पहुंचाया। कभी किसी ऐतिहासिक समाचार की गूंज बनकर तो कभी आखिरी गेंद तक सांसें थाम देने वाली कमेंट्री बनकर। आकाशवाणी के इन 90 गौरवशाली वर्षों का हार्दिक अभिनंदन।

0: रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष में अप्रैल माह से प्रारंभ तीन कड़ियों की श्रृंखला में तीसरा और अंतिम रूपक आकाशवाणी, जहां खबर मिली और खेल खेला। आलेख आनंद श्रीवास्तव, वाचन स्वर नवोदिता मिश्रा और आनंद श्रीवास्तव, स्वरांश सहयोग आकाशवाणी संग्रहालय और प्रसार भारती संग्रहालय, प्रस्तुति सहयोग सरबजीत सिंह, प्रस्तुतकर्ता नवोदिता मिश्रा। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश द्वारा तैयार ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 10 बजे हैं। लोकगीतों के कार्यक्रम दौना में सुनिए मधुराम और साथियों के गाए हल्बी गीत।

लोकगीतों के कार्यक्रम दौना में आप सुन रहे हैं मधुराम और साथियों के गाए हल्बी गीत।

सागुन मचो जीव के करा पारी ए गोट के सागुन मचो जीव के करा पारी ए जन्म जन्म चो नारी होई दे तुम चो सेवा करी मैं जन्म जन्म चो नारी होई दे तुम चो सेवा करी

लोकगीतों के कार्यक्रम दौना में अभी आप सुन रहे थे मधुराम और साथियों के काए हल्बी गीत। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। 11 बजने को है हिंदी में समाचार। हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगी ओनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। डॉ. जयशंकर और श्री सुगियोनो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल की महिला, बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्नि मित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में आज एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से हॉर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमरीका की केंद्रीय कमान ने आज कहा कि अमरीकी सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कल ईरान ने बहरीन और कुवैत की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की। सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मंगोलिया में उलान बतोर ओपन कुश्ती में भारतीय पहलवानों ने आज पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के असिल एथकिन को, वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।